मीडियम वेव 196.9 एक मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026।

इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर

0: तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता भगवान के चरणों में परम अनुराग ही भक्ति है, अर्थात भगवान के साथ प्रेम का संबंध होना यही मुक्ति का साधन है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

करती है फरियाद साईं, बस इतनी रहमत कर देना, जो भी पुकारे तुझको खुशियों से उसकी झोली भर देना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे संजीव अभ्यंकर, मुकेश, हरिओम शरण और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, विषय है शांति की खोज।
1: उपकरण संजोए हुए। शांति है क्या? शायद ब्रह्म की तरह इसकी भी परिभाषा कठिन है। वैसे हम नेति नेति कहकर सहज ही इस कठिनाई से मुक्त हो सकते हैं, और यदि इसे परिभाषित कर भी लें तो इस पंडिताई कसरत में मिलेगा क्या? शांति तो मिलने से रही, कारण वो कोई बाहर से पकड़कर लाने की वस्तु नहीं है। वो तो हमारे मन में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान सुप्तावस्था में है। उसे जगाना है तन मन में। जब व्यक्ति शांति का हामी होगा तो समाज स्वयं शांतिमय हो जाएगा। एक समाज शांति से रहना सीख लेगा तो ये प्रक्रिया औरों को भी अपने में संजोएगी, और फिर समस्त विश्व शांति का पक्षधर होगा। ये कोई दर्शन की बात नहीं है, इतिहास सिद्ध सत्य है। किंतु आज सत्य भी समय सापेक्ष हो गया है, कारण हम पूर्ण सत्य को भूलकर केवल स्वयं को रुचने वाले उसके अंश मात्र को देखते हैं। मनुष्य के सहज स्वभाव के समय

0: अंत में अनेक सिद्धांत हैं, मत हैं। कोई उसे सरल तो कोई उसे दुराग्रही बताता है, किंतु यदि सहज मन की कल्पना करें, उसे परखें, तो पता चलता है कि मन तो एक दर्पण है। आप जैसा अपने को देखना चाहें, जैसा बने वही छवि दर्पण में उतरेगी। तो मन को यदि हम आप सब जन स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो तन मन से सरल और स्वच्छ बनना होगा। उद्वेग आवेग हमारे मन को दूषित करते हैं, उससे बचना होगा। तन मन का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ तथा सरल मन में ईश्वर का वास होता है। ये तभी संभव है जब हम ईश्वर के घर को स्वच्छ रखें, नहीं तो वे क्यों इस स्थान पर जाएंगे जहां उनका ठहरना कठिन है। तो इस प्रकार शांति एक सोच का नाम है। सोच ऐसा जो सकर्मक हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, केवल अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लिप्त न हो। गांधी जी को एक भजन बड़ा प्रिय था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने है। पराई पीर को महसूस करना, दूसरों के दुख से दुखी होना सच्ची मनुष्यता है। यदि हम इस सत्यांश को पहचान लेते हैं तो हम शांतिचित होंगे, हमारे चहुं ओर का वातावरण शांतिमय स्वयं हो जाएगा। शांति को खोजने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब लाखों लोग 2 जून की रोटी न पा रहे हों, तन पर कपड़ा न हो, सिर छुपाने को छत न हो, तो अपने कर्तव्य को छोड़कर जंगल के एकांत में शांति के क्षण खोजने वाले पलायनवादी हैं, साधु नहीं। प्राचीन समय में आदमी चौथेपन में अपने कर्तव्यों की इतिश्री करके घर छोड़ता था। एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी का मनसा वाचा कर्मा संभरण कर उसका दायित्व उसे सौंप देती थी। इसी से पीढ़ियों का संघर्ष भी नाम मात्र को था। आज की तरह धन यश लिप्सा नहीं थी, तभी इस देश में विदेह हो पाए। महलों में रहकर अनिकेत रहे पर दुख कातर। इंसान तो इंसान, जीव जंतुओं की खातिर भी अपनी आहुति देने वाले दिलीप और शिवी बने। उन्हें शांति की खोज नहीं करनी पड़ी, कारण उसे उन्होंने अपने भीतर पा लिया था। जो कुछ हमने पाना है वो बाहर से नहीं अपने अंतर से मिलेगा। खोज की प्रक्रिया अंतर्मुखी होनी चाहिए, अपने आप को जानने की, पहचानने की। बुद्ध ने कहा था, अपना दीप आप स्वयं बनो। यही सीख हमारे आपके सबके काम आएगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था शांति की खोज। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी जल बचत तकनीकी के विषय में फरियालाल की वार्ता।

प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर सत्य मित्र कान के दर्द के कारण और उपचार के विषय में जानकारी देंगे। बलवीर सिंह बघेल के गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर।

प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत की कार्यक्रम में सुनेगा पंडित सी आर व्यास का राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन।

श्रोताओं, 11 बजे आज की कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म निर्देशक आदित्य चोपड़ा के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा राष्ट्र रक्षा है सबका दायित्व।

12 बजे सुनीका प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आप सुनेंगे डॉक्टर शैली अग्रवाल की वार्ता, जिसका विषय होगा जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा आतंकवाद के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता। नीता एडवर्ड तोरने की गायिका से हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर।

दिन में 3:30 पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के अंतर्गत सुनी का उच्च रक्तचाप के कारण लक्षण बचाव के विषय में फिजिशियन डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल से श्री अनिंद्र सिंह की बातचीत। हमारी सांधिकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में 5:30 पर चर्चा का विषय होगा संवाद और संवेदनाएं। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। सुनिएगा सवारानी से काव्य पाठ। 6:00 कर्मे लोक कार्यक्रम में आप सुनेंगे बकरी पालन गरीब किसान का सहारा। इस विषय पर डॉक्टर मनीष जेटली से श्री ब्रजेंद्र नारायण की बातचीत। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे कचरे से कंचन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर मस्तो मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा कर्म ही जीवन है।

शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा डॉक्टर अनुपम सारस्वत की वार्ता, जिसका विषय होगा मानवीय जीवन में माधुर्य का आधार है स्वस्थ संवाद। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित रामकृष्ण का राग मारू बिहाग में क्लेरिनेट वादन और पंडित कार्तिक कुमार का राग श्याम कल्याण में सितार वादन।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्रीराम चरित मानस गान।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री

नाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानी हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए अब आपको सुनवाते हैं जल बचत की तकनीकों के विषय में भैयालाल की वार्ता।
1: जल प्रकृति की देन है जो हमें जीवन प्रदान करता है। सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सारी रचना में सबसे बड़ा भाग जल का ही होता है। बिना जल के इन सभी का अस्तित्व संभव नहीं है। हमें अपने दैनिक उपयोग, फसल उगाने, पशुओं को पिलाने तथा उद्योग धंधों को चलाने के लिए प्रतिदिन जल की आवश्यकता पड़ती है। बिना जल के कुछ भी नहीं हो सकता है, अतः हमारे जीवन में जल का बहुत बड़ा महत्व है। विश्व में उपयोगी जल की मात्रा सीमित है। सारी धरती पर 140 करोड़ घन

किलोमीटर जल विभिन्न रूपों में है। इसका 97.38% भाग समुद्रों में है जो खारी है। समुद्र का यह खारी जल उसी रूप में हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसके अतिरिक्त 2.01% जल बर्फीली चोटियों एवं हिमनदों में जमा पड़ा है। 10.58% भाग जल जमीन के अंदर है। 0.02% जल तालाब झीलों एवं नदियों में तथा 0.01% जल वातावरण में वाष्प के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मात्र 0.60% जल जो जमीन के अंदर तालाब झीलों एवं नदियों में है वही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसी सीमित

दशमलव 5-8 भाग जल जमीन के अंदर है, 0.02% जल तालाब झीलों एवं नदियों में तथा 0.01% जल वातावरण में वाष्प के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मात्र 0.60% जल जो जमीन के अंदर तालाब झीलों एवं नदियों में है वही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसी सीमित जल से हमें सारे कार्य चलाने हैं, घरेलू उपयोग में लाना है, फसलें उगानी हैं तथा उद्योग धंधों में प्रयोग करना है, लेकिन मितव्ययता के साथ। हमारे देश में 90% से अधिक जल की खपत सिंचाई में होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र हमारे देश में है, लेकिन आज भी सिंचाई का बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है। खुली और कच्ची नहरों, नालियों से पानी जमीन में रिस जाता है तथा हवा में उड़ जाता है। इसी प्रकार वर्षा का बहुमूल्य पानी भी इधर उधर बहकर नष्ट हो जाता है। जल की इस हानि को रोकना बहुत जरूरी है। कच्ची नहरें, नालियों से सिंचाई जल की हानि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि उनको पक्की बनाया जाए या पाइप द्वारा पानी खेतों में पहुंचाया जाए। ऐसा करने से इनसे रिसाव एवं अंतःस्पंदन क्रिया द्वारा होने वाले सिंचाई जल की हानि रुकेगी तथा काफ़ी मात्रा में सिंचाई जल को बचाया जा सकता है। टपक सिंचाई एवं स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग करके काफ़ी मात्रा में सिंचाई जल की बचत की जा सकती है। टपक सिंचाई तकनीक बागों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सिंचाई जल को पाइप बिछाकर पौधों की जड़ क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, जहां यह बूंद बूंद करके भूमि को नम करता है तथा पौधों को उपलब्ध होता है। खेतों से होने वाली वर्षा एवं सिंचाई जल की हानि को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि खेत समतल हों तथा उनकी मेड़ें मजबूत बनी हों। खेतों में ढलान होने से वर्षा एवं सिंचाई का जल तेजी के साथ ढलान की ओर बहकर नष्ट हो जाता है। खेतों से बहने वाला जल अपने तथा अपने साथ उपजाऊ पोषक तत्व एवं मिट्टी को भी बहा ले जाता है। इस हानि को बचाने के लिए ढाल के विपरीत जुताई करना चाहिए। 6% से अधिक ढाल वाली भूमि में वेंच टेरेस यानी सीढ़ीदार क्यारियां बनाकर ढाल को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खेतों से होने वाली सिंचाई जल की हानि को बचाने के लिए सिंचाई हल्की करें। बाग बगीचों में थाला से सिंचाई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके खेत खुला छोड़ दें, जिससे वर्षा जल को अधिक मात्रा में सोख सके। वर्षा के मौसम में प्रत्येक वर्षा के बाद ओट आने पर खेत की जुताई करके प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगावें। भूमि की सतह से वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल हानि को रोकने के लिए खेतों की निराई गुड़ाई करते रहें। मल्च का प्रयोग करें। खेतों से खरपतवारों को नष्ट करते रहें। खेतों में कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट एवं हरी खाद का प्रयोग करें। भूमि पर्याप्त जीवांश होने पर भूमि की जल धारण एवं जल संरक्षण क्षमता बढ़ जाती है। वर्षा जल खेतों में पड़ता है तो यह जल मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। एक स्थिति आती है, खेत और अधिक जल नहीं सोख पाता और फालतू पानी खेत से बहकर बाहर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इस फालतू पानी को वाटर हार्वेस्ट तकनीक द्वारा फार्म या खेत के उपयुक्त स्थान पर प्रक्षेत्र तालाब बनाकर एकत्रित कर लेना चाहिए। एकत्रित किए गए वर्षा जल को आवश्यकता अनुसार सिंचाई में प्रयोग करें। वर्षा के बहुमूल्य जल को इकट्ठा करने के लिए गांव के तालाबों को गहरा कराएं। ऐसा करने से न सिर्फ वर्षा जल का सदुपयोग होगा बल्कि भूमि का जल स्तर भी ऊपर आएगा। सिंचाई के अतिरिक्त दैनिक एवं घरेलू कार्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल सामान्यतया नहाने, पीने, जानवरों को पिलाने, कपड़ा धोने,
शौचालयों में

0: एवं अन्य घरेलू कार्यों में प्रयोग लाया जाता है। दैनिक कार्यों के लिए 40 लीटर पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता होती है, लेकिन जिन परिवारों में नल या हैंडपंप हैं वे परिवार आवश्यकता से अधिक पानी बर्बाद करते हैं। शौचालयों में 4 से 5 लीटर पानी एक व्यक्ति शौचालय के समय बर्बाद कर देता है। जल की इस बर्बादी को रोकना चाहिए। घरेलू कार्यों में उतना ही पानी प्रयोग किया जाए जितना आवश्यक हो। शौचालय में ऐसे पाट लगाए जाएं जो कम जल से प्रयोग से स्वच्छ हो सकें। सड़कों पर पानी के नलों का प्रयोग करने के उपरांत प्रायः उन्हें खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी अनावश्यक रूप से बहकर नष्ट होता रहता है। ऐसे नल लगाए जाएं जो प्रयोग करने के उपरांत स्वतः बंद हो जाएं। इस प्रकार जल की बचत, इन तकनीकियों का प्रयोग देश के सभी नागरिक करेंगे तो 60% से भी अधिक जल की बचत कर सकेंगे तथा पानी की कमी से होने वाली परेशानियों से बच सकेंगे। हम सभी लोग जल के महत्व को समझें और अन्य व्यक्तियों को बताएं कि जल ही जीवन है। जीवन को धरा पर स्थायी बनाए रखने के लिए जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करें। प्रत्येक प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर जल की बर्बादी को रोकें।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी जल बचत की तकनीकों के विषय में भैयालाल की वार्ता।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी

0: के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिण कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनंदनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण 24 परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 वादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं 6 वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-प्रति-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
0: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग

0: और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges

0: इन्हें देखना चाहिए और उससे बचना चाहिए। कान में छोटे कीड़े घुस जाते हैं और उनके कारण भी भयंकर दर्द हो सकता है। कान में चोट लगने से, जैसे तमाचा लगने से, कुरेदने से, कुरेदते समय किसी का हाथ ऊपर से लग जाए। अक्सर हम देखते हैं कि कोई बड़ा अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को चाटा मार देता है और कान पर लग जाता है, उससे बाद में कान का पर्दा फट भी सकता है, दर्द तो होगा ही। कान में इन्फेक्शन बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा या फंगस द्वारा हो तो उससे भी दर्द होगा। इसके बाद हम लेते हैं पर्दे के रोग। पर्दा यदि फट जाए चोट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, अंदर से पस का दबाव उस पर पड़े, उससे दर्द हो सकता है। कान को कुरेदने से दर्द हो सकता है। पर्दे के इन्फेक्शन, जिसे मारिंजाइटिस कहते हैं, वह हो तो उससे भी दर्द होगा। इसके बाद आता मध्य कर्ण, जो अंतःकरण और बाहरी कर्ण के बीच में होता है। इसमें इन्फेक्शन होता है, उसे हम लोग अपनी भाषा में ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। यह इन्फेक्शन नाक व गले से के आपस में इन्फेक्शन के मिलने से प्रायः होता है। अगर गले में, नाक में इन्फेक्शन है तो वह कर्णकंठ नली द्वारा कान की तरफ आ जाता है। मध्य कर्ण में द्रव इकट्ठा होने से उससे भी दर्द हो सकता है। उसके अंदर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनके इन्फेक्शन से दर्द हो सकता है। और बार बार इन्फेक्शन होने से, बार बार दर्द होने से कभी कभी पर्दा फट जाता है और उससे भी दर्द हो सकता है। एक और घटना हमारे सामने आती है, कान में कीड़े पड़ जाते हैं तो उन्हें मैगट्स हम बोलते हैं, और उनके कुरेदने से, उनके हड्डी काटने से रक्त भी आता है और दर्द भी होता है। इसके बाद साइनोसाइटिस हो, राइनाइटिस हो, नाक के कष्ट हैं, गला खराब है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, इनकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। अंतःकरण होता है सबसे अंदरी हिस्सा, जो दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। उसमें कोई सूजन हो, जिसे हम लेबरिंथाइटिस कहते हैं, बहुत सामान्य नहीं है, इसकी वजह से भी कान में दर्द होगा। एक कान के पीछे हड्डी होती है, जिसे मैस्टॉइड हड्डी कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो, सूजन हो, उसके कारण भी भीषण दर्द होता है। एक होता है कान के पास ही टीएम ज्वाइंट, जो हमारी जो दांतों वाली पंक्ति है और ऊपर सिर के अंदर जो इस मैस्टॉइड हड्डी, दोनों के बीच जोड़ होता है जिससे हमारा जबड़ा चलता है, उस जोड़ में अगर दर्द हो तो भी कान में दर्द महसूस होता है। अगर टॉन्सिलाइटिस है, फरेंजाइटिस है, उनके कारण भी कान में दर्द हो सकता है। कभी कभी टॉन्सिल में या जीभ के पिछले हिस्से में कैंसर हो जाता है और दर्द कान में हुआ करता है। उससे दांतों की वजह से भी दर्द होते हैं, वो भी हम कान में महसूस कर सकते हैं। कभी कभी नसों के दर्द होते हैं, जिसे सर्वाइकल पेन हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। लक्षण जैसे जैसे दर्द होते हैं, जैसे मैं हमने अभी अलग अलग हिस्सों के हिसाब से यहाँ पर वर्गीकृत किया है, उसी हिसाब से उसके लक्षण होते हैं। उपचार हेतु सबसे पहले तो हम दर्द की दवा देंगे, उसके बाद कारण जैसा होगा, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, और कोई चीज़ फंस गई है, कोई कीड़ा पड़ गया है, कोई बाहरी चीज़ आके पड़ गई है, उसे निकालने की व्यवस्था करेंगे।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी कान के दर्द के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर सत्य मित्र की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशगान।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर निर्देश का।
1: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का अंतिम दिन आज, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
4: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों,

0: मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को रोम में सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए वैश्विक मंच पर एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु देश व राज्य की क्षति है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अधिकांशतः जागरूकता के अभाव में होती हैं। ऐसे में सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन स्तर पर सड़क सुरक्षा के संबंध में पाक्षिक बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीड तथा नशे में वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान परिवहन निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सही फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें। साथ ही चालकों, परिचालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण आने वाले वर्षों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य को अभी से खाद्य सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। उन्होंने मंडी कर और मंडी शुल्क प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंडियों में स्वच्छता, रंग रोगन, त्योहारों के दौरान प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक निर्माण विभाग की 2026-27 की कार्ययोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और XHandle AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने कल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर अपना कामकाज संभाल लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है
3: और निश्चित रूप से

0: उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
1: प्रदेश में चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन है। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज भी लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में कल से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी।
2: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 7 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी, तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समय शेड्यूल में प्रोग्राम है।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में रात में भी उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा आज 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का आज अंतिम दिन, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा।
5: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है।

0: अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, डॉ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से छात्र पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत में बैचलर इन फाइन आर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश ले सकते हैं। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन में ललित कला संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय के भाग फरजाना स्थित ललित कला संस्थान में BFMA भारतीय संगीत, एप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, मूर्तिकला में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से BHMCT और BA वोकेशनल के साथ ही डिप्लोमा एंड इन फूड प्रोडक्शन में प्रवेश ले सकते हैं। श्रोताओं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट dbrau.aac.in पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ID जनरेट हो जाएगी, जिसमें छात्रों का विस्तृत ब्यौरा दर्ज होगा। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का शुल्क ₹400 है। किसी भी तकनीकी समस्या या पूछताछ के लिए हेल्पलाइन ईमेल ID samarthdbrau@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पुनः बता दें, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट dbrau.aac.in पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। और अगर आप हेल्पलाइन ईमेल आईडी चाहते हैं तो उसके लिए आप samarthdbrau@gmail.com पर संपर्क कर सकती हैं।

शतो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का पूरा कार्यक्रम नए सिरे से जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी आज अपने पूर्व में भरे गए परीक्षा केंद्र और वर्तमान पते को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे की पाली में आयोजित की जाएगी। इस बार एनटीए अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय अतिरिक्त देगा। एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र वर्तमान पते में बदलाव की मांग को देखते हुए विशेष करेक्शन विंडो खोली गई है। अभ्यर्थी 21 मई रात यानी कि आज रात 11:50 तक अपनी पहली और दूसरी पसंद के परीक्षा शहर और वर्तमान पते में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी तरह के बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। श्रोताओं, पुनर्परीक्षा या परीक्षा शहर बदलने के लिए अभ्यर्थियों से नया आवेदन शुल्क या संशोधन शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले आवेदन किया था। नए पंजीकरण के लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा। पुराने प्रवेश पत्र पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। एनटीए द्वारा 14 जून या उससे पहले नए प्रवेश पत्र और सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की जाएगी और एनटीए ने परीक्षा के पाठ्यक्रम, मुख्य पैटर्न और मार्किंग स्कीम में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ये अभी भी पूर्व की तरह ही रहेगी। सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे और गलत अंक पर 1 अंक काट लिया जाएगा।

श्रोताओं, इसके साथ साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 आज शहर के 35 केंद्रों में होगी। सुबह 10 से 12 बजे होने जा रही परीक्षा में 15,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने वाली परीक्षा के लिए 35 सेक्टर और इतने ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। एमजी रोड स्थित आगरा कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों में केंद्र बने हुए हैं। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 में केंद्र पर प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, नीला और काला बाल पॉइंट पेन की अनुमति होगी। और सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो परीक्षार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें और समय से पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं।

स्वतः जनगणना के अंतर्गत अगर आपने अभी तक ऑनलाइन स्वगणना नहीं की है तो आज आपके पास आखिरी मौका है। पहली बार जनगणना में लोगों को खुद मोबाइल फोन या ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भरने की सुविधा दी गई है। हम आपको बता दें, स्वगणना पूरी तरह से ऐच्छिक है। इसके बाद 22 मई से प्रदेश भर में जनगणना का पहला चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें गणनाकर्मी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन जानकारी भर दी है उनके स्वगणना नंबर के आधार पर गणनाकर्मी केवल सत्यापन करेंगे। स्वगणना में आजमगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और सोनभद्र सबसे आगे हैं। 22 मई से 20 जून तक चलने वाले पहले चरण में गणनाकर्मी घर घर जाकर मकानों की स्थिति, परिवार की सुविधा और संपत्तियों से जुड़े सवाल पूछेंगे। पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के जरिए होगी। इसके लिए प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो अगर आप भी स्वगणना का भाग बनना चाहते हैं तो आज आपके पास इसके लिए आखिरी मौका है।

भीषण गर्मी और लू से उल्टी दस्त के साथ ही गर्मी संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है, कैसे पता करेंगे कि हीट स्ट्रोक है? इसके लक्षण हैं, शरीर का तापमान 101 फारेनहाइट से ज्यादा पहुंच जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, बेहोशी आने लगती है और हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। ऐसे में अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है तो बेहोशी छाने और शरीर का तापमान बढ़ने पर मरीज के शरीर पर गीला कपड़ा लपेटकर पंखे में लिटा दें। शरीर पर पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी ना डालें, इससे शरीर का तापमान कम होने लगता है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और एक जरूरी बात, वजन कम करने के लिए लोग गर्मी में भी जिम में पसीना बहा रहे हैं, वैसे ही गर्मी के चलते शरीर से पसीना अधिक निकल रहा है। पसीने में पानी के साथ ही सॉल्ट भी बाहर निकलते हैं, इससे थकान, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, इसके साथ साथ उल्टी की समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस जिम में ज्यादा व्यायाम ना करें, यानी कि आप थोड़े समय के लिए जिम का प्रयोग कर सकते हैं या घर पर ही व्यायाम कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रखें अपना और अपनों का ख्याल। श्रोताओं

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दिए कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। हनी जैन पुत्र संजीव कुमार निवासी गणपति स्मार्ट सिटी बाईपुर थाना सिकंदरा आगरा से दिनांक 27 मार्च 2026 से लापता है। हनी की उम्र 36 वर्ष, कद 5'6", चेहरा कोल और हल्की दाढ़ी है। गुमशुदगी के समय हनी ने नीली टी शर्ट नीला लोअर पहना हुआ था। हनी के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना सिकंदरा आगरा के पते पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार विष्णु गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय सरवन निवासी 30/92 नगला धनी न्यू विजयनगर कॉलोनी थाना हरि पर्वत आगरा से दिनांक 17 जनवरी 2026 से लापता है। विष्णु की उम्र 27 वर्ष, कद 5'4", चेहरा गोल और रंग गेहुआ है। गुमशुदगी के समय विष्णु ने काली टी शर्ट नीली जींस पहनी हुई थी। विष्णु के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना हरि पर्वत आगरा के पति पर सूचित करें। और एक अन्य सूचना के अनुसार खुशबू पत्नी शादिक निवासी फतेहाबाद रोड थाना एकता आगरा से दिनांक 15 मार्च 2026 से लापता है। खुशबू की उम्र 19 वर्ष है। गुमशुदगी के समय खुशबू ने लाल कुर्ती पजामी पहनी हुई थी। खुशबू के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना एकता आगरा के पति पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, शादी अनुदान योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे समस्त पिछड़ी जाति के आवेदनकर्ताओं द्वारा अपनी पुत्री का शादी अनुदान के लिए विभागीय वेबसाइट shaadianudan.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन किसी भी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा मार्च 2027 में अपनी पुत्री की शादी संपन्न की जा रही है तो वे आवेदक एक माह पहले आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पुनः नोट कर लें, shaadianudan.upsdc.gov.in।

है। जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी राजकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन परिषदीय और सभी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए एक सप्ताह का अवकाश घोषित कर दिया है। 21 मई से आगामी एक सप्ताह तक कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। आदेश में सभी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी भी स्कूल में आदेश के बावजूद कक्षाएं संचालित पाई जाती हैं तो संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

शुदो चाय सिर्फ पी नहीं एहसास है। जी हाँ शुदो, हर साल आज ही के दिन 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ चाय के स्वाद का नहीं बल्कि उससे जुड़े एहसास का भी उत्सव है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मान्यता दी थी ताकि दुनिया को चाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। चाय दुनिया के सबसे पसंदीदा पेयों में से एक है। सुबह की शुरुआत हो, दफ्तर का छोटा विराम हो या बारिश के मौसम में दोस्तों के साथ बैठना, बस एक कप चाय हर मौके को खास बना देती है। चाय सिर्फ थकान दूर नहीं करती बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। शुद्ध माना जाता है कि चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। यहाँ चाय पीना सिर्फ आदत नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। चीन में चाय परोसने की पारंपरिक विधि को बहुत खास माना जाता है। चाय बनाने और परोसने का तरीका वहां शांति, सम्मान और अनुशासन से जुड़ा होता है। धीरे धीरे चाय चीन से दुनिया के कई देशों तक पहुंच गई और हर जगह अपना अलग अंदाज बन गई। भारत में चाय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। घर हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़क किनारे की दुकान हो, दफ्तर की कैंटीन हो या गांव की चौपाल हो, बस चाय हर जगह मिल जाती है। अब मसाले वाली चाय, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय या कड़क चाय, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। और भारत में तो अक्सर बातचीत की शुरुआत भी चाय से ही होती है। राजनीति, क्रिकेट, काम या परिवार की बातें, चलो चाय पी लेते हैं, बस इतना कहते ही माहौल हल्का हो जाता है। कई बार एक कप चाय और दोस्तों की बातें दिन भर की चिंता कम कर देती है। सच कहें तो भारत में चाय सिर्फ पी नहीं जाती बल्कि चाय महसूस की जाती है। हमारे यहाँ चाय पर मिलना सिर्फ चाय पीना नहीं होता बल्कि साथ बैठकर समय बिताना भी होता है। यही वजह है कि चाय लोगों को करीब लाने का काम भी करती है। आज की तेज जिंदगी में चाय एक छोटे से आराम की तरह है। ये हमें कुछ देर रुकने, अपनों से बात करने और खुद को थोड़ा समय देने की याद दिलाती है। खुशी हो, तनाव हो, ठंड हो या बारिश, चाय हर माहौल में बस फिट बैठ जाती है। इसीलिए तो सही कहा गया है, चाय सिर्फ एक पेय नहीं, ये तो एक एहसास है।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान

0: प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।

0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
1: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है समुना तुर्मी। प्रियंका
0: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी

0: Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, No Cosmetic Job with Jabs, warns drug regulator. The Indian Express in an exclusive writes, Working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पांच मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है. भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे. मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं. मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है. मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है. और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है. अब खबरें तफसील से. वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं. इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है. दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं. इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं. दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए. रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरका अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिजाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस की है. जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली

0: डिजाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के उसूल पर आगे कदम बढ़ाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत और इटली के दरमियान दिफाई सनती खाके के तहत साजो सामान मिलकर तैयार करने की राह हमवार हुई है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कामयाब दौरा भारत के बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात और सकाफती ताउन को मजबूत करने की उनकी जारी कोशिशों का हिस्सा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह इटली का पहला दोतरफा और मजमूई तौर पर तीसरा दौरा था। उनके इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम और सरगर्मियां अंजाम पाईं। उन्होंने इटली के सदर सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की, जिसमें भारत और इटली के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। खुराक और ज़राअत की तंजीम के उनके दौरे का मकसद कसीर जेती और आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अज़्म को मुस्तहकम करना था, जहां उन्हें अहम यूएन एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। दोनों फरीकों ने 2027 के लिए सकाफत और सियाहत के इटली भारत साल के आगाज का भी फैसला किया। उन्होंने पुरजोश भारतीय और इतालवी फनकारों से भी मुलाकात की, जिन्होंने रोम आमद पर उनका इस्तकबाल किया। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान सकाफती तबादलों को फरोग देने और मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझबूझ को बढ़ावा देने और सकाफती सिफारतकारी को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात सिर्फ सियासी और इकतसादी राबतों के जाविये से ही नहीं देखे जाते, बल्कि अवाम और मुआशरों के दरमियान रिश्तों से भी इनकी अक्कासी होती है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल गूगल, मेटा और टेलीग्राम समेत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और मुकाबला जाति इम्तिहानात से मुतालिक गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात, खासतौर पर टेलीग्राम चैनल्स और नामालूम ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 21 जून को दोबारा होने वाले नीट यूजी इम्तिहान से कबल ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। हुकाम ने कहा है कि अहम इम्तिहानात से पहले इस तरह के कई चैनल बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं और पेपर लीक होने के फर्जी दावे करने लगते हैं, जिससे तलबा और वालिदैन में गैर जरूरी तौर पर घबराहट, फिक्रमंदी और इबहाम की कैफियत पैदा होती है। मगरबी बंगाल में जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असेंबली हलके में आज दोबारा पोलिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने वहां 29 अप्रैल की वोटिंग को रद्द कर दिया था और पूरे फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया था, क्योंकि वहां राय दहिंदकान को डराने धमकाने, पोलिंग मराकज में गैर मजाज अफराद की मौजूदगी और वोटिंग मशीनों के साथ मुमकिन छेड़छाड़ समेत बेजाबतगियों की कई इत्तलात मौसूल हुई थी। दो आजाद उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐलान किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता बैलेट पर उनका नाम मौजूद है, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पहले ही गुजर चुकी है। इस चुनाव में दिबांशु पांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम की तरफ से शंभुनाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। कल नाबन्ना में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अहदेदारों की मौजूदगी में बाजाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज किया। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
3: रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने साबिका सरकार पर तावुन ना करके सरहदी सिक्योरिटी में रखना डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरहद पर बाड़ लगाना मुल्क और रियासत की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस तनाजुर में दरअंदाजी, स्मगलिंग

0: ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का चौथा और आखिरी हॉकी मैच 3-3 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। इससे कबल इसी मैदान पर 18 साल तक की उम्र की खातून खिलाड़ियों के चौथे और आखिरी मैच में भारत ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में इटली का दौरा करने और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि भारत और इटली के दरमियान बातचीत सिर्फ रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक ने खसूसी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। अखबार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया किया है कि इंतजामी फैसले में ताखीर लोगों को उनके जायज हकूक से महरूम करने के मुतरादिव। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि जनूबी कोरिया के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी और होगी मजबूत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का आरंभिक गीत है साजन फिल्म से। स्वर है एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की। बोल है समीर के, धुन बनाई है नदीम शमर ने।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अब लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को। समीर की बोलों को संगीत से सजाया है नदीम शमर ने।

0: जोकर।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है।

श्रोताओं, इस गीत में स्वर है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के, गीतकार है फैज अनवर, संगीतकार है नदीम शमण, फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

साथी अब लीजिए सुनिए कुमार सानू और चित्रा को। फिल्म है विरासत, गीतकार है जावेद अख्तर, संगीतकार है अनु मलिक।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है कुमार सानू और साधना सरगम के, गीतकार है इंदिवर, संगीतकार है राजेश रोशन, फिल्म का नाम है जुर्म।

श्रोताओं, कुमार सानू और साधना सरगम के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।
1: आगरा और सुल्तानपुर जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सुल्तानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
3: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 प्रतिमा किए जाने के अवसर पर आगरा में अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम का लखनऊ से सजीव प्रसारण को प्रतिनिधि अधिकारियों और अनुदेशकों द्वारा देखा गया। इस अवसर पर जनपद के 226 अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि शिक्षक केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद समागम थीम पर आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, उद्यमी, निवेशक, किसान और गोपालकों द्वारा भाग लिया गया। डेयरी कॉन्क्लेव में स्वदेशी नस्ल संरक्षण और आधुनिक डेयरी तकनीक योजनाओं की जानकारी, गोपालन पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था, डेयरी और क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया गया। कॉन्क्लेव में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित निवेशकों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निराश्रित गौवंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी। विगत दिनों आगरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस बिजनेस मीट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और न्यूजीलैंड सरकार के व्यापार और निवेश मंत्री टाड मैकल की मौजूदगी में व्यापार, निवेश, औद्योगिक साझेदारी के नए अवसरों का

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है श्री 420।

जी हाँ श्रोताओं, इन गीतों के माध्यम से हम भी आपसे जुड़े हुए हैं आकाशवाणी आगरा पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है संघर्ष, स्वर है मोहम्मद रफी का, गीतकार है शकील बदायूनी, संगीतकार है नौशाद।

और आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है नया दौर, स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी के, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार है ओपी नैयर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं बलवीर सिंह बघेल के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बलवीर सिंह बघेल के गाए कुछ लोक गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बलवीर सिंह बघेल के गाय कुछ डोकेत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे की शब्द रचना। स्वर थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। फिल्म थी परिणीता। और अब लीजिए सुनिए शिवाय फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान को। गीतकार है सईद कादरी, संगीतकार है मिथुन।

विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की शब्द रचना। स्वर थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की फिल्म थी ओम शांति ओम। और अब लीजिए सुनिए फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से सोनू निगम को। बोल है जयदीप साहनी की, धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पंडित सी आर व्यास का राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित सीआर व्यास का राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं विदुषी शोभा गुटू का राग मिश्र भैरवी में गाई ठुमरी। बोल हैं नैया पड़ी मझधार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गुट्टू की इकाई राग मिश्र भैरवी में ठुमरी, बोल थे नैया पड़ी मझधार। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाश

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। सुबह के 11 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का।

कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं निर्देशक आदित्य चोपड़ा की। हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं जो कम फिल्मों का निर्देशन करते हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में बनाते हैं वो कमाल की होती हैं। उन डायरेक्टर्स में से एक हैं यश चोपड़ा, जो उनके पिता थे। अब उनके बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा हैं। आदित्य ने अपने पिता यश चोपड़ा को असिस्ट किया और वहीं से फिल्म बनाने की बारीकियां सीखी। आदित्य चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, लेकिन लाइमलाइट में रहना ये पसंद नहीं करते। सोशल मीडिया पर आदित्य चोपड़ा की बहुत कम तस्वीरें भी उपलब्ध होती हैं और वो ज़्यादा कहीं आते जाते भी नहीं दिखते। फिर भी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा जाती हैं। आदित्य चोपड़ा का आज जन्मदिन है, चलिए इस मौके पर आज हम इस कार्यक्रम में उनसे जुड़ी तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं निर्देशक आदित्य चोपड़ा की। फिल्ममेकर यश चोपड़ा और राइटर पामेला चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा का जन्म 21 मई 1971 को हुआ। इनके छोटे भाई उदय चोपड़ा एक्टर हैं। यश चोपड़ा की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में हुई और मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की। आपको बता दें कि आदित्य चोपड़ा के बैचमेट्स में अभिषेक कपूर, करण जौहर और अनिल ठडानी जैसे बड़े फिल्ममेकर्स रहा करते थे। आदित्य चोपड़ा की वाइफ रानी मुखर्जी हैं, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है। 18 साल की उम्र में आदित्य चोपड़ा ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। आदित्य ने अपने पिता यश चोपड़ा को असिस्ट किया। उन्होंने चांदनी, लम्हे और डर जैसी फिल्मों को असिस्ट किया। आदित्य ने अपने पिता की फिल्म परंपरा, जो कि 1992 के लिए पहली बार स्क्रीन प्ले किया था, वहीं अपनी मां पामेला चोपड़ा की फिल्म आईना, जो कि 1993 में आई थी, उसको भी उन्होंने असिस्ट किया। 23 साल की उम्र में आदित्य ने पहली फिल्म डायरेक्ट की, जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 1995 में आई। इस फिल्म का निर्माण यशराज बैनर्स तले हुआ था और ये आदित्य चोपड़ा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं निर्देशक आदित्य चोपड़ा की। गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि महज 23 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ डायरेक्ट की। निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखने के बाद जो 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज होने के साथ ही 30 साल से भी अधिक यानी 1500 सप्ताह से अधिक सिनेमाघरों में ये फिल्म चली। फिल्म के हर फ्रेम में उनका अनूठा स्पर्श महसूस होता है। इसकी ताजगी, हास्य, रोमांस और मुख्य जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री और भारतीय परंपरा में आस्था के साथ आधुनिक सोच का अनूठा मेल हर किसी का दिल जीत गया। DDLJ हर मायने में आदित्य चोपड़ा की रचना थी। निर्देशन के अलावा कहानी, पटकथा, संवाद की जिम्मेदारियां भी उन्हीं की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने हर संभव पुरस्कार जीता, जिसमें 10 फिल्मफेयर पुरस्कार थे। इसके साथ ही लोकप्रिय और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसमें शामिल है। आदित्य चोपड़ा की निर्देशक के रूप में दूसरी फिल्म मोहब्बतें आई, जो कि 2000 सन में रिलीज हुई, उनकी पहली फिल्म की एक शानदार अगली कड़ी थी ये फिल्म, और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। मोहब्बतें ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के अद्वितीय करियर के दूसरे चरण को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 साल बाद आदित्य चोपड़ा की तीसरी निर्देशित फिल्म रब ने बना दी जोड़ी, जो कि 2008 में आई थी, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। उन्होंने शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में पेश किया। आदित्य चोपड़ा की अगली निर्देशित फिल्म थी एक हल्की फुल्की प्रेम कहानी। यह उनकी सबसे खुशहाल, सबसे युवा और सबसे जोखिम भरी फिल्म थी बेफिक्रे, जो कि 2016 में आई थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह और वाणी कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। एक निर्देशक के रूप में रोमांस के विचार का प्रतीक बनना, एक निर्माता के रूप में विधाओं में बदलाव लाने वाले रुझानों का अन्वेषण करना, यही है हमारे निर्देशक आदित्य चोपड़ा।

रोमांचक पटकथाओं को चुनने की उनकी कुशलता, संगीत की उनकी बेमिसाल समझ, मनोरंजन की उनकी अचूक समझ और दर्शकों को लुभाने वाली चीजों का उनके बैनर में दिखना लोगों को आकर्षित करता है। आदित्य चोपड़ा मनोरंजन जगत में न केवल हिट फिल्में देने और कुछ सफल अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं को लॉन्च करने के अपने शानदार रिकॉर्ड के लिए भी जाने जाते हैं। आदित्य चोपड़ा एक फिल्म प्रेमी हैं और वे ज्यादातर फिल्में देखना अपना कर्तव्य समझते हैं, चाहे वो फिल्में लोकप्रिय हों, मनोरंजक हों या समीक्षकों द्वारा सराही गई हों या फिर लीक से हटके हों। यही सारी खूबियां उन्हें एक सफल निर्देशक बनाती हैं।

प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मैं हूं इस कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष आपका रेडियो साथी शशांक शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्र रक्षा है सबका दायित्व इस विषय पर। क्या वाकई में ऐसा है कि राष्ट्र की जो रक्षा का दायित्व है वो हम सबके ऊपर है? चलिए बात करते हैं। व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए समाज और राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। अगर इसका निर्वाह नहीं किया जाए तो उन्नत सुसंस्कृत एवं आदर्श समाज या देश की कल्पना संभव नहीं है। एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमारा मानना है कि अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ देश और समाज के प्रति दायित्वों का निर्वाह भी पूरी तरह पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। एक समाज समुदाय या देश के नागरिक होने के नाते कुछ दायित्वों का पालन व्यक्तिगत रूप से करना ही चाहिए। ये भारत के नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वो वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर बने। ये देश के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। यह तभी संभव हो सकता है जब देश में अनुशासित समय के पाबंद कर्तव्य परायण और ईमानदार नागरिक हों। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। परिवार एवं आसपास के लोगों में मेलजोल और समन्वय के साथ रहना चाहिए। इससे परिवार में और समाज में शांति आपसी प्रेम और परस्पर विश्वास की रसधारा बहेगी। ये तो सामाजिक नजरिया हो गया। अब आर्थिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें तो देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत विश्व की उभरती आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। यह देश के लिए एक उदारवादी नजरिया अर्थनीति उद्यमशीलता के अलावा लोगों के समन्वित प्रयास व उत्साह का नतीजा भी है। भारत में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ रहा है। देश इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा सुविधाओं के मामले में आगे बढ़ता चला जा रहा है। जरा सोचिए यह सब कुछ कहां से हो रहा है? यह देश के नागरिकों के टैक्स के पैसे से ही हो रहा है, क्योंकि एक कड़ी है, एक चैन है, एक सिस्टम है। कहते हैं कि भारत में हमारे पास एक जो धन है वो है खेती का, किसानी का, पावर का। बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका, एकजुटता हमारे भारत को आगे तक निरंतर ले जा रही है। हमारे जो भारत की कृषि है वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे भारत का जो किसान है वो भी निरंतर प्रगति के पथ पर है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार, और अब समय हो चला है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। तो सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्र रक्षा है सबका दायित्व विषय पर। राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा केवल हमारी सेना या पुलिस का दायित्व नहीं है, बल्कि यह हर एक नागरिक का सामूहिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA भी यही कहता है कि जब तक देश के नागरिकों का मनोबल, एकता और जागरूकता मजबूत है, तब तक राष्ट्र सुरक्षित रहता है। नागरिकों के रूप में हम राष्ट्र रक्षा में इस प्रकार योगदान दे सकते हैं, जैसे किसी भी अफवाह या गलत जानकारी को फैलाने से बचें, अफवाहों का खंडन करें, एकता और भाईचारे को अपनाएं, आपसी सौहार्द को बढ़ावा दें जो देश की आंतरिक शांति और अखंडता की नींव है, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से पालन करें, इनमें संविधान का सम्मान करना, कानून का पालन करना भी शामिल है, स्थानीय उत्पादों का समर्थन करके आर्थिक विकास में योगदान देकर हम देश को मजबूत बना सकते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इस समय सूरज अपना कहर बरसा रहा है, तापमान हर दिन के साथ तेज होता जा रहा है, तो ऐसे में एहतियात बरतने की बेहद आवश्यकता है। दोपहर के समय बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। सूती कपड़े पहने, बुजुर्ग और बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखें। इन दिनों में जितना भी हो सके पेय पदार्थों का सेवन करें, पानी जो है अधिक से अधिक पिएं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जो आपके डाइजेशन को, आपके पाचन तंत्र को खराब करके आपको कई तरह के शारीरिक विकार भी दे सकती है। तो इन दिनों में पेय पदार्थ और जितना हो सके पानी का भरपूर सेवन करें। 7 से 8 गिलास नियमित तौर पर पानी पिएं, और अगर ज़्यादा भी आप पी पाते हैं तो आपके लिए बेहतर ही है। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और बाहर का और तला भुना खाने से बिल्कुल परहेज करें। खुद सुरक्षित रहें और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखें। आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें। बहुत बहुत

0: धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अति तिहार के पावन दिन मा उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
0: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
0: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुवांशु पांडे जी ने लिखा है।
0: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
0: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
0: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
0: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
0: जी,
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी,
1: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cieet.com

0: nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ दादी माँ, का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी।

0: कभी कहीं भई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं कभी कहीं भई कभी कहीं।
1: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग

0: பிரங்கா சுந்தர் மோர், ரங்கு பிரங்கா சுந்தர் மோர், ரங்கு பிரங்கா சுந்தர் மோர், கேதி காதி பூ.
1: ரங் பிரங்கா சுந்தர் மோர் தாதிமா.
0: शाबाश. छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर. और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था.
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए. फिर
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर.
0: शाबाश. तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते.
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे.
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: इसे काट।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई।

0: जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
1: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
2: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
3: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
3: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
2: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
2: अच्छा ठीक है,
3: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
1: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। आवाजें थी नीति मोहन के और शंकर महादेवन की। इरशाद कामिल की रचना को संगीत से सवारा था विशाल शेखर ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तनु वेट्स मनु से। गीत को गाया है लैम्बर हुसैनपुरी ने। गीत लिखा है राजेश खैर ने। संगीत पद किया है कृष्णा ने।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तरह ने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड फिल्म में अभी आप सुन रहे हैं सुंदरी चौहान शेखर अफजियानी को। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में अभी आपने सुना 10 फिल्म का गीत। आवाजें थी शंकर महादेवन, उदित नारायण और साथी की। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब से कुछ देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश

0: का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tended record of genocide at the United Nations Security Council, speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday. India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
2: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: Defense Minister Rajnath Singh and Minister of Patriots and Veterans Affairs of South Korea Kwon

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल लखनऊ में रोड सेफ्टी को लेकर एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-आला ने कहा कि सड़क हादसात ज़्यादातर बेदारी की कमी से होते हैं, ऐसे में तमाम अजला में रोड सेफ्टी से मुतालिक खसूसी मुहिम चलाई जाएँ। वज़ीर-आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वह सड़क की हिफाजत की कोशिशों के पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सरकारी सतह पर 2 हफ्तेवार मीटिंग करें। उन्होंने स्टंटिंग, स्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाने की रोकथाम के लिए मुअसर इकदाम की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन से कहा गया कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि सिर्फ मुनासिब फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें और ड्राइवर और कंडक्टर की बाकायदगी से सेहत की जाँच होती रहे। वजीर आला ने यह भी हिदायत दी कि सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही करके जरूरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अल नीनो के असर से आने वाले बरसों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए रियासत को अभी से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक जायजा मीटिंग में वज़ीर-आला ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और अंदरून मुल्क गंदम की प्रोसेसिंग को फ़रोग देने के लिए मार्केट फीस में छूट जैसे मसाइल का जायजा लिया।
1: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघव।

0: महेंद्र त्रिपाठी।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल महकमा तामीरात आम्मा के साल 2026-27 के लाहे अमल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। मीटिंग में रियासत के तमाम जिला मजिस्ट्रेट, वुजरा और अवामी नुमाइंदे शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी कि तरक्याती कामों में मेयार और वक्त से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के हर एक जिले से मकामी जरूरियात के मुताबिक तरक्याती तजावीज तैयार करके एक हफ्ते के अंदर पेश की जाएं। रियासती काबीना की तौसी में काबीनी वजीर बने भूपेंद्र चौधरी ने कल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के वजीर के तौर पर ओहदा संभाला। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की में MSME का अहम किरदार है।
2: निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से MSME विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाए इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आइंदा नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान के मद्देनज़र मरकजी हिफाजती और खुफिया एजेंसियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में जनाब प्रधान ने इम्तिहान को महफूज, गैर जानिबदाराना और शफाफ तौर पर कराने के लिए सख्त निगरानी और पुख्ता हिफाजती इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया। रियासत में जारी खुद शुमारी का आज आखिरी दिन है। रियासती मर्दम शुमारी के डायरेक्टर और चीफ प्रिंसिपल मर्दम शुमारी अफसर शीतल वर्मा ने लोगों से आज भी खुद शुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। मर्दम शुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत रियासत में कल से मकानों की गिनती शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस दरमियान कल सुप्रीम कोर्ट ने मर्दम शुमारी 2027 के तहत जात पर मबनी मर्दम शुमारी कराने के मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मसला हुकूमत के पॉलिसी दायरा कार में आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि पसमानदा तबकात के लिए फलाही इकदाम करने के वास्ते हुकूमत को उनकी तादाद जानना जरूरी है। रियासत में शदीद गर्मी और लू से लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। बांदा कल 48 डिग्री दर्जे हरारत के साथ रियासत का सबसे गर्म जिला रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। महकमा मौसमियात ने कल तक रियासत के बाज़ मकामात पर शदीद लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है महिला श्रोताओं के कार्यक्रम घर संसार का, तो सुनते हैं कार्यक्रम घर संसार।
4: नमस्कार,

नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार और आज आपके साथ मैं हूं प्रीति। तो सखियों, गर्मी तो बहुत पड़ रही है और सुकून ठंडी हवा में ही मिलता है, लेकिन उस सुकून के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है ना। बिल्कुल ऐसे ही सखियों, हम उन्नति तभी कर सकते हैं जब शांति काल हो, हम सुरक्षित रहें और सुरक्षा के प्रति विश्वस्त भी रहें। इस शांति और स्थिरता को आतंकवाद हमेशा से भंग करता आया है। आजादी के बाद से ही भारत की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता को अब तक जाने कितने ही बार आतंकवाद ने दहलाने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कई साजिशें की गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। देश के भीतर से कौन मदद कर रहा है इन आतंकवादियों की, कौन इन्हें छुपाने और वित्त मदद भी कर रहा है? और सवाल तो भाई ये भी उठता है ना कि इस देश की मिट्टी का उपजा खाने वाले हम लोग, भारत के समुद्रों का नमक खाने वाले हम लोग, तो फिर हम में से वो कौन लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने ही घर में आतंक की आग नहीं लगाई जाती? क्या ये आपका घर नहीं है?

0: आतंकवाद सीमा पार से ही नहीं होता, बल्कि जो लोग देश में रहकर आतंकियों के लिए काम करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, वो दोषी हैं। इस तथ्य से आप नकार नहीं सकते। आज का युवा वर्ग इतना तो समझदार है कि आतंकवाद के गंभीर परिणामों को अच्छी तरह जानता है, तो फिर किसी के बहकावे में आकर कोई कैसे देश, अपने ही परिवार और खुद को आतंकवाद की भेंट चढ़ा सकता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के लिए है। हिंसा और चरमपंथ तो जैसे इस युग की विभीषिका बन गई है, जिसके शिकंजे में फंसे युवा वर्ग और हम सभी लोग अहिंसा और एकता का सार कहीं ना कहीं भूल से गए हैं। राष्ट्रीय अखंडता देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। बॉम्ब ब्लास्ट और गन शॉट्स ने जाने कितनी ही भविष्य की संभावनाओं को धराशायी किया है। आतंकवाद के कई मुखौटे हैं। क्यों आतंकी हिंसा और डर से अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं? आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, दुनिया गवाह है। जिन मुल्कों ने आतंकवाद की राह पकड़ी है ना, उनका क्या हश्र हुआ है। जागरूक रहिए, अपनों को आतंक की राह कभी न चलने दीजिए। ये देश हमारा है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। और सखियों, हम इतने सशक्त भी हैं कि इन मुश्किलों को हराकर उठना भी जानते हैं। और फिर कहते ही है ना कि जीवन सुख दुख का सफर है, आशावादी बने रहना जीवन जीने का ढंग है। देखें तो फूल ही चुने जाते हैं, पर कांटे तब भी रहते हैं, लेकिन उन्हें संग कोई नहीं ले जाता है ना। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर शैली अग्रवाल की वार्ता, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।
1: जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी का बस इतना ही पैगाम है। आखिर यह जिंदगी क्या है? जब कभी जिंदगी के बारे में सोचती हूं तो लगता है जैसे उगते सूरज की पहली किरण है जिंदगी, जिसे देखकर हमारे अंदर एक नई आशा और विश्वास का संचार होता है। इस प्रकार की खुशी का अनुभव दिल से किया जाता है। खुशी को महसूस करने के कई कारण होते हैं। कभी आपको सुख मिलता है तो कभी दुख, किंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस दुख को कैसे खुशी में बदल दें, क्योंकि इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हमें अपना दुख कम लगने लगता है और उससे हमें शक्ति मिलती है। सुख दुख का नाम ही जिंदगी है। जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। जब दुख के बाद सुख आता है तब हमें सच्ची खुशी का एहसास होता है। जिंदगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग ही पहेली होती है। सभी इसे अपने अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। किसी के लिए जिंदगी रंगों से भी अधिक खूबसूरत है तो किसी के लिए संघर्ष ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी के प्रति हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। राह में बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं, किंतु यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आप जिंदगी को जीत लेंगे। हमें जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक मकड़ी अनेक बार गिरती है, अनेक बार उठती है और अपना जाल बनाने में हार नहीं मानती और इस तरह अंत में अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल होती है, तो हम मानव होकर क्यों निराश होते हैं? बस बात धैर्य की है, क्योंकि जब हमारे पक्ष में परिणाम नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि लोग जीवन को पल भर में जरा से आवेश में खत्म कर देते हैं। आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण कार्य को करते हुए ये लोग नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके परिजनों का क्या होगा। हमें जिंदगी में अपने आप के साथ ईमानदार होना चाहिए।

0: ईमानदारी जीवन का मूल मंत्र है। जिंदगी को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिंदगी हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे हंसकर जीते हैं या कठिनाई मानकर रोते रहते हैं। जिंदगी का सच्चा सुख हमें तभी मिलता है जब हमारी जिंदगी किसी के काम आए। जब हम किसी की मदद करते हैं तब जो सुख मिलता है वो करोड़ों रुपए कमाने से भी नहीं मिलता। जीवन में संतोष होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम भागदौड़ में जो हमारे पास है उसे भी नहीं देख पाते हैं। मन की खुशी बहुत महत्व रखती है। जब हमारी वजह से किसी के होठों पर मुस्कान आती है तो हमारे दिल को राहत मिलती है। किसी ने सच ही कहा है, हर इंसान का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्यहीन जिंदगी बेमानी सी लगती है। आखिर जिंदगी की उड़ान सपनों से ही तो शुरू होती है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि जिंदगी का हर लम्हा हर पल महसूस करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अपने आज को जी भर कर जी लीजिए। हमेशा लोग भविष्य के सपने देखते हैं और अपने आज पर ध्यान नहीं देते। अपने आज को सवारो, कल अपने आप सुनहरा हो जाएगा। जिंदगी जिंदा दिली से जियो, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह जिंदगी ईश्वर का अनमोल उपहार है। जिंदगी से प्यार करो, इसे सहेज कर रखो। हमेशा हंसने के मौकों की तलाश करो, जिससे बोझिल हो रहे पलों को हल्का बनाया जा सके। हर चीज बेकार है, बोरिंग है जैसी बातें आपको खुश कम दुखी ज्यादा करेंगी। दुनिया क्या कहती है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें किससे खुशी मिलती है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका मन जो करने को कहे वही कीजिए। जीवन में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग हंसना ही भूल गए हैं। अब शारीरिक श्रम की तुलना में लोगों को मानसिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण शरीर में अकड़न आ जाती है। इसका परिणाम यह है कि अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए नई नई विधियां खोजी जा रही हैं। हंसना मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए भोजन। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है तो मन को प्रसन्न रखने के लिए हंसना। हंसी के ठहाके बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको पल भर में मुक्त कर देते हैं। मेरा मानना है कि यदि आप इन उपायों को अपना लें तो जिंदगी की अनेक समस्याएं यूं पंख लगा के उड़ जाएंगी कि आपको समय का मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। जरूरी नहीं कि कोई एक ही मुलाकात में आपसे दोस्ती कर ले, लेकिन कोशिश जारी रखिए। यदि आपने मान लिया है कि आपके बिना दुनिया नहीं चल सकती तो ये आपका ख्याल गलत है। इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। खुद हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। तनाव खुद ही आपसे दूर भाग जाएगा। परेशानियों के बीच भी खुशी के मौके ढूंढिए। केले के छिलके पर पैर पड़ने पर यदि आप फिसलते हैं तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उस छिलके को हटाइए। दूसरों के साथ मिलकर खुद भी हंसिए। विश्वास कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। प्रकृति में ऐसे कई उपादान हैं जिनको देखने मात्र से ही व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। उड़ती हुई तितली के रंगों को देखकर, बारिश की बूंदों को हाथ में लेकर अथवा शीतल मंद मंद चलती पवन के झोंकों से मन प्रफुल्लित हो उठता है। अंत में इतना जरूर कहना चाहती हूं कि खुशियां बाजार में नहीं बिकती। अगर ऐसा होता तो दुनिया का कोई भी अमीर आदमी दुखी नहीं होता। खुशियां आपके अंदर हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। किसी ने कहा भी है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं।
1: तो सखियों, अभी आप सुन रही थी डॉक्टर शैली अग्रवाल की वार्ता, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जी हाँ सखियों, दुख भी सुख के जैसा ही है। बस ये है कि सुख सब चाहते हैं और दुख को कोई फेस नहीं करना चाहता।

जय सखियों, सुख दुख अपने ही साथी हैं और सुख दुख का एक्सपीरियंस इस शरीर से ही होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस शरीर की बेहतरी के लिए और जान लेते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो सखियों, आपने गुड बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक फॉर्मूला के बारे में सुना होगा। एक ऐसा ही गुड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया समूह का सबसे बड़ा वंश है। ये छड़ के आकार का होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है। यहाँ आपको बता दूं कि ये जो ग्राम है, ये ग्राम स्टेन होता है, उसी से जांच हुआ करते हैं। और ये बैक्टीरिया हमारे गट में रहते हैं और दूध, दही, फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों आदि में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध में मौजूद

दूध लैक्टोज शर्करा को फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध खट्टा होकर दही में जम जाता है। इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये पाचन तंत्र में हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, कई बार होता है कि एंटीबायोटिक बहुत ली जाए तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन या संक्रमण के कारण होने वाले डायरिया को रोकने में ये कारगर है। तो जब हम दही खा रहे होते हैं या फर्मेंटेड रोटी या डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे होते हैं, हम अपने पाचन तंत्र को अच्छे बैक्टीरिया का खजाना दे रहे होते हैं, जो न सिर्फ हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है बल्कि हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। सबसे अच्छा ये रहता है कि हम घर की बनी फर्मेंटेड खाद्य सामग्री का उपयोग करें, जो हमारे स्वस्थ देशी परंपरा से आती हैं। तो चलिए सखियो, यहाँ रुकते हैं, इस छोटे से अंतराल के बाद फिर मिलते हैं।

वेलकम बैक सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार और आपके साथ मैं हूं आपकी सखी प्रीति। सखियों, व्यवहार कुशल होना बेहद आवश्यक है। किसी का मन दुखाना हमारी आदत कैसे हो सकता है? परिवार में या फ्रेंड सर्कल में भी वजह नहीं व्यवहार झगड़े का कारण बनता है। फलने वाले वृक्ष आपने देखे हैं ना कि कैसे झुक जाते हैं फलों के भार से, और ज्ञानी विवेकी लोग भाई उनसे बात करके ना पता ही नहीं चलता कि भाई ये इतने इंटेलिजेंट हैं। बहुत विनम्र होते हैं ये लोग। जब हम अपने व्यवहार से किसी का मन दुखाते हैं तो हमारी छवि वहीं से नकारात्मक होनी शुरू हो जाती है। सखियों, ऐसे लोग सबके आसपास होते हैं जो करते ही वही बात है जिससे किसी को भी बुरा लगे, दुख पहुंचे। फिर चाहे आप उनसे कितना भी अच्छा व्यवहार कर लीजिए, उनका व्यवहार परिवर्तित नहीं होता। इसलिए बच्चों को व्यवहार के तत्व जैसे समानुभूति और गुस्से में कैसे सदी हुई प्रक्रिया देना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना और रिश्तों की समझ सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यवहार भी प्रतिक्रियाओं का सेट है जिसका अभ्यास आप करते आए हैं। वही प्रतिक्रियाएं आप अनियंत्रित रूप से करेंगे और यही आपका व्यक्तित्व भी बनता है। इसलिए बच्चों को व्यवहार कुशल बनाना अभिभावक की जिम्मेदारी है और बड़े लोगों के लिए भी कि वो अपने आसपास से सीखें, वो जानें कि उनका खुद का व्यवहार क्या है। इसे पढ़ना समझना इतना भी मुश्किल नहीं, बड़े लोगों को भी व्यवहार सीखने की जरूरत पड़ ही जाती है। सखियों, चलिए अब बात करते हैं उन विचारों की जो हमें चलते फिरते कहीं किसी दीवार पर लिखे हुए मिल जाते हैं। भाई ये घर भी सजा सकते हैं। अच्छा, कई महत्वपूर्ण स्थान जैसे स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, कार्यालय या कोई रेस्टोरेंट, इन स्थानों पर कुछ प्रेरणादायक वाक्य लिखकर दीवारों पर लगाए होते हैं जो सोच को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। इसे कहते हैं कोट्स बोर्ड। हम इनका प्रयोग घर की सजावट में काफी अर्थपूर्ण तरह से कर सकते हैं क्योंकि उम्र के किसी ना किसी दौर में हम सभी ने कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य अपने लिए चुना होता है जिसकी याद बनी रहे। इसलिए कुछ शब्द चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर चिपका दिए जाते हैं कि आते जाते उन पर नजर पड़ती रहे और हम उस कार्य को करते रहें या उस ओर बेहतर होने की दिशा में प्रयास करते रहें। ये कोट्स बोर्ड घर की वाइब्स को काफी अप कर सकते हैं क्योंकि ये काफी आकर्षक रूप में बनाए जा सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे रंगीन फ्रेम्स पर इन्हें लिखें। अच्छा, पॉप्सिकल स्टिक्स, वही जो आइसक्रीम की

डंडियाँ होती हैं, तो भाई उनको भी रंगीन रंगिए और मन चाहे कोट्स, प्रेरणादायक वाक्य उसे आप लिख सकते हैं। अलग अलग तरह के रंगीन या काले फॉन्ट्स, इन्हें भी आप लिख सकते हैं, जो काफ़ी मतलब देखकर ही आपको खुश कर सकते हैं। तो इन्हें एक डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। कई सारे शेप्स, डिज़ाइंस, कलर्स, लेआउट, बहुत सारे ढंग्स हैं कोट्स बोर्ड बनाने के। तो फिर करना बस यही है कि अपनी इमेजिनेशन को घर की वाइब्स के संग मैच कर कोट्स बोर्ड सजा सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ रखी, आपने देखा है ना कि कैसे बहुत सारे मतलब जो बौद्धिस्ट जो कल्चर होता है उसमें फ्लैग्स होते हैं, उसमें प्रेयर्स लिखी रहती हैं, हवा के साथ वो उड़ती रहती हैं और घर की वाइब्स पॉजिटिव बनाती हैं। तो बस कुछ ऐसा ही मैजिक अपने घर के लिए भी क्रिएट कीजिए, और फिलहाल इस मैजिक को इस सॉन्ग के साथ आगे बढ़ाते हैं।

वेल सखियों, हाल कैसा भी हो और गर्मी कैसी भी पड़ रही हो, लेकिन हमें अपना हाल बेहतर ही बनाए रखना है। जी हाँ, ठंडी और गर्मी का कॉम्बिनेशन भाई बहुत खतरनाक होता है, इससे बचकर रहें। एकदम से अगर आप एसी में रहते हैं तो बाहर गर्मी में ना जाएं, और जहाँ तक हो सके ना मौसम के अनुकूल ही अपना सब कुछ सेट करें। पानी बहुत पीना है यहाँ पर, और पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना है और चीनी। भाई अपनी डायबिटीज़ और बीपी को ज़रूर देख लीजिएगा। और कपड़ों की बात करें तो भाई सिंथेटिक कपड़े ना जानलेवा हैं, खुजली नहीं चाहिए तो सिंथेटिक कपड़ों को ना कहिए। साथ ही भाई पेड़ों की छाव बहुत अच्छी लगती है और ये यहाँ इस मौसम में आकर पता चलता है, तो बिल्कुल अपने आसपास पेड़ों की कदर कीजिए। अच्छा, बात सिर्फ हमारी तो नहीं है ना, बाहर देखा है आपने चिड़िया, बंदर, गाय और सब जानवर कितनी बुरी तरह से तड़प रहे हैं गर्मी के मारे। तो बिल्कुल अगर पास में कोई झाड़ी या पौधा है तो उसे ना पानी से ज़रूर तर करके रखिए ताकि वो भी बैठे, और इनके लिए पानी और दाना रखना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि दुनिया दिखावा है, दिखावे में ना उलझिए, पत्थर ही सही कुछ मील के पत्थर संभाल कर रखिए, गलतियां वो कीजिए जो सुधारी जा सकें, जिंदगी भर के मराल पाल कर ना बैठिए। तो सखियों इन्हीं के कुछ लाइनों के साथ दीजिए प्रीति को इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।

अभी हमारी महिला श्रोता सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंद गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नीता एडवर्ड तोरने की गाई चंद गजलें। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिट्टे न्यूज़। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a 4-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति. सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया. केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया. पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश. तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार. मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से. अब समाचार विस्तार से. भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई. एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है. उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की

0: सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं से ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र

0: सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे बस

0: कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विदुषी सविता देवी को। इनके साथ ही आप सुनेंगे विदुषी शोभा गुटू और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं विदुषी सविता देवी का राग नट भैरव में गायन।

पॉप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति में अभी आपने सुना विदुषी सविता देवी की गाई राग नट भैरव में ठुमरी। अब सुनते हैं इस कार्यक्रम में विदुषी शोभा कुटू का राग देश में ख्याल गायन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना विदुषी शोभा कुर्टू का राग देश में गायन। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं राग खमाश में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का ख्याल गायन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना विदुषी सविता देवी को, इनके साथ ही आपने सुना विदुषी शोभा गुरटू को, साथ ही उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का राग खमाज में ख्याल गायन। इसके साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अब समय हो चला है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था मुगल-ए-आज़म। शकील बदायनी की रचना को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे महबूब से। गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा है शकील बदायनी ने, संगीत से सवारा है नौशाद ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आपने सुना फिल्म अभिलाषा से। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा था आरटी वर्मन ने। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म 1942 आवर लव स्टोरी से। गीत को गाया है कुमार सानू ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत से सवारा है आरटी फरमन ने।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना 1942 आ लव स्टोरी से। गीत को गाया था कुमार सानू ने, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत बद्ध किया था आरटी फरमन ने। अब सुनते हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म में उदित नारायण साधना सरगम को, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत रचना जतिन ललित की।

चमत्कार फिल्में अभी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक को। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से संवारा था अनु मलिक ने। अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में कभी हाँ कभी ना फिल्म से गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

0: कुमार सानू, साधना सरगम की आवाज़ में अभी आपने सुना बरसात फिल्म का गीत। शब्द रचना समीर की थी, संगीत रचना नदीम शिवंट की। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है खामोशी द म्यूजिकल से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक हरिहरन की। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।
1: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना, हमारी जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

0: खामोशी द म्यूजिकल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता, उच्च रक्तचाप के कारण लक्षण और इससे बचाव विषय पर। वार्ताकार फिजिशियन डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल से अनिंद सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आप जुड़े हैं अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ और आज मैं आपका दोस्त अनिंद्र सिंह फिर से एक नए विषय को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, हम सब स्वस्थ दिखना चाहते हैं लेकिन हमारे स्वस्थ होने में और स्वस्थ दिखने में बहुत अंतर सा नजर आने लगा है। कब कौन किस बीमारी से पीड़ित हो जाता है हमें शायद पता नहीं लगता। तमाम ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियां आजकल आ गई हैं जिनसे हम में से हर दूसरा तीसरा व्यक्ति दो चार है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, बीपी की बीमारी भी ऐसी ही बीमारी है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद। नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। सीधा हम बीपी पे ही आते हैं। लाइफस्टाइल बीमारी बोला जाता है
2: जी,
1: पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। एक सामान्य आदमी अगर ये समझना चाहे कि उसका सामान्य जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए तो वो क्या समझे, क्योंकि रेंजेस जो है आजकल बहुत वेरी हो रही
2: हैं। नॉर्मल सामान्यतः जो हम बोलते हैं, एक ऊपर वाला बीपी जिसको सिस्टोलिक बीपी बोला जाता है
1: जी,
2: और एक नीचे वाला बीपी जो आमतौर पर बोलते हैं कि नीचे वाला बीपी जो डायस्टोलिक बीपी होता है हमारा, तो उन बीपी को हमारा जो नॉर्मल रेंज है हमें 130 ऊपर का और नीचे का 80, इससे 130/80 mmHg से नीचे रखना है। जो नॉर्मल गाइडलाइंस अभी हमारी नई रिसेंट आई है अमेरिकन कार्डियोलॉजी की और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, उसके अनुसार तो बहुत इंटेंसिव कंट्रोल चाहिए होता है ब्लड प्रेशर का। उनके अनुसार 120/80 नॉर्मल है और 130/80 से अगर बीपी ज्यादा हो रहा है आपका तो मतलब आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है। जो यूरोपियन सोसाइटी है हमारी वो थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर देती हैं।
1: अच्छा।
2: उनके अनुसार हम कहते हैं कि 140/90 तक आप वॉच कर सकते हो, लाइफस्टाइल से आप कंट्रोल कर सकते हो, और अगर 140/90 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी जो है वो हो रही है, तो वहां आपको ध्यान रखना है और फिर पूरा प्रिकॉशन और दवाइयां शुरू करनी होती
1: है। ये तो नंबर की गेम हो गई
2: जी,
1: जहां हम देखते हैं कि इस रेंज में होना चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कहता है इस रेंज में होना चाहिए, लेकिन एक सामान्य तौर पर आदमी को कैसे वो जान पाए कि मान लो जैसे आपने कहा कि बीपी चेक कर लिया तो हमें कोई नंबर समझ में आते हैं कि 140 है, 190 है, 120 है, 70 है लोअर लिमिट में, लेकिन एक सामान्य आदमी सामान्य दिनचर्या में कैसे इन चीजों को जान पाएगा कि हमारा उसका ब्लड प्रेशर
2: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे लोगों में या बल्कि ज्यादातर लोगों में इसका कोई लक्षण नहीं होते हैं
1: जी
2: शुरुआत में, इसीलिए ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को हम एक साइलेंट किलर कहते हैं, एक साइलेंट।
1: मैं वही कह रहा था शुरुआत में ही, मैंने कहा इसको तमाम नामों से जाना जाता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं
2: जी, तो इसलिए इसमें शुरुआत में तो या काफी हद तक कोई लक्षण होते नहीं है, और जो लक्षण होते हैं शुरुआत में वो सिर दर्द है, चक्कर आना है, थोड़ी सी घबराहट होना है, कभी सांस फूल गई, कभी धड़कन बढ़ गई, तो इन चीजों को हम लोग या कभी इग्नोर कर देते हैं कि किसी वजह से वैसे ही हो गया होगा, तो वहां हमारी चीजें मिस

0: हो जाती हैं
1: जी।
0: कभी नाक से खून आ गया तो वहां फिर भी आदमी चेक कराता है कि हाँ हमें चेक करा लेना चाहिए। आइडियली हमें कम से कम 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार बीपी जरूर चेक कराना चाहिए। और अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन चल रहा है तो 3 से 6 महीने में एक बार फिर भी चेक कराना चाहिए। और अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको नियमित या आपके डॉक्टर के अनुसार जो सलाह दे रहे हैं वो उसके अनुसार आपको चेक कराते रहना चाहिए।
1: तो नियमित जांच जो है वो ज्यादा
0: वो जरूरी है।
1: आपने कहा कि जो है एक सामान्य तौर पे हाई बीपी, आपने कहा कि एक बीपी का जो उच्च रक्तचाप है उस हाई बीपी और जो एक आपका जो नॉर्मल जो सामान्य रक्तचाप होता है उसमें क्या अंतर होता है? माने हाई बीपी और जो सामान्य रक्तचाप है उसमें क्या होता क्या है, हाई बीपी में क्या होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
0: जो हमारा हार्ट है वो दिल जो धड़कता है, ब्लड प्रेशर क्या है हमारा, जो हमारा हार्ट धड़कन देता है, धड़कन की वजह से जो बाहरी जो पेरिफेरल हमारी धमनियां हैं आर्टरीज हैं उनमें जो प्रेशर आता है उसको हम रक्त का दबाव बोलते हैं। और जो रक्त का दबाव बढ़ने लगेगा और एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जहां पर हमें जो स्टडीज हैं कि इस लेवल के ऊपर हमारे शरीर के लिए वो खतरनाक है, ब्रेन के लिए खतरनाक है, आईज के लिए खतरनाक है, या हमारे हार्ट पे उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, किडनी पर आएंगे, तो उस लेवल को हमने वहां पर डिनोट किया कि ये अब हमें हाइपरटेंशन यहां से होना शुरू हो गया, ये हाइपरटेंशन एक लिमिट है हमारी कि यहां तक हमारे लिए ठीक है।
1: इतने दबाव से रक्त जो है हमारे शरीर में प्रवाहित हो सकता है, उससे अगर
0: ऊपर
1: जाता है सेफली,
0: उससे अगर ज्यादा जा रहा है
1: तो वो हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी।
0: बिल्कुल सही।
1: हर साल जो है दुनिया में लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है, तो इसके बारे में कुछ बताएं।
0: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है हमारे यहाँ मनाया जा रहा है 17 मई को हर साल 2005 से। अच्छा। ये WHO ने शुरू किया और इस साल हर साल जो है हमारे अलग अलग कंट्रीज की विभिन्न जो मेडिकल सोसाइटीज हैं वो इसमें अपना योगदान देती हैं। इसका शुरुआती उद्देश्य ही ये था कि हम जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस करें, जिन ब्लड प्रेशर जिन लोगों को नहीं पता चल पाता है, अर्ली डायग्नोसिस होगी तो हम उसको अर्ली ट्रीटमेंट कर पाएंगे और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको पहले से रोक पाएंगे और लोगों के जो कई बार इसके दुष्प्रभाव आ जाते हैं उनसे उनको होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसकी वजह से एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया 2005 से और अब एक एक कैंपेन बन गया है
1: जी।
0: तो कई बार इसमें थीम्स भी दी गई कि नो योर नंबर्स,
1: मेजर योर लिमिट जाने के,
0: मेजर योर बीपी एक्यूरेटली। तो अभी इसी तरह की एक थीम है कि नो योर नंबर्स, करेक्ट योर बीपी एंड प्रोटेक्ट योर हेल्थ। तो इस तरह से इनको जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को हम मनाते हैं इसको।
1: ठीक, आपने कहा कि साइलेंट किलर होता है ये, तो लोगों तक इसके प्रति जागरूकता हो पाए और जो किलर जैसी नौबत आती है इसका प्रभाव जो है लोगों को घातक, उसको कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जा सके
0: जी।
1: और शायद इसीलिए इसकी जरूरत
0: है। जरूरत है। और सबसे बड़ी परेशानी कि ब्लड प्रेशर एक समस्या है वो अलग चीज है, लेकिन ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस होना और उसको पुअर कंट्रोल, अंडर डायग्नोसिस के लोगों को पता ही नहीं है
1: जी,
0: और पुअर कंट्रोल, वो एक सबसे बड़ी समस्या है।
1: उसकी वजह से ज्यादा घातक,
0: उसकी वजह से ज्यादा घातक है। अगर हम जैसे भारत की ये बात करें जो एक WHO का डाटा है उसके अनुसार भारत में करीब हर 100 में से 30 से 35 लोगों को ही पता है कि बीपी है, हर 3 में से 1 को बीपी की शिकायत होती है। अगर हम ये मान लें कि 100 लोगों को ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन की शिकायत है तो उन 100 में से 30 या 35 को ही पता है कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है
1: जी।
0: और उसमें से भी केवल 25 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो दवाई लेते हैं, जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उसमें से भी केवल 10 या 15 लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हम टारगेट लेवल तक प्रॉपर कंट्रोल होता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है कि 100 में से 35 लोगों को पता है केवल ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसमें से 25 लोग केवल दवाई खा रहे हैं, और उसमें से भी केवल 10 से 15 लोगों का ब्लड प्रेशर टारगेट लेवल तक कंट्रोल है
1: जी, जी।
0: तो करीब करीब 85 लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। और इन लोगों के जब दुष्प्रभाव आते हैं तो वो कभी पैरालिसिस होता है, कभी स्ट्रोक होता है, कभी हार्ट अटैक की बीमारी होती है, किसी की किडनी खराब होती है।
1: तो समय रहते जागरूकता ही सबसे बड़ा
0: प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो कहते हैं नॉर्मली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: ठीक बात।
0: और इसकी वजह से अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 1 करोड़ डेथ हो जाती है हर साल
1: 1 करोड़
0: हर साल
1: जी।
0: अगर हम
1: आंकड़ा है
0: भारत की बात करें तो करीब 15 से 16 लाख लोग जो है हर साल ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से या इसके दुष्प्रभावों से उनकी मृत्यु हो जाती है।
1: आज के समय में देखें तो ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बड़ी कॉमन सी होती जा रही है, बहुत बढ़ रही है
0: जी।
1: तो कारण आपको क्या लगता है,
0: तनाव
1: या भागदौड़ भरी जीवन शैली हमारी या हमारा खान पान?
0: लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो अल्कोहल यूज, टोबैको, स्मोकिंग, एक ये खान पीन में पैकेट फूड्स जो पिज्जा बर्गर पैक्ड फूड्स आते हैं, इनकी वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को बढ़ा रही हैं।
1: आजकल की जिंदगी ही ऐसी हो गई है जहाँ पे जो है हर व्यक्ति किसी न किसी टेंशन से तो जूझ ही रहा है,
0: जी
1: तो वो स्ट्रेस और ये सब एक

0: सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हैं, लेकिन इनके बाद भी आपकी सेहत आपकी अपनी सेहत है, तो उसका ख्याल रखना वो आपकी अपनी
1: ये
0: जिम्मेदारी।
1: आपके हाथ में है,
0: जी
1: आपको अपनी जिंदगी कैसे चलानी है वो आपके हाथ में है। आपको अपने लिए समय निकालना है, आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा योगा करना है, स्ट्रेस को जितना दूर रख सकते हैं दूर रखें, स्लीप डेप्रिवेशन, आजकल स्लीप जो है नींद बहुत कम हो गई है, या रात की शिफ्ट होती है, लोग देर देर तक काम करते रहते हैं, वो
0: बहुत सारे
1: एक
0: कारण
1: होता
0: हैं, उन
1: है,
0: कारणों पे अगर जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो
1: बहुत लंबी
0: जाएगी।
1: कहानी है।
0: हाँ, लेकिन ज्यादातर हम जो सामान्य लोग हैं वो समझते हैं, हाई बीपी जिसको हो जाता है, सबसे पहले ये कहा जाता है कि नमक बंद करो भाई,
1: जी
0: ज्यादा नमक नहीं खाना है,
1: जी
0: जंक फूड नहीं खाना है,
1: जी
0: प्रोसेस्ड फूड की आपने बात की, तो इन सब चीजों का रक्तचाप पे प्रभाव क्या पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ता है। नमक है जो सैचुरेटेड फैट है, प्रोसेस्ड फूड जिसकी हम बात करते हैं, चिकनाई की जो बात करते हैं, इन सब से हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है, बढ़ता है।
0: जी
1: इनसे जो धमनियां हैं हमारी, धमनियों की जो वॉल है वो थिकनिंग होती रहती है, स्टिफ हो जाती हैं, उनसे भी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, हाइपरटेंशन की बीमारी डेवलप होती है। तो
0: जी
1: कहते हैं कि जंक फूड कम करें, नमक कम करें, चिकनाई कम करें, तो इससे हमारा काफी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है।
0: आज जीवन शैली की आपने बात की थी, आजकल की जीवन शैली भी ऐसी है जहां पर हमें घंटों बैठ के काम करना पड़ता है, शारीरिक जो एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं उन पे विराम लगा है,
1: जी
0: मोटापे की आपने बात की, तो ये जो कारण हैं ये कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे
1: देखिए,
0: हैं?
1: सबसे बड़ा जो आपने बताया, यही कारण कि आजकल जो है बच्चों में यंग एज में भी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही
0: जी
1: है।
0: जी
1: बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होने से ओबेसिटी होना, और पैकेट फूड या जंक फूड ज़्यादा खाना। तो कोशिश वही करनी है कि आप सुबह शाम आधा घंटे निकालें, कभी प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जिन चीज़ों में खाने से बचा जा सकता है खाने से बचें, नॉर्मल खाना, हाई फाइबर डाइट, सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो ज़्यादा लें, एल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इन सब चीज़ें बंद करें बिल्कुल। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट डेली एक्सरसाइज या वॉक करें
0: खास
1: तो।
0: तौर से जो युवा पीढ़ी है उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि
1: जी
0: जिन सब चीज़ों की, जिन सब बातों को आपने अभी जिक्र किया,
1: जी
0: वो सारी बातें उस वर्ग को रिलेट करती हैं
1: बिल्कुल
0: और उनको चेतने की आवश्यकता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और आने वाले समय में तो ये पीढ़ी ही ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि पहले वाली जो पीढ़ी थी वो तो फिर भी खेतों में काम करती थी,
0: जी
1: वो तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं से एक्सरसाइज हो ही जाती थी, खुले में सांस ले रहे थे वो। यहाँ वाली पीढ़ी जो आने वाला समय है वो और ज़्यादा खराब है।
0: ठीक बात। डॉक्टर साहब, क्या बीपी के कारणों में आनुवंशिक कारण भी होते
1: बिल्कुल
0: हैं?
1: बिल्कुल होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता पिता में किसी को भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा की शिकायत है,
0: जी
1: तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चों में उससे 2 गुना ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको हाइपरटेंशन की बीमारी या कभी उससे प्रभावित हो सकते हैं। किसी एक को भी है, अगर किसी दो को है, किसी तीन को है, तो ये 4 से 6 गुना तक भी हो सकती है
0: परिवार में अगर किसी की भी हिस्ट्री रही है तो आप जो है,
1: आपके
0: आपको संभलने की
1: आपको
0: जरूरत है,
1: बिल्कुल
0: आपको
1: आपको वो
0: मुस्तैद रहना है कि
1: प्रॉपर
0: भाई
1: चेकअप कराना है,
0: बिल्कुल आप
1: आपको
0: भी
1: हर
0: शिकार हो
1: छः
0: सकते
1: महीने
0: हैं।
1: से 1 साल में चेकअप कराते रहिए कि आपको भी कभी हो सकती है, तो
0: जी
1: उसके लिए
0: जी
1: आपको एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है।
0: प्रॉन हैं आप।
1: जी
0: किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो रही है या है तो उसके लक्षण क्या नजर आते हैं, कैसे समझे कोई व्यक्ति कि उसको हाई ब्लड प्रेशर
1: जैसे मैंने पहले बताया कि इसके लक्षण कुछ भी नहीं समझ में आते पहले शुरुआत में,
0: है?
1: या लक्षण होते भी हैं तो नींद में सिर भारी हो जाना, कभी धड़ सा होना, कभी
0: जैसे
1: घबराहट
0: आपने
1: सी
0: कहा था कि
1: होना,
0: आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो जो है कोई ऐसे लक्षण नजर नहीं आएंगे, सिर्फ
1: जी।
0: आपको ये ख्याल रखना है, जहन में रखना है कि हमारे
1: माता पिता में या
0: माता
1: किसी
0: पिता
1: को
0: में या किसी
1: है,
0: पीढ़ी में
1: परिवार में
0: रहे हैं
1: है
0: बीपी
1: जी,
0: की
1: तो
0: समस्या
1: हम
0: तो हम
1: टाइम टू
0: निश्चित।
1: टाइम अपना चेक कराते रहें
0: जी
1: उसका,
0: जी
1: और
0: जी
1: कभी आपको लगता है कि हमारी धड़कन बढ़ रही है या सांस फूल रही है, सिर दर्द हो रहा है, कभी भारीपन सा रहता है, तो उस टाइम पर ब्लड प्रेशर चेक करा लिया जाए बीच बीच में।
0: क्या ऐसे संकेत हैं जिनको नजरअंदाज न किया जाए?
1: सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, और घबराहट सी होना, कभी सीने में कभी भारीपन सा लग रहा है, चलने में सांस फूल जाती है लोगों की कभी,
0: जी
1: है ना, कभी नाक से खून आ गया, तो ये सारे लक्षण हैं जो शुरुआत में हम बता सकते हैं कि इसको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है।
0: ठीक बात। आपने कहा कि बीपी की जांच करते रहिए,
1: जी
0: घर में भी आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है एक मशीन रखते हैं
1: जी
0: और उससे बीपी चेक करते रहते हैं,
1: जी
0: तो वो कितना विश्वसनीय है?
1: नहीं, एक मेजरमेंट्स, रफ मेजरमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और करना चाहिए। एक घर में बीपी कई बार अलग होता है, कई बार आप डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो वो बीपी बढ़ जाता है
0: बढ़
1: वहाँ
0: जाता
1: पर,
0: है,
1: तो
0: वही
1: इसको हम व्हाइट कोट
0: इसीलिए
1: हाइपरटेंशन
0: मैंने ये
1: बोलते हैं,
0: चीज पूछी।
1: तो वो बढ़ जाता है।
0: है
1: इसमें बहुत ज़रूरी है, और इसमें मल्टीपल रीडिंग्स लेनी चाहिए।
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: लेकिन उसका बीपी नापने का तरीका ज़रूर सही होना चाहिए। बीपी नापने का तरीका है कि आपको जब भी बीपी चेक कर रहे हैं तो आधा घंटे पहले आप कोई स्ट्रेस ना हो, शांत बैठे हों, उससे पहले आपने आधा घंटे पहले के अंदर चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, एल्कोहल किसी का सेवन ना किया हो। दूसरी चीज़, इस पर चेयर पर बैठे हैं तो पीठ सपोर्टेड होनी चाहिए, पीठ जो
0: हाँ,
1: है बैक
0: बैक
1: लगी होनी
0: सपोर्ट
1: चाहिए,
0: वाला।
1: और फीट जो है आपके पैर ज़मीन पर होने चाहिए, तो रिलैक्स कंडीशन में बैठे हैं जहाँ पीठ आपकी चेयर के पीछे है और पैर जो है ज़मीन पर है।
0: ये
1: दूसरा
0: छोटी छोटी

0: बातें
1: छोटी
0: हैं,
1: छोटी बातें,
0: लेकिन
1: कफ लेवल जो है
0: हो
1: हमारा हाथ पर उसके हार्ट के लेवल पर होना चाहिए, ऐसा नहीं हम आगे झुक के बैठ गए या कहीं बैठ गए। तो उस टाइम पर जब हम लेते हैं तो वो लगभग लगभग एक्यूरेट बीपी आता है। उसमें हम मल्टीपल रीडिंग्स ले सकते हैं और दोनों हाथ में चेक करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक में ज्यादा आता है एक में कम आता है, नॉर्मल डिफरेंस एक सब में होता है, लेकिन कुछ केसेस में ज्यादा डिफरेंस होता है,
0: तो
1: दोनों में भी चेक करना चाहिए।
0: अगर किसी को हाई बीपी लंबे समय तक है
1: जी,
0: तो उसके शरीर पे उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं?
1: उसके दुष्प्रभाव जो है, आप सिर से लेकर पैर तक आप कुछ भी देख लीजिए, हर ऑर्गन्स पे उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। हमारे यहाँ 100 में से 57 लोग जो स्ट्रोक के होते हैं हाइपरटेंशन के, उसमें 57 लोगों में ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक का कारण ब्लड प्रेशर होता है, जो पैरालिसिस होती है जिनको। 24-25% जिनको हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है, उनको भी 24-25% में बीपी ही एक कारण होता है, हाई बीपी। किडनी खराब हो जाती है लोगों की, किडनी वाले पेशेंट भी करीब करीब 24% लोग हैं कि 100 लोगों को बीपी है तो 24 लोगों की किडनी पे असर आ जाता है, खराब हो जाती है। लॉन्ग टर्म बहुत लंबा बीपी चल रहा है और अनकंट्रोल्ड है तो ये किडनी खराब होने की संभावना 5-7 गुना तक बढ़ जाती है आपकी
0: जी।
1: आंखों पे असर आ जाता है, रोशनी खराब हो जाती है।
0: मैं उसी पे आ रहा था,
1: याददाश्त
0: पे
1: भी फर्क आता
0: है, बीपी से संबंध है?
1: बिल्कुल है, डायबिटीज अपने आप में एक हमारे लिए एक बड़ा खतरनाक बीमारी है।
0: जिसको होता है उसका सीधा असर उसकी आंखों पे
1: पड़ता है। तो डायबिटीज और साथ में अगर हाइपरटेंशन हो गया तो नीम और करेला एक साथ हो गए, दो चीजें एक साथ हो गई।
0: तो इस नीम और करेले की कड़वाहट को डॉक्टर साहब थोड़ा कम करते हैं और श्रोताओं को हम आपकी पसंद का एक गीत सुनवा देते
1: जी,
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कौन सा गीत आज हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगे?
1: जो आपके अच्छा लगे,
0: आपको अपनी पसंद का गीत सुनवाना है।
1: दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
0: क्या बात है, तो आपकी पसंद का ये गीत श्रोताओं को सुनवा देते हैं।

0: डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई कि लक्षण, कारण और उसके जो प्रभाव हैं उन पे हमने बातें की बहुत सारी। जीवन शैली हमारी इस तरह की है, तो इस जीवन शैली में क्या वो बदलाव छोटे छोटे जो हमारी इस उच्च रक्तचाप की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी हो सकते?
1: सारी चीज़ें घूम फिर के वही आती हैं। सबसे पहले तो अपनी डाइट पे ध्यान रखना है कि आपको जैसे है प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट फूड्स, जंक फूड्स, इनका कम से कम इस्तेमाल या ना हो तो ना ही करें। दूसरा, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो नमक हम 5 ग्राम से कम डेली खाएं, कोई सा भी नमक खाएं वो 5 ग्राम से डेली कम खाएं। एक्स्ट्रा अचार, पापड़, चटनी, सॉस, बेकरी फूड्स जिनमें नमक छुपा हुआ होता है,
0: आपको
1: इन्हें
0: जीभ पे
1: बताएं,
0: कंट्रोल करना
1: जीभ
0: है।
1: पे कंट्रोल करना है पहली चीज़, तो डाइट कंट्रोल।
0: ठीक।
1: दूसरा आता है ओबेसिटी, मोटापा आपको कंट्रोल करके रखना है, वो एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का और भी बीमारियों का, एक अपना बहुत बड़ा टॉपिक है ओबेसिटी। तीसरा है एक्सरसाइज, डेली हम कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन एरोबिक एक्सरसाइज, वॉक वगैरह।
0: जी।
1: चौथा एस, स्लीप, स्ट्रेस और स्मोकिंग, इनसे स्ट्रेस और स्मोकिंग से दूर रहना है,
0: और नींद
1: नींद
0: बेहतर
1: को
0: लेनी
1: बेहतर
0: है।
1: रखना है। तो एक निमोनिक मैंने बनाया डज, कि आपको क्या करना है,
0: ओह, वेरी गुड।
1: डाइट, ओबेसिटी, एक्सरसाइज
0: एंड
1: और
0: स्लीप।
1: ट्रिपल एस,
0: और
1: स्ट्रेस, स्मोकिंग और स्लीप, जैसे हमारे
0: हाँ
1: प्रधानमंत्री जी हर उसमें एक निमोनिक बनाते हैं,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: इसी तरह से हमने भी बनाया एक।
0: बहुत बढ़िया।
1: तो इसको फॉलो करेंगे तो लाइफ स्टाइल आपकी कंट्रोल में रहेगी और ब्लड प्रेशर भी आप जिस काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे।
0: ठीक बात। योग और प्राणायाम की बातें करते हैं ध्यान,
1: जी
0: प्रधानमंत्री जी भी हमारे जो
1: जी
0: है इस पर बहुत फोकस्ड हैं, और लोगों को अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
1: योग
0: भी बड़ी
1: दिवस है।
0: जल्दी हम मनाएंगे, तो योग और ध्यान की आप जो है इसमें किस तरह से भूमिका को
1: नहीं, बहुत
0: देखते
1: बड़ी
0: हैं?
1: भूमिका है और प्रधानमंत्री जी का ये काम बहुत ही सराहनीय है हेल्थ को लेके। अभी उन्होंने नमक कम करने की भी बात की थी,
0: जी,
1: तेल को लेके कम करने की, 10% तेल कम करने की बात की, मोटापे पे भी बात
0: वो
1: की।
0: सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं है,
1: वह
0: हमारी सेहत
1: स्वास्थ्य
0: का
1: से
0: भी
1: रिलेटेड
0: पहलू,
1: पहलू है, और
0: स्वास्थ्य से
1: स्वास्थ्य ठीक
0: रिलेटेड
1: होगा
0: जो
1: तो
0: है,
1: आर्थिक पहलू भी ठीक
0: बिल्कुल
1: होगा।
0: बिल्कुल ठीक
1: ठीक
0: बात।
1: है, फिर उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वो बात करते हैं कई बार उसकी,
0: तो तनाव
1: तो
0: प्रबंधन के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
1: तनाव प्रबंधन के लिए योगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। परिवार के साथ बैठना, अपने लिए समय निकालना, दोस्तों के साथ बैठना, थोड़ा हंसना कूलना, अपने नॉर्मल लाइफ से अलग बातें करना, जो फ्री में जो बचपन में आप करते हो,
0: जिससे
1: उस
0: आपका
1: तरह
0: माइंड जो है
1: के
0: वो इन
1: फ्रेश
0: सब
1: हो जाए,
0: स्ट्रेस
1: हल्का
0: से
1: हो,
0: दूर हो
1: दूर हो
0: सके,
1: जाए।
0: हल्का हो सके। ठीक
1: तो
0: बात। अब हम बात करेंगे, आपने बात कर ली युवा पीढ़ी की, आपने कहा कि बच्चों में भी आजकल बीपी हो रहा है, हम महिलाओं पे अब आते हैं कि महिलाओं में जो रक्तचाप को लेके हमें क्या खास प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत होती है?
1: ब्लड प्रेशर के लेके महिलाएं और एडल्ट्स में लगभग, आदमियों में लगभग लगभग सब सेम चीज़ें हैं। जो अनुपात हमारा महिलाओं में है वही अनुपात जेंट्स में है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसमें भी सेम चीज़ें ध्यान रखनी है। ये आपको लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना है और खाने पीने का ध्यान रखना है
0: महिलाओं
1: इसमें।
0: से हमारा तात्पर्य था कि जैसे गर्भावस्था है तो गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी
1: जी,
0: क्या?
1: गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में जो है ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है।
0: जी वही।
1: इसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो बच्चे का एबॉर्शन भी हो सकता है, कभी कभी माँ को दौरे भी आ जाते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं, और उसमें तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट टाइट कंट्रोल चाहिए होता है कि ये हमें इससे बढ़ने ही नहीं देना है,
0: वो स्थिति ज़्यादा
1: वो
0: चुनौतीपूर्ण
1: ज़्यादा
0: है
1: चुनौतीपूर्ण होती है।
0: बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों में भी जो है

0: रक्तचाप जो है उसकी
1: ये
0: शिकायतें
1: बहुत
0: होती
1: अच्छा
0: हैं।
1: सवाल है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे जो कहते हैं हमारे लिए 150 60 150 90 बीपी उम्र के हिसाब से ठीक चल रहा
0: ठीक
1: है,
0: चल रहा है, वो उसको नॉर्मल
1: लेकिन
0: मानते
1: ये
0: हैं।
1: नॉर्मल मानते हैं, लेकिन हमारे लिए टारगेट वही है, उनके लिए भी वही टारगेट है। एज का एक क्राइटेरिया नहीं है, उनके लिए भी हमारी लिमिट 130 80 ही है। एजिंग की वजह से मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत बीपी बढ़ता है, लेकिन उस ब्लड प्रेशर बढ़ने को हम एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस नहीं माननी चाहिए,
0: हम ये नहीं कह सकते कि ये अगर
1: एक
0: है तो
1: नॉर्मल एजिंग
0: हमारे,
1: प्रोसेस
0: हाँ
1: है
0: ये हमारे
1: ना।
0: उम्र बढ़ गई तो ये ठीक
1: इतना
0: है,
1: बढ़ गया
0: वो
1: तो
0: ठीक नहीं है।
1: ज़्यादा एल्डरली एज में 80 85 में जहाँ किसी को चक्कर आ रहे हैं या खड़े होने पर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है किसी में, वहाँ हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि 140 150 तक रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनके लिए भी लिमिट 130/80 की ही है।
0: ये जो कोई लोग बीपी की मान लो दवा उसको प्रेस्क्राइब की डॉक्टर साहब ने,
1: जी
0: तो दवाई हमें कुछ कुछ लोग देखा जाता है कि बीच में दवा बंद कर देते हैं, तो जो मिस्ड डोज हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं?
1: जी मिस डोज नहीं करनी चाहिए। मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि जब हमें लगता है, महसूस होता है कि तब हमने दवाई ले ली,
0: हाँ
1: जब हमें लगा कि आज दिक्कत हो रही है तो दवाई ले ली, वो गलत है। कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, नसों पे या धमनियों पे आपके प्रेशर बढ़ रहा है, वो सारी इलास्टिक है, धीरे धीरे फैलती जाती है फैलती जाती है, और एक लिमिट आती है कि वो जाके उनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, फट जाती है, या उसमें अंदर थिकनिंग हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मिस्ड डोज अगर आपकी है तो आप तुरंत दूसरी डोज लें, डबल डोज नहीं लेनी है,
0: हाँ,
1: जो मिस आपने
0: ये
1: डोज
0: चीज़
1: की
0: बड़ी
1: है।
0: इम्पोर्टेंट आपने
1: हाँ,
0: बताई
1: कि
0: कि
1: ऐसा ना
0: किसी
1: हो कि
0: ने अगर
1: आपने
0: मिस कर दी तो हम डबल खा लें,
1: दो खा
0: ऐसा
1: लें,
0: नहीं।
1: दो नहीं खानी है,
0: हाँ
1: आपको एक ही डोज खानी है और उसके बाद रेगुलर खानी है,
0: ठीक
1: और
0: बात।
1: रेगुलर आपको बीपी नियंत्रण में रखना है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीपी की दवा खाते हैं तो क्या बीपी पूरी तरह से ठीक हो सकता है या केवल
1: नहीं,
0: ये नियंत्रित ही किया जा सकता है?
1: ठीक नहीं हो सकता, काफ़ी हद तक आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल से। अगर आपकी लाइफ स्टाइल से वो नियंत्रण में है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हो सकता है कि ना पड़े। कुछ बीमारियों में जिनको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, कि उसकी वजह से हो गया, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से या डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो गया, वो कंट्रोल में हुई तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ सकता है,
0: जी
1: लेकिन वहाँ भी लाइफ स्टाइल अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो वहाँ आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल है बिना दवाइयों के, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर मेडिसिन लेनी ही लेनी है।
0: ठीक। कुछ लोग जो है घरेलू उपाय भी अपनाते हैं, कुछ आयुर्वेद का सहारा लेते हैं या वैकल्पिक जो चिकित्सा के संसाधन हैं उन पे जाते हैं, क्या
1: नहीं
0: वो भी सहायक होते हैं?
1: सर, आयुर्वेदिक और वैकल्पिक चिकित्सा हमारे, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भारत में शुरुआत ही आयुर्वेद से और इन चीज़ों से हुई थी,
0: जी
1: लेकिन अगर ये वाकई में किसी डॉक्टर से ले रहे हैं प्रॉपर दिखा के, तो वो कारगर है। कुछ लोग जो है बस किसी का विज्ञापन देखा कि ये दवाई ले लो, और किसी स्टोर में गए उससे ले ली दवाई, वो मैं कभी नहीं कहता कि इस तरह से लेनी चाहिए, वो हमेशा
0: जी
1: खतरनाक हो सकती है। वो आपको साथ में क्या बीमारी है, डायबिटीज़ तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो जो डॉक्टर देख के देगा, चाहे वो आयुर्वेद का हो चाहे किसी और पैथी का हो, वो एक सही दवाई देगा और नियंत्रित मात्रा में भी देगा।
0: ठीक। अच्छा, ये जो हाइपरटेंशन डे जैसे दिवस हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई बीपी की जो जागरूकता की स्थिति है, उसमें आप ऐसे अभियानों को, ऐसे जागरूकता के कार्यक्रमों को कितना कारगर पाते हैं?
1: बहुत महत्वपूर्ण है ये तो, क्योंकि इसी यही एक जरिया है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जो लोगों को अवेयर कर सकता है कि हाँ ब्लड प्रेशर की एक बीमारी होती है और इससे इतनी परेशानियां आगे जाके हो जाती हैं। अभी लोग ये समझते हैं कि जब बीमारी हो गई तब ब्लड प्रेशर है तब उसको इलाज करा ले, नहीं, ये तो हमें बहुत पहले से चेक करना है, बहुत पहले से उसको बीमारी में
0: आपके
1: उसके
0: शरीर में ब्लड तो
1: दुष्प्रभाव
0: हमेशा
1: होने
0: से बह
1: से
0: रहा है।
1: बह रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव होने तक इंतजार नहीं करना है, आपको पहले से चेक करना है और दुष्प्रभाव होने से रोकना है पहले। तो अब उनको अवेयर करने का एक ये बहुत बड़ा जरिया है कि हम बार बार इनको कैंपेन करते रहें और इस तरह के कार्यक्रम करते रहें।
0: कोई घर में बीपी पेशेंट है
1: जी
0: तो घर परिवार की और जो इर्द गिर्द का समाज है, सोसाइटी है, उसकी भूमिका को आप कैसे इंगित करें?
1: घर में अगर किसी को भी बीपी है तो लोगों को भी अपने आप में जागरूक होना चाहिए कि अगर घर में किसी को बीपी है तो वही फैमिली हिस्ट्री हो गई एक तरह से, तो आपको भी बीपी हो सकता है, तो आप अपने आप को ध्यान रखें। दूसरा, उनकी दिनचर्या में भी ध्यान रखें कि भाई इनको डाइट में हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, उनके साथ स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना है ना, तो एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। कभी बुजुर्ग हैं तो घर में हैं, शाम को घुमाने ले
0: उनको
1: गए,
0: समय पे दवा
1: दवा
0: देना,
1: देना है
0: उनके
1: शाम
0: थोड़ा
1: को,
0: सा जो
1: तो
0: एक्सरसाइज नहीं
1: टाइम
0: कर सकते उनको थोड़ा सपोर्ट देना
1: सपोर्ट
0: आप
1: देना
0: लेके जा
1: और
0: सकते
1: टाइम
0: हैं।
1: टू टाइम चेकअप करा देना।
0: ठीक बात। जो आपने बात कही चेकअप करा लेना, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको नियमित जांच
1: जांच
0: जो
1: भी
0: है
1: करानी है
0: वो करानी रहेगी। और कोई संदेश महत्वपूर्ण जो आप समझते हो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहें?
1: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि ब्लड

0: प्रेशर हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे वर्ल्ड में और हमारे देश में भी, बट इट इज प्रिवेंटेबल, इट इज डिटेक्टेबल एंड इट इज ट्रीटेबल। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं
1: ठीक बात।
0: और इससे होने वाले दुष्प्रभावों को रोक सकते हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो अपने खान पीन का, लाइफ स्टाइल का और जीवन शैली का जो आपके हाथ में है उनको हम करना चाहिए उनको।
1: ठीक, तो श्रोताओं आज की जो हमारी बातचीत थी ये बहुत

0: जो हमारी बातचीत थी ये बहुत स्पष्ट है, बताती है कि हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं बल्कि हम कहें कि जीवन शैली से जुड़ी एक गंभीर चुनौती ज़्यादा है। तो सही खान पान, नियमित व्यायाम और जो हमारा स्ट्रेस है उस पर कंट्रोल, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया नियमित जांच, वो अगर किया जाए तो हम इससे बच सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, नियमित जांच करवाइए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इसके प्रति आगाह करिए, सचेत करिए। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो आकर हमारे श्रोताओं से जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार,
1: जी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर भेंटवार्ता, उच्च रक्तचाप के कारण लक्षण और इसके बचाव विषय पर वार्ताकार फिजिशियन डॉक्टर हेमंत अग्रवाल से अनिल सिंह की बातचीत आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है, दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री एनएन दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहां पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूं ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो, तो वो सिचुएशन वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क बीएसएफ को दिया गया था। और बीएसएफ उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में बीएसएफ के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर के मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस, और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जैन के असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर के सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला यह संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े, और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में, और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब इतना बड़ा आतंकवादी और
1: इतना बड़ा
0: जी कि सब
1: कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है
0: जी,
1: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिसपे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला, बीएसएफ के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था।

संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई

0: और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को, एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
1: जी।
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जे एन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी,
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने एक जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
1: बिल्कुल
0: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा करना
0: है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था
1: बिल्कुल,
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलोअप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन
1: अच्छा।
0: किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई, अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे, हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले।

0: हमारे पर फायर करे,
1: या
0: हमारे
1: वो भागने की कोशिश कर रहे हैं।
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी
1: अच्छा
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
1: जी
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। और थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया, ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर शायद, सही जगह नहीं आए। और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था
1: अच्छा
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा
0: घुसता हुआ
1: है
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था
1: अच्छा
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो
0: तो
1: शायद
0: शायद
1: वो
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता,
1: ओके
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती
0: मार तो
1: बिल्कुल
0: हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती। और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक,
1: अच्छा
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ
1: ओके
0: निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की
0: पूरी
1: गई और
0: हिफाजत
1: अपने
0: की गई।
1: ऑपरेशन को भी
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों से,
1: अच्छा
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन
1: जी
0: छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहां ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर
1: जी
0: उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए,
1: जी
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी
1: जी
0: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है,
1: यानी
0: आंख
1: कि
0: में।
1: आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया
0: हाथ
1: आप
0: का,
1: उस वक्त,
0: सिर्फ हाथ का
1: सिर्फ
0: अंदाजा
1: हाथ
0: हुआ,
1: का
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता
1: जी
0: नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा।
1: जी
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल
1: पता
0: टेबल
1: लगा
0: के ऊपर ही ओटी में पता लगा।
1: जी
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी
0: और
1: सर,
0: चले।
1: हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन, तीनों नर्व उड़ गई।

0: अच्छा
1: और बोन्स पूरी शेटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था,
0: अच्छा
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी। तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे, क्योंकि
0: अच्छा
1: मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब 1 इंच साइज का स्टील का एक होता है
0: अच्छा
1: कमेंडेशन,
0: जी जी
1: मैं
0: जी
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा
0: जो
1: रखा
0: छाती पर
1: था।
0: लगता है।
1: जी, उस पर कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया
0: अच्छा
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी
1: है,
0: जी
1: उसमें
0: दिल
1: ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया।
0: ओ
1: तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहां क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी, उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा,
0: जी
1: पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत
0: अच्छा
1: एक्सरे हुआ, एक्सरे में वो गोली अंदर अटकी हुई।
0: ओ
1: तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था,
0: जी
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था, वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया,
0: जी
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई, कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है, जो उसका खराब ब्लड होता है बह के
0: जी
1: बाहर आता है।
0: जी
1: फिर मैंने कहा, ये तो मेरा पूरा, ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया।
0: जी आपने जैसे
1: और क्या,
0: बताया
1: उस
0: फायरिंग
1: कमरे
0: के
1: में
0: दौरान।
1: नहीं, तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल
0: और
1: सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी 7 गोलियां शरीर
1: बिल्कुल,
0: में।
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था,
0: जी
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए, तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक
0: अच्छा अच्छा
1: यूनिफॉर्म को जब धो रहा था, तो उसकी
0: जी
1: पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है, जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है, जिसको मैंने
0: जी
1: एक जीवन रक्षक के तौर पे
0: बिल्कुल
1: ड्राइंग रूम में लगा रखा
0: जिसने
1: है।
0: आपका दिल बचाया।
1: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, बस
0: बिल्कुल
1: सफिशियंट थी वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी
0: एग्जैक्टली
1: दिमाग में आया,
0: एग्जैक्टली
1: कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है, फिर वो
0: अच्छा
1: शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट
1: कि
0: हो जाता है और फिर
1: हाँ, कि मैं
0: होश
1: अगर कुछ दिन
0: चले
1: बाद
0: जाते हैं।
1: मैं नहीं रहा, तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना, कि
0: जी
1: मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने
0: आने
1: लगते हैं।
0: जी जी जी
1: बट मैं चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए,
0: जी
1: जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
0: नहीं हो पाई
1: एस्टैब्लिश नहीं
0: होगी
1: हो पाया, शिनाख्त
0: जाहिर है
1: बाद में हुई,
0: जी
1: और नीचे आए, पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल BSF मिले मुझसे,
0: जी
1: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन ICU, एंड फर्स्ट देवर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो,
0: जी
1: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन, दोनों एक साथ बोलना, मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा
0: जी
1: था।
0: जी
1: मैंने कहा, सर फॉर वॉट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री, एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री, होल नेशन, एंड BSF इज प्राउड ऑफ यू
0: क्या
1: एंड
0: बात कर रहे
1: BSF
0: हो।
1: टीम। तो वो ऐसा रहा ना, सारा दर्द काफूर हो
0: हाँ
1: गया।
0: खत्म हो गया
1: वो
0: सही कहा
1: नहीं
0: आपने।
1: लगा कि दर्द में तो हम थे,
0: जी
1: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी
0: बिल्कुल
1: पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला, तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट
0: सक्सेसफुल
1: होता है, अगर
0: बिल्कुल
1: आप फाइनल फतह कर लेते हैं,
0: जी जी
1: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी

0: हुए जो दर्द है ना, वो कहीं ना कहीं उसका पेन कम हो
1: कम हो जाता है। यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी, कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
0: ही वाज अ ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेस।
1: बिल्कुल,
0: ही वाज अ हॉट केक इन द वैली।
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो अपने नमूने पेश करता।
0: मोर देन 9 इयर्स वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस सारीमर किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001।
1: बिल्कुल,
0: पार्लियामेंट
1: अटैक
0: 13 दिसंबर 2001।
1: बिल्कुल,
0: तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था इम्तहा, बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवादी
0: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन ID एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतनी बड़े एम्बेसमेंट से बचाया जान पे खेल के। और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सब मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है।
0: मैं
1: क्योंकि ये
0: हूँ, क्योंकि BSF एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल,
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल,
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जिस... जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा।
1: बिल्कुल,
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है
1: जो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी,
0: मेरे
1: आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था मैं। चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल,
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: जाता, मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल,
0: गाजीबाग के माध में घुसना कोई सिंपल।
1: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं,
1: मिलता नहीं।
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स।
1: दुबे सर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बॉडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसीस कार्डर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट अगेन एंड अगेन, एंड इन दुबे सर को आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
1: जी,
0: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे, तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
1: अच्छा,
0: उनके बिल्ला नंबर 700 होता ना कि
1: जी, जी,
0: बच्चन, हाँ,
1: अच्छा, जी।
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी,
1: जी
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है।
1: रखी है वो आपकी यादगार।
0: काम में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको

0: बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: फिल्म
0: अनबिलीवेबल।
1: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की फिल्म के अंदर। देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक
0: बिल्कुल
1: कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूवरशिप के लिए बनती
0: बिल्कुल
1: है।
0: सर। एक चीज लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
1: होते हैं।
0: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता,
1: वहां
0: जान
1: खुद
0: जाएगी या जान ली जाएगी,
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का
0: या
1: खतरा
0: मरने
1: होता
0: का,
1: है, तीसरा कुछ नहीं होता।
0: तीसरा कुछ नहीं, या
1: मतलब
0: तो
1: दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप शहीद
0: जान
1: हो
0: से
1: जाते
0: जाते हैं,
1: हैं,
0: शहीद
1: बस
0: होते
1: दो ही
0: हैं
1: कैटेगरी
0: बिल्कुल
1: होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं
0: जी
1: इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज की तारीख में आपके सामने मैं
0: बिल्कुल,
1: एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं।
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ
1: और
0: सर
1: ऐसा सो
0: जी।
1: नाइस, सो नाइस।
0: सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं सर, ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
0: जी
1: क्योंकि आप पीसीएम से हैं,
0: जी
1: 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफी ज्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं। यू
0: बिल्कुल।
1: प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं, जय हिंद सर, आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बीके दत्त है,
0: जी
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूं कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।
0: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है।
2: देश मेरे, मेरी शान है तू।
0: और यहां पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया है, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा, मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए BSF में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है,
0: जी
1: होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये
0: क्या बात,
1: उस फील्ड सिचुएशन का गाना है जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य जी
1: चिट्ठी के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: तो बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सके।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस का हम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई, जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: दे दीजिए।
0: अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का

0: बचा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
1: दादाजी।
0: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद जब इंडियन नेशनल आर्मी
1: जी
0: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
1: जी,
0: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
1: जी।
0: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
1: जनसेवा।
0: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
1: चारपाई
0: पर बैठ के सुनाते
1: अच्छा।
0: थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
1: जी,
0: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
1: जी,
0: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रहकर नहीं, कर सकते,
1: नहीं
0: थे,
1: कर सकते थे।
0: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल, तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरह से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है वो, उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
1: जी।
0: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
1: ठीक है,
0: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल, इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए और रिटन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
1: बिल्कुल,
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
1: बिल्कुल,
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है
1: जी। सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
1: जी।
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
1: जी
0: सरकारी,
1: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा
0: ये 9 वर्ष NIA में,
1: अच्छा,
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा,
0: मेरे दिल से लगा हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा,
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता
1: जी। सर, आगे बढ़ूंगा

0: और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, एफएम रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से ग्रीश आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
1: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
0: अच्छा,
1: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए। बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
0: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
1: ये सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है।
0: जी
1: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी।
0: जी
1: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
0: बिल्कुल।
1: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साये में फिल्म रिलीज हुई थी।
0: ओके
1: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है।
0: जी
1: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में,
0: जी जी जी
1: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
0: जी
1: स्ट्रीम।
0: सर, एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में
1: बिल्कुल
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: लिखना
1: लिखना
0: चाहते हैं। यश
1: चाहेंगे।
0: शिंदे हैं ये। डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल जालिमों का काल हैं। आप नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
1: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती हैं,
0: बिल्कुल
1: देश प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
0: और सर, यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे। हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है, तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहां पे भी आप जरूर अपने
1: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियो पोलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं। तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के पांच देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम

0: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्ति परक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम में युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में संवाद और संवेदनाएं विषय पर होगी चर्चा, साथ ही आप सुनेंगे सबा रानी से काव्य पाठ। हेल्थ प्लस में जानिएगा हाइपोनेट्रेमिया के बारे में। शाम 6:00 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीलोक का। आज के कार्यक्रम में कचरे से कंचन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस विषयों पर होगी चर्चा, साथ ही सुनिएगा डॉक्टर मनीष चेटली से बिरजेंद्र नारायण की बातचीत, विषय रहेगा बकरी पालन, गरीब किसान का सहारा। कार्यक्रम मजदूर मंडल में चर्चा सुनिएगा, विषय रहेगा कर्म ही जीवन है, साथ ही देश दुनिया, घरेलू नुस्खे और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। समय रहेगा 6:30। 7:10 पर डॉक्टर अनुपम सारस्वत हमें बताएंगे कि मानवीय जीवन में माधुर्य का आधार स्वस्थ संवाद क्यों है, और कार्यक्रम विविधा। का समय रहेगा देशभक्ति पर कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। रात्रि 8:00 एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत, और 8:30 का समय होगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में पंडित राम कृष्ण से सुनेंगे क्लैरिनेट वादन और पंडित कार्तिक कुमार से सितार वादन। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास। कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन। गायक कलाकार आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति से सुनिएगा श्री राम चरित मानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनेंगे डॉक्टर ब्रिजभूषण सिंह से वार्ता, विषय रहेगा पशुओं में अफरा रोग कारण और निवारण। सुबह 7:10 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जल चिकित्सा विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगे डॉक्टर यादराम शर्मा। ₹9:45 पर सुनिएगा मिथिलेश से लोक संगीत, और 10:30 पर एल के पंडित से ख्याल गायन कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में।

मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10। आइए आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का और सुनते हैं पहला भक्ति गीत।

ये भक्ति गीत हमने लिया था फिल्म संत ज्ञानेश्वर से, जिसे लिखा था धर्मेश तिवारी ने, संगीत दिया था नंदू होन अपने और आवाज थी अनुराधा पौडवाल की। अगली प्रस्तुति फिल्म लोफर से है, जिसके रचनाकार आनंद बख्शी हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और आवाज दी है महेंद्र कपूर ने।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं।

ये भक्ति गीत हमने लिया था फिल्म नीलकमल से। इसको शुरू से सजाया था रवि ने, रचना साहिर की थी और आवाज थी आशा भोसले की। आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या। अगला भक्ति गीत फिल्म जोधा अकबर से है, जिसे लिपिबद्ध किया है जावेद अख्तर ने।

अभी आपने सुना भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मेरे अंदर 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 और 20 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके मन पसंद कार्यक्रम युववाणी में और साथ है आपकी रेडियो दो स्वस्ति जैन। दोस्तों, क्या आपने भी ये सुना है कि जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाइयाँ होती हैं? हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, पर हाँ ये बात ठीक है कि अगर कहीं नाराजगी दिखाने तक की जगह ना हो तो शायद वहाँ प्रेम नहीं है। अगर हम किसी से खुलकर अपने मन की बात भी नहीं कह सकते तो फिर उससे कैसा रिश्ता? संवाद के जरिए ही तो हम अपनी संवेदनाएं साझा कर सकते हैं और यही तो रिश्तों का आधार है। इमोशंस होना, उनको एक्सप्रेस करने की, कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी ही तो हमें इंसान बनाती है। पर आजकल हम संवाद तो करते हैं पर संवेदनाएं साझा नहीं करते। आज के आधुनिक दौर में सोशल मीडिया पर हमारे हजारों दोस्त हैं, पर क्या असल जीवन में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप अपनी परेशानी बांट सको, या सच में जब खुश हो तब उसको बता सको कि मैं आज बहुत खुश हूँ, जिसके सामने आप वल्नरेबल हो सको? आपको पता है, मनोवैज्ञानिक एक थ्योरी है, एक औसत इंसान अपने जीवन में 100 लोगों को जानता है, यू नो हाय हेलो टाइप्स। उनमें से कुछ 50 घर बुलाने लायक होते हैं और उनमें से सिर्फ 5 लोग हमारी पूरी दुनिया होते हैं। और अब आप सोचिए आपके वो 5 लोग कौन हैं, और उसके बाद ये सवाल कीजिए खुद से कि क्या मैं इनसे अपनी संवेदनाएं साझा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर हाँ तो फिर तो यही वो आपके 5 लोग हैं, पर अगर नहीं तो इधर ये लोग आपके वो 5 लोग नहीं हैं, और या फिर आप खुद अपने और उनके बीच आ रहे हैं। उनसे बात ना करके तो हम ये चैलेंज देते हैं आपको कि आप उन 5 लोगों से संवेदनशील संवाद करें। विश्वास मानिए, बस पहल करने की जरूरत है। बांटने के लिए उनके पास भी बहुत कुछ होगा, तो वो पहल आप करिए। चलिए इसी बात से जुड़ी एक कविता भी आपसे साझा करती हूँ, जिसे लिखा है भूमिका जैन भूमि ने। बातें रिश्तों की सांसें हैं, सांसों को मत मंद करो, कितनी भी अनबन हो जाए बातचीत मत बंद करो। अब भी जिसमें जान बची है उसी अधूरी ख्वाहिश को, अनबन झगड़े दिखलाते हैं बची हुई गुंजाइश को। वो भी प्रयत्न करे थोड़े से, तुम भी कोशिश चंद करो, कितनी भी अनबन हो जाए बातचीत मत बंद करो। एक कलाई में दो कंगन होंगे तो चटकेंगे ही, इसी तरह घर में दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे ही। प्रकृति के विपरीत न जाओ, साथ रहो आनंद करो, कितनी भी अनबन हो जाए बातचीत मत बंद करो। कभी कभी एक मौन अवस्था बहुत जरूरी होती है, पर ये ज्यादा हो जाए तो पैदा दूरी होती है। चुप्पी और मौन दोनों में अंतर है मत मंद करो, कितनी भी अनबन हो जाए बातचीत मत बंद करो। और आखिरी अंतरा, मन में जो है कहने से यदि घाव संभावित होते हैं तो चुप्पी से मरहम पट्टी के पथ बाधित होते हैं। बातचीत से उन घावों पर रफू करो, पैबंद करो, कितनी भी अनबन हो जाए बातचीत मत बंद करो। आई होप अब तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्यारी सी कविता के बाद सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, पर उससे पहले आज का सवाल, 21 मई को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? चलिए एक हिंट भी दे देती हूँ, यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे कार्यक्रम के अंत में, तब तक आप सोचिए, पर अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से इस अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त स्वस्ति जैन। दोस्तों, दुनिया में कितने सारे लोग हैं ना, सब कितने अलग हैं, ये

वेरी सिमिलर। खैर सिमिलैरिटी तो एक फिलोसॉफिकल बात है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, पर डिफरेंसेस, मोर स्पेसिफिकली फिजिकल डिफरेंसेस, ये सब जीन्स डिसाइड करते हैं। एलील जेनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण शब्द है, यह किसी जीन के अलग-अलग रूपों को दर्शाता है। प्रत्येक जीव में गुणों का निर्धारण जीन द्वारा होता है और यही जीन विभिन्न रूपों में उपस्थित हो सकते हैं जिन्हें एलील कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में आंखों का रंग, बालों का प्रकार, ब्लड ग्रुप जैसे गुण एलील के कारण निर्धारित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से एक एक एलील प्राप्त करता है। यदि दोनों एलील समान हो तो उसे होमोजाइगोस कहते हैं, जबकि अलग अलग हो तो हेटरोजाइगोस कहा जाता है। एलील डोमिनेंट और रिसेसिव भी हो सकते हैं। डोमिनेंट एलील अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि रिसेसिव एलील का प्रभाव तभी दिखाई देता है जब दोनों एलील रिसेसिव हो। एलील की खोज का श्रेय वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल को जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि गुण पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष नियमों के अनुसार स्थानांतरित होते हैं। उनके सिद्धांतों ने आधुनिक जेनेटिक्स की नींव रखी। दोस्तों कितनी कॉम्प्लेक्स होती है ना ये ह्यूमन बॉडी, एवरीथिंग हैज टू गो राइट टू गेट थिंग्स गोइंग। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब पानी का ही देख लीजिए, वी ऑल नो कि वी शुड ड्रिंक वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड, पर ये भी अगर ज्यादा हो जाए तो समस्या हो जाती है। हाइपोनेट्रेमिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें शरीर में सोडियम का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। सोडियम शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज है जो नसों मांसपेशियों के सही कार्य तथा शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तब कोशिकाओं में सूजन आने लगती है जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हाइपोनेट्रेमिया के मुख्य कारण अत्यधिक पानी पीना, लगातार वॉमिटिंग और लूज मोशंस होना, किडनी या लिवर की बीमारी, हार्मोनल इम्बेलेंस तथा कुछ दवाइयों का अधिक सेवन करने से हो सकती है। गर्मियों में अत्यधिक पसीना आने के बाद केवल पानी पीना और नमक की कमी पूरी ना करना भी इसका एक कारण बन सकता है। इस बीमारी के लक्षण शुरुआत में सामान्य दिखाई देते हैं, जैसे सिर दर्द, कमजोरी, थकान, चक्कर आना और मतली, लेकिन यदि समय पर उपचार न मिले तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। रोगी को भ्रम, बेहोशी, दौरे पड़ना और यहाँ तक कि मृत्यु का खतरा भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए संतुलित आहार लेना, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना और डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयों का अत्यधिक उपयोग करना आवश्यक है। दोस्तों ये तो हुई शरीर की जरूरतें, पर इंसान की और भी जरूरतें हैं, मन की जरूरतें, जिसे पूरा करती है कला, संगीत, कविताएं। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारी सी कविता जिसे प्रस्तुत करेंगी सबा रानी। चलिए सुनते हैं।

हमारे देश हिंदुस्तान में आज भी कई इलाकों में बेटियों को दहेज के लिए तंग किया जाता है। तो उसके लिए देखिए इस बेटी ने क्या लिखा है कि अपनी बेटी दहेज की शिकार मत करना, अपनी बेटी दहेज की शिकार मत करना, किसी अमीर के बेटे से प्यार मत करना, किसी अमीर के बेटे से प्यार मत करना, और भरम गरीबी का रखना अगरचे है तुमको, भरम गरीबी का रखना अगरचे है तुमको, शादी करने में खर्च बेशुमार मत करना, शादी करने में खर्च बेशुमार मत करना। और आगे देखिए, बेरुखी का ये जमाना है संभल कर चलना, बेरुखी का ये जमाना है संभल कर चलना, किसी जरदार पे बेटी निसार मत करना, किसी जरदार पे बेटी निसार मत करना। दहेज मांगते हैं मतलब की बात करते हैं, दहेज मांगते हैं मतलब की बात करते हैं, और कुछ देने की कहकर उधार मत करना, और कुछ देने की कहकर उधार मत करना। और शरीफ मिलते हैं अक्सर गरीब खानों में, शरीफ मिलते हैं अक्सर गरीब खानों में, दरे अमीर के चक्कर हजार मत करना, दरे अमीर के चक्कर हजार मत करना। जला के बेटी तुम्हें चैन न मिल पाएगा, जला के बेटी तुम्हें चैन न मिल पाएगा, जिंदगी बेटी की अपनी ख्वार मत करना, जिंदगी बेटी की अपनी ख्वार मत करना, अपनी बेटी दहेज का शिकार मत करना, किसी अमीर के बेटे से प्यार मत करना। अब मैंने अपने वतन हिंदुस्तान, जो हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, उसके लिए क्या लिखा है सुनिएगा। कि ये वतन हमारा मस्कन है, ये वतन हमारा मस्कन है, ये वतन हमारा गुलशन है, ये वतन हमारा मस्कन है, ये वतन हमारा गुलशन है, ये वतन हमारा जीवन है, ये वतन हमारा आंगन है, और इस वतन पे जान लुटा देंगे, दुश्मन को सबक सिखा देंगे, ये वतन हमारा मस्कन है, ये वतन हमारा गुलशन है, ये वतन हमारा तन मन है, ये वतन हमारा मधुबन है, ये वतन हमारा तन मन है, ये वतन हमारा मधुबन है, ये वतन हमारी धड़कन है, ये वतन हमारी तड़पन है, और इस वतन पे जान लुटा देंगे, दुश्मन को सबक सिखा देंगे, ये वतन हमारा मस्कन है, ये वतन हमारा गुलशन है, और ये वतन हमारी है जन्नत, ये वतन हमारी है जन्नत, इस वतन से हमको है उल्फत, और नहीं चले किसी की भी ताकत, ये वतन है हम सब की दौलत, और इस वतन पे जान लुटा देंगे, दुश्मन को सबक सिखा देंगे, ये वतन हमारा मस्कन है, ये वतन हमारा गुलशन है। और कोई हमसे नजर मिलाए ना, कोई हमसे नजर मिलाए ना, चाहे रूस हो या फिर चाइना, कहीं नजर इसे लग जाए ना, गुलशन ये कभी मुरझाए ना, और इस वतन पे जान लुट

0: देंगे, दुश्मन को सबक सिखा देंगे। ये वतन हमारा मस्कन है, ये वतन हमारा गुलशन है, इस वतन पे जान लुटा देंगे, दुश्मन को सबक सिखा देंगे।
1: दोस्तों, कविता वो भी इतनी संवेदनशीलता से कही हुई हमें मजबूर कर देती है सोचने के लिए। बहुत खूब कहा सबा रानी ने। चलिए अब मन के पोषण के लिए जो दूसरी चीज थी उसका भी आनंद लेते हैं, संगीत। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। और इस गीत का आज के दिन से भी एक विशेष संबंध है, क्या ये तो जानेंगे गीत सुनने के बाद।

एक गरम चाय की प्याली मिल जाए तो मजा ही आ जाता है ना। चाय भी एक इमोशन है वैसे, और आज के दिन का इससे एक कनेक्शन भी है ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। तो दोस्तों आज की टिप ऑफ द डे भी बस यही है कि अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बैठकर चाय जरूर पिए, खूब गपशप करें, पर कोशिश कीजिए कि खाली पेट चाय ना पिए। सुबह सबसे पहले कुछ हेल्दी खाएं, क्योंकि अगर आप खाली पेट चाय पियेंगे तो शुगर स्पाइक के खतरे हो सकते हैं। तो पहले आप कुछ खाइए, बाकी शाम की चाय को आप बेफिक्र होके एंजॉय कर सकते हैं। और बस दोस्तों आज चाय दिवस से याद आया कि आज का सवाल भी कुछ इससे ही रिलेटेड था ना, कि आज कौन सा दिवस है। आज भारत में 21 मई है, भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। दोस्तों आतंकवाद को रोकने के विषय में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अलग होने की तो कई वजह है, पर क्या आप एक होने की एक वजह भी ढूंढ सकते हैं? हम पहले भी डिवाइड एंड रूल से हारे थे और हम आज भी डिवाइड एंड रूल से ही हार रहे हैं। तो इस पे अगर हम विचार करेंगे तो शायद हम आतंकवाद को रोक सकें और या फिर इस सोच से लड़ सकें। तो बस दोस्तों बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन मैं आपसे जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, मैं आपसे जाने से पहले एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जाना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इसका ओरिजिन क्या है, कि अगर हम अपने स्तर से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं कि जिससे जो ये देश में कई ऐसे मुद्दे हैं कि हम आतंकवाद या जो कई समस्याएं हैं, जो वक्त बदल रहा है, हम इतने एडवांस हो रहे हैं, एडुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे आज भी वही के वही हैं, ऐसा क्यों है? इन सवालों के जवाब आप सोचिए और कोशिश कीजिए इनके उत्तर पाने की और अपने स्तर से कुछ स्टेप्स लेने की। और बस दोस्तों बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे थे अपना मन पसंद कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त स्वस्ति जैन। फिर मिलेंगे।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

राम राम किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण लोक अपनी रेडियो साथी अनुराधा अग्रवाल के साथ। मैं अनुराधा अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम ग्रामीण लोक में। और साथियों, कैसे हैं आप सब? साथियों, एक बात तो है, जब पूरे दिन खेत में काम करके शाम को थकान मिटानी हो या चौपाल पर बैठकर अपनापन बांटना हो, तो भाई एक चीज जो हर घर को जोड़ती है और वह है चाय। साथियों, अब आप कहेंगे कि भाई आप पागल वागल हो गए हैं क्या जो इतनी गर्मी में चाय की बात कर रहे हैं। तो भाई जब थकान ज़्यादा हो या फिर चौपाल में बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करनी हो, तो भैया चाय की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और आपको पता है साथियों कि आज क्या है? भाई आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर हम केवल चाय की चुस्कियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि चाय से निकलने वाले कचरे के सही उपयोग की भी चर्चा करेंगे। तो भाई अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या है। तो हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कचरे से कंचन। साथियों, हम रोजाना चाय बनाते हैं और बची हुई चाय पत्ती को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन शायद कम ही लोग ये जानते हैं कि अगर हम इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को पौधों में डाल दें तो ये पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद बन सकती है। यानी एक छोटी सी आदत बदलकर हम कचरे को उपयोगी बना सकते हैं। वैसे भी साथियों, आजकल आप कहीं पे भी चले जाएं, चाहे गांव हो या शहर, भाई कचरे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। खेतों में पराली जलाई जाती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। इसी तरह से हम प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं। इसके अलावा घर से निकलने वाला फल सब्जियों का कचरा, खेत के फसल के अवशेष, गोबर, इनको बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, जिससे गंदगी का ढेर लग जाता है। ये न देखने में बुरा लगता है बल्कि कई तरह की बीमारियां भी फैलाता है। लेकिन साथियों, अगर हम इस कचरे का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भैया यही कचरा हमारी आय का साधन भी बन सकता है। जी हाँ साथियों, जहाँ लोग समस्या देखते हैं ना, समझदार लोग वही अवसर खोज लेते हैं। आज विज्ञान और नई तकनीकों ने यह साबित कर दिया है कि कचरा केवल गंदगी नहीं बल्कि एक संसाधन है। अब आप कहेंगे कैसे? तो भाई खेतों में जो हमारी पराली होती है उससे खाद और बिजली बन रही है, गोबर से बायोगैस तैयार हो रही है, और घरों के जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद बनाकर किसान अपनी मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो चीज पहले बोझ लगती थी, भैया आज वही कमाई का जरिया बन रही है। साथियों, गाँव में अक्सर लोग फसल कटने के बाद अपने जो फसल के अवशेष होते हैं उनको जला देते हैं। इससे क्या होता है कि हवा प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और साथ ही हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर इन्हीं अवशेषों का उपयोग जैविक खाद बनाने, पशुओं के चारे या बायोगैस के उत्पादन में किया जाए तो किसान भाई अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं और साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। इसी तरह से साथियों, हमारे घर में कई बार प्लास्टिक का कचरा निकलता है, उसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन यही प्लास्टिक से हम कई उपयोगी सामान भी बना सकते हैं। आप जानते हैं, आज कई स्वयं सहायता समूह और युवा मिलकर प्लास्टिक कचरे को अलग अलग इकट्ठा करके उससे उपयोगी सामान बना रहे हैं। कहीं पुराने टायरों से सजावटी गमले बन रहे हैं तो कहीं बेकार कपड़ों से थैले तैयार किए जा रहे हैं। ये केवल सफाई का काम नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। साथियों, वैसे भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह से छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही बड़े बदलाव लाते हैं। साथियों, आज आवश्यकता केवल सोच बदलने की है। जिस कचरे को हम बेकार समझते हैं, वही अगर हम उसका सही तरीके से उपयोग करें तो ये कंचन बन सकता है। तो आइए आज हम सभी मिलकर संकल्प लें कि कचरे को समस्या नहीं संसाधन समझेंगे, अपने गांव को स्वच्छ बनाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे और कचरे से कंचन बनाने की इस सोच को घर घर तक पहुंचाएंगे। तो आइए साथियों, अब समय है आपको गीत संगीत की दुनिया में ले जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहती हूँ। भैया आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी आगरा सुगम संगीत संध्या का आयोजन 24 मई दिन रविवार, समय 6:30, स्थान

सेंट जॉर्जेस कॉलेज प्रेक्षागृह माल रोड बालूगंज आगरा में कर रहा है। आप सबकी उपस्थिति सादा आमंत्रित है। कार्यक्रम में के प्रतिभागी कलाकार है शुभ्रा तलेगांवकर, श्री सुधीर नारायण, जनाब सलीम हसन चिश्ती कब्बाल एवं साथी हैं। तो भाई अब आप सुनते हैं गीत संगीत भूपेन्द्र सिंह लोधी के स्वर में।

0: साथियों, आज 21 मई है। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया भर में आतंकवाद एक गंभीर चुनौती है, जिसे हम सब मिलकर ही हरा पाएंगे। इस दिन का महत्व सिर्फ हमने जिनको खोया है उनके प्रति शोक मनाने का नहीं, बल्कि ये सभी देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने का भी है। तो आइए आज हम सब मिलकर शांति, सहनशीलता और सुरक्षित भविष्य के लिए काम करें। और इसी के साथ साथियों, अब समय है हमारी वार्ता का। वार्ता का विषय है बकरी पालन, गरीब किसान का सहारा। इस विषय पर बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीष शेट्टी के साथ विजय नारायण।
1: आज हम फरा स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में उपस्थित हैं और यहाँ हमने जानने का प्रयास किया कि बकरी के नस्ल सुधार के लिए और बकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं, किस प्रकार किसानों को जागरूक किया जा रहा है और किस प्रकार वो सुविधाएं किसानों तक पहुँचाई जा रही है। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमने संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार चेटली से बात की और बहुत सारे प्रश्न थे हमारे, उनका चेटली जी ने जवाब दिया बेहतर तरीके से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस संस्थान के विषय में बताएं कि ये संस्थान कब आरंभ हुआ और इसके क्या उद्देश्य रहे हैं।
2: हमारा ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। इसका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये 1976 में शुरू हुआ था, परंतु इस संस्थान को पूरा एक केंद्रीय संस्थान के रूप में पाया गया 1979 से। 12 जुलाई 1979 से हम लोग बकरी अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्यरत हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बकरी की कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करते हैं। ये हमारा संस्थान एशिया में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है कि जो कि कंप्लीटली बकरी के ऊपर हर तरफ से, हर स्तंभ के ऊपर कार्य कर रहा है। हमारे संस्थान के अंतर्गत हम लोग बकरी के आवास प्रबंधन पे, आहार प्रबंधन पे, उसके नस्ल सुधार पे, उसके स्वास्थ्य प्रबंधन पे, उसकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उस जैसे कृत्रिम गर्भाधान करना या IVF के द्वारा बच्चे पैदा करना, उसके बाद उनके जो पदार्थ निकलते हैं, बकरी के उत्पाद आते हैं, उनको कैसे मूल्य वृद्धि के पदार्थ बनाना, उनके विपणन के बारे में सभी से जो हमारी नई तकनीकें डेवलप करते हैं, उन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए हम लोग अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम के रास्ते से काम करते हैं।
1: जी, ऐसा कहा जाता है कि बकरी जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है, इसलिए जहां सूखा क्षेत्र हो, वर्षा कम होती हो, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था ना हो, चारागाह ना हो, वहां भी बकरी जी जाती है। और किसानों के लिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा संबल है उन किसानों के परिवारों के लिए। दूध हालांकि बहुत कम होता है उसका, लेकिन फिर भी दूध के लिए, मांस के लिए और उसके जो बच्चे होते हैं उनको आगे विपणन में शामिल करने के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है बकरी। तो आप क्या कहेंगे कि बकरी की जो उत्पादकता है या कहें कि बकरी की जो उपयोगिता है उसको बढ़ाना किस प्रकार संभव हो सकता है?
2: आपने बिल्कुल सही कहा जी, बकरी की बहुत उपयोगिता है। ये भारतवर्ष में लगभग 15 करोड़ बकरियां हैं और ये इसकी 43 नस्लें पाई जाती हैं और ये अलग अलग क्षेत्र में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह पे हम लोगों को बकरी मिलती है। चाहे आप गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे, आपको लगा हर क्षेत्र के अंदर, हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के लिए, चाहे वो ठंड पड़ रही हो, -45 डिग्री टेम्परेचर हो या +45 डिग्री टेम्परेचर हो, सभी जगह पर बकरी सर्वाइव करती है। और उसके वो इसीलिए इसको गरीब की गाय कहा जाता है। इसमें हम लोग इनको कहते हैं कि इसको बिना किसी इनपुट से लोग सिर्फ इसको चारा खिलाने के लिए चारागाह में लेके जाते हैं, घुमा के ले आते हैं और उसके बाद कुछ भी एडिशनल नहीं देते, उसके बावजूद भी ये किसानों को बहुत लाभ देता है। जो भारतवर्ष

0: उसमें लगभग 3,30,00,000 किसान जो बकरी पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनमें से लगभग 76% किसान वो हैं जो कि सीमांत किसान हैं, जिनके पास भूमिहीन किसान हैं और जो छोटे लेवल पे इस पे कार्य पे करते हैं। तो ये उन सभी किसानों के लिए ना सिर्फ उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उनको आजीविका का साधन भी देता है और उनके उनको परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है।
1: जी जी सर, जो इस क्षेत्र में जो बकरी पाले जाती हैं वो बकरियां बहुत अच्छी नस्ल की तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके नस्ल में सुधार के लिए और साथ ही साथ किसानों को अच्छी नस्ल की बकरियां उपलब्ध कराने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
0: हमारा संस्थान लगातार सब बकरी पालकों के लिए कार्य करता है, उसमें चाहे उनके लिए बकरी नस्ल सुधार के लिए है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो ब्रिज क्षेत्र है इसके अंतर्गत बर्बरी, जमुनापारी ये दो ब्रीड है मुख्यतः रूप से है, उसके अलावा अभी राजस्थान से सिरोही और दूसरी भी काफी सारे किसान लेके आ चुके हैं। तो हर ब्रीड की हर नस्ल की अपनी अपनी उपयोगिता है, उसी के हिसाब से किसान उसको रखता है। कुछ उसको मीट के लिए रखते हैं, भार बढ़ने के हिसाब से रखते हैं, कुछ उसको मिल्क के लिए रखते हैं। जैसे हमारे इस क्षेत्र के अंदर जमुनापारी ब्रीड है जो कि दूध के लिए अच्छी ब्रीड मानी जाती है। इसी तरह से अलवर रीजन से जब आते हैं तो वहां पे हमारे जखराना ब्रीड है जो कि दूध के लिए बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है। तो हम लोग इन सभी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान के मुख्यतः 3 ब्रीड पे अभी ज्यादातर काम रखी हुई है, जिसमें एक जमुनापारी है, एक जखराना है और तीसरी हमारे पास बर्बरी है। सभी हम लोगों ने एक सोजत ब्रीड को भी अपने संस्थान के अंदर में फार्म खोला है, उसके ऊपर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर इस हम लोग जैसे संस्थान लगभग पिछले 47 वर्षों से काम कर रहा है, तो हमने इस क्षेत्र के अंदर बकरी पालन के ऊपर काफी काम किया है और जो अच्छी नस्ल के चाहे बीजू बकरे हों चाहे बकरियां हों हमने यहाँ के किसानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि वो लोग अपनी नस्ल सुधार कर सकें। और इस क्षेत्र में मथुरा क्षेत्र में और आगरा के डिस्ट्रिक्ट में दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 22 गांव हम लोगों ने अंगीकृत भी किए हुए हैं, जहां पे हम लोग लगातार उनको हर संभव सहायता प्रदान करते हैं, उनको बीजू बकरे भी देते हैं, उनको उनके लिए फीड का भी राशन उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं और उनके हेल्थ कैंप लगाते हैं, उनको वैक्सीनेशन टीकाकरण के ऊपर काम करते हैं। तो और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई हुई है जिसके अंतर्गत उनको कैसे उनको विपणन करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो हमारा संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कर रहा है, साथ ही साथ जो नस्ल सुधार के लिए बीजू बकरे या दूसरी जिनकी आवश्यकता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। तीसरा जो बकरी के अन्य उत्पाद हैं उनके बारे में भी लगातार ट्रेनिंग भी देता है और उन उत्पादों को कंज्यूमर्स को भी उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारा संस्थान एक सिंगल रूफ के अंडर हर तरह के सैंपल को चेक करता है किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि आपका ब्लड टेस्ट होता है, चाहे उसका फीकल टेस्ट होना हो, चाहे उसकी स्किन स्क्रैपिंग हो, उस सारों को टेस्ट करके हम लोग सही बीमारी का निदान करने के बारे में किसानों को जानकारी देते हैं। तो आप किसान जो भी किसी भी तरह का कोई बीमारी को के बारे में जानकारी चाहता है उसका अपना सैंपल हमारे पास लेके आएगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। उसी तरह से आगे जैसे हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि कमर्शियल गोट फार्मिंग, जैसे कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पैदा करें, उसके ऊपर भी हम लोग किसानों की बहुत सहायता करते हैं। और हम लोग उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनको आहार कैसा दिया जाए, लो कॉस्ट फीड फार्मुलेशंस। तो हम लोग उनकी जो अपनी फीड के लिए जो जो उस जिस क्षेत्र में जो ट्री फॉर्डर अवेलेबल है या दूसरी चीजें कौन सा फीड अवेलेबल है उनको लेके हमारे पास आएगा, हम उसका एनालिसिस करके जो बेस्ट प्रोटीन और जो राशन फार्मुलेशन करके उसको हम देते हैं, वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इससे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार है कि किसानों की आय दुगनी हो, मैं कहता हूं कि जो आप वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करेंगे उनकी आय 4 गुना तक हो जाएगी।
1: जी जी जी जी जी हमारे यहाँ परंपरा रही है बकरी के प्रति बहुत लगाव भी रहा है किसानों में, गांधी जी स्वयं बकरी पालन करते थे, बकरी का दूध पीते थे। एक जो सामान्य भाव दिखाई पड़ता है कि गाय की तुलना में बकरी को थोड़ा कम महत्व दिया जाता है, किसान समझता है कि दूध अगर पीना है तो गाय का ही पिया जाए, बकरी को मांस के लिए या अन्य उपयोगों के लिए ज्यादा उसका महत्व समझा जाता था। लेकिन आप क्या कहेंगे अंत में इस वार्ता के कि किसान किस प्रकार जागरूक हो बकरी के प्रति, कि बकरी को अपना ऐसा साथी समझे कि जो बिना ज्यादा प्रयास के भी बकरी उसको बहुत कुछ लाभ दे सकती है, क्या कहेंगे किसानों से आप?
0: मैं किसानों को ये बताना चाहूंगा कि जो किसान सोचते हैं बकरी गरीब की गाय है, तो वो उससे बढ़कर हमें इसके तरफ सोचने की जरूरत है। ये गरीब की गाय नहीं, ये भविष्य का जानवर है और जो इसके दूध है

0: दूध की महत्ता वेदों पुराणों में भी लिखी गई है कि जो इसके दूध को ह्यूमन मिल्क जो मानते हैं कि मनुष्य के दूध के इक्विवेलेंट मानी जाती है, इसीलिए जो हमारे बच्चे होते हैं इन्फेंट्स को बकरी का दूध पिलाया जाता है। इसके जो गुण होते हैं जैसे प्रोटीन की परसेंटेज होती है वो सारी की सारी सिमिलर होती है जैसे कि ह्यूमन मिल्क होता है। साथ ही साथ उसके साथ जो बकरी के दूध के अंदर जो फैट का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है जो कि बहुत जल्दी हजम हो जाता है। और आपने इसके अंदर इतने तत्व होते हैं जिन और इसमें मिनरल जो हम लोग कहते हैं कि उसकी भी संख्या ज्यादा होती है ताकि हमारे जैसे आयरन है सेलेनियम है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, गाय के दूध से भी ज्यादा मात्रा होती है जो कि बच्चों के लिए उनके दिमाग बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा। कोरोना के पीरियड में बहुत बढ़ गई थी जब इसको कहा जाता था कि इसको इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है इसके साथ। और आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होगी कि कई बीमारियों में चाहे डेंगू में और उसमें भी इसके उपयोग के बारे में लोग बताते हैं।
1: साथियों अभी आप सुन रहे थे वार्ता बकरी पालन गरीब किसान का सहारा और इस विषय पे बात कर रहे थे डॉक्टर मनीष चेटली के साथ ब्रजेंद्र नारायण। आइए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा अंतराल, जाइएगा नहीं।
2: अरे राहुल ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों अब आपको ले चलते हैं आगरा मंडी की तरफ और जानते हैं कि आगरा मंडी में हमारी फसलों के भाव क्या हैं। अगर आगरा मंडी की बात करें तो मुख्य सब्जियों में टमाटर 20 रुपये प्रति किलो के भाव पर जबकि आलू 25 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। अनाज मंडी में गेहूं 2000 रुपये प्रति क्विंटल और धान 25 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर है। दालों की बात करें तो मसूर की दाल 130 रुपये प्रति किलो जबकि अरहर की दाल 140 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। वहीं तिलहन में तिल का भाव 22 रुपए प्रति क्विंटल पर है। साथियों ये भाव मौसम और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। इसी के साथ साथियों हम अपने नए खोज सेगमेंट में आज जानते हैं कि आज हम क्या आपके लिए नया लेकर आए हैं। तो आज हम आपको एक नई आधुनिक मशीन कृषि मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मशीन का नाम है LIDAR बेस्ड इंटेलिजेंट स्पेयर जिसे IIT कानपुर ने SIM दास ऑटोनोमी और AB एग्रीटेक के साथ मिलकर विकसित किया है। ये मशीन फसलों की देखभाल में सटीक स्प्रे और निगरानी को सक्षम बनाती है जिससे खेती में समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। अब इसी के साथ साथियों आपको ले चलते हैं आगरा मंडल की तरफ और जानते हैं कि आगरा मंडल में आज का मौसम कैसा है। तो आगरा में आज मौसम बेहद ही गर्म और शुष्क है, तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस पर है और साथ ही इसके साथ ही एक गंभीर हीट वेव रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है खासतौर से दोपहर के समय में। अगले कुछ दिनों तक तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है, लू चलने की पूरी संभावना है। तो कृपया साथियों दोपहर के समय बाहर जाने से बचें, खूब पानी पिए, अगर बाहर जाना ही पड़े तो साथ में गमछा टोपी लेके चलें, साथ में पानी की बोतल लेके चलें, अपने और बासी खाना ना खाएं, घर का ताजी खाना खाएं। साथियों स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजुबाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताएं साथियों, क्या क्या जतन कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? हमें पता है गर्मी के कारण त्राही त्राही मची हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों में छुपकर सूरज ने खूब अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके समझ लिए हैं और अब गर्मियों में हर दिन अपने रौद्र रूप से सबको बेहाल कर रहा है, सबको डरा रहा है। चलो कोई नहीं, हर किसी का समय आता है और इसीलिए बचाव करना ही बेहतर है। अब अगर हमें अपना नुकसान नहीं होने देना है तो हम प्रयास करेंगे। बिना प्रयास के तो आपको पता है कि कुछ नहीं मिलता। हमारे द्वारा किए गए कार्यों के जो परिणाम होते हैं वही ये निश्चित करते हैं कि हम जीवन को कहाँ तक ले जाएंगे, हम कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि कर्म ही जीवन है। श्री कृष्ण ने तो गीता में कर्म को ही पूजा कहा है। हमारे कर्म है ना साथियों, ये वो बीज हैं जिनसे हमें फल मिलेंगे, यानी हम जो बोएंगे वही काटेंगे। वो कहते हैं ना, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। ये सच है कि हमारा किया ही हमारे सामने आता है और वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। इसीलिए कर्म की निगरानी करना जरूरी है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर्म है या नहीं, अगर हर कोई अपने कर्मों पर नजर रखे तो ये दुनिया स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि किसी को कर्म की परवाह ही नहीं, बस जो चल रहा है करते जा रहे हैं। जबकि जीत उसी की होती है जो अपने विचारों को अपने वश में रखता है, अपनी भावनाओं पर राज करता है। लेकिन साथियों, ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए चाहिए समझ, और ये समझ हम अपने परिवार के लोगों को शुरू से देंगे तभी वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। हमने देखा है लोगों को, उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि किस कर्म को करने से क्या होगा। उनका घर में व्यवहार कुछ और होता है और दूसरों के सामने कुछ और, जैसे नज़र चुरा कर यहाँ वहाँ या पड़ोसी के दरवाजे के आगे कूड़ा फेंक देना। बहुत अच्छे से पता है थैली और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, फिर भी थैला घर से लेकर ना चलना, कहीं पर थूक देना, कहीं पर शौच करना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी कर देना, बहुत कुछ है साथियों। आप अपने मन में झांकिए तो आपको पता चलेगा आप कैसे हैं। सही कहूँ तो ये आप कैसे जानेंगे कौन सा कर्म सही है कौन सा नहीं? तो इसके लिए बहुत छोटा सा टेस्ट है कि आपको जो अपने लिए पसंद नहीं है वो व्यवहार, वो कर्म मत कीजिए। ऐसा करने से आप बेहतर से बेहतरीन बनते जाएंगे और आपको एक मानसिक शांति मिलेगी, हल्का फुल्का महसूस होगा। अगर हर कोई अपने कर्म करने में अपना 100% भागीदारी निभाएगा तो एक व्यक्ति का बोझ दूसरे व्यक्ति को नहीं उठाना पड़ेगा और सभी का जीवन खुशहाल होगा, जीवन में तरक्की होगी। और साथियों, अगर हम कार्यक्रम को पूरी रुचि के साथ प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपको सही जानकारी अगर हम नहीं देंगे तो आप हमें और हमारे कार्यक्रम को पसंद नहीं करेंगे। वैसे भी आपके साथ कोई कैसे दगा कर सकता है, बताओ, हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ही मेहनत करते हैं भाई। इतनी लू में भरी दोपहरी में निर्माण कार्य में जुटे रहते हैं। आप तो सच्चे कर्मवीर हैं जो जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, और सभी को खूब मेहनत करनी भी चाहिए। मेहनत की रोटी खाने से बहुत सुकून मिलता है। वैसे आप कहाँ हार मानते हैं भाई, आपसे तो हर कोई प्रेरणा लेता है।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का

0: माना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
1: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: कर्म ही जीवन विषय पर चर्चा के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और आपसे पूछते हैं प्रश्न। तो चलिए सोचिए और बताइए कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तब तक हम आपको देश दुनिया के अंतर्गत कुछ खबरें बता देते हैं। तो लीजिए, मिल गई आपको खुशखबरी। भाई, आपको तो पता ही है कि पेठा और दाल मोट के लिए आगरा दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत आगरा के पराठों को भी शामिल किया जाने वाला है। इसके लिए सरकार दुनिया भर के बाजार से पराठों को जोड़ेगी, तो आगरा के पराठों को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। आगरा को आर्थिक लाभ होगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र ने बताया कि योजना के तहत कारोबारियों को क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने, पैकेजिंग को बेहतर बनाने और ब्रांडिंग मजबूत करने के लिए सरकार 20 लाख रुपए तक की सहायता देगी। और तो और साथियों, इसके लिए कारोबारियों और वेंडर्स को अलग अलग विभागों के सहयोग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे दुनिया में मांग तेजी से बढ़ सकती है, तो है ना ही अपने शहर के लिए खुशी की बात। चलिए इसके बाद आपको ये भी बता दें कि कुछ ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी और कुछ आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी। इसीलिए यात्री ध्यान दें अपने टिकट कराने से पहले, और इसका समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह तक रहेगा। इससे आगरा होकर दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और मुंबई रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ तो साथियों, बहुत समय दे दिया हमने आपको सोचने के लिए। अब हम उत्तर पर से पर्दा उठाते हैं और आप अपने उत्तर से मिलान कर लीजिए, और जिनका उत्तर सही हो उसे हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी जानकारी यूं ही बढ़ाते रहिए और कार्यक्रम सुनते रहिए। तो उत्तर है कि आज चाय दिवस है। वैसे सच कहें तो आज आप कुछ कन्फ्यूज़ आ गए होंगे भाई, क्योंकि आज के दिन 2-3 दिवस मनाए जाते हैं। आज आतंकवाद विरोधी दिवस भी है, एक और दिवस भी है जिसके बारे में हम ज्ञान सागर में बताएंगे। वैसे सच बताएं तो शाम के समय ना चाय का ध्यान आ ही जाता है, भले गर्मी कितनी भी पड़े, पर हमारे देश के लोग भी बड़े हिम्मत वाले हैं भाई, वरना इतनी गर्मी में चाय। वैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही लगता है गर्मी को चाय काटती होगी। वैसे इस बारे में सबके अपने ही अनुभव हैं, पर 70-80 के दशक की फिल्में देखें या उस समय के परिवारों में भी चाय के दौर के साथ ही नए रिश्तों की शुरुआत होती थी। इस गीत में शायद नायिका यही सोच रही है।

साथियों, कार्यक्रम पूरा तभी होगा जब स्वास्थ्य की बात होगी, यानी सेहत टिप्स। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी ज्यादा होने के कारण बच्चों को स्कूल भी बंद हो चुके हैं, बच्चे घर पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर पर लापरवाही बरती जाए। ध्यान रहे कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना ही निकलें, और ख़ास तौर से बच्चों को तो शाम तक घर में ही रखें। घर का बना ताजी खाना खाएं, हर घंटे कुछ पेय पदार्थ या पानी पीते रहें, सूती कपड़े पहने, वो भी हल्के रंग के। घर से जब निकलें तो सिर ढककर और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनकर निकलें। शराब, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से नुकसान हो सकता है। श्रमिक साथियों, आप भरी दोपहर में थोड़ा सा सुस्ता लिया करें, भले ही शाम को देर तक काम करना पड़े।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आप जब अपने काम पर जाते हैं, वही काम जैसे और भी श्रमिक भाई बहुत दूर दूर तक जाते हैं और दूसरे भाइयों से मिलते भी हैं। कभी कभी जब आप उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो उनकी भाषा समझ ही नहीं आ पाती आपको। लेकिन कुछ समय साथ साथ काम करते करते और साथ रहते रहते आप उनकी भाषा समझने लग जाते हैं, उनके शब्दों को पहचानने लग जाते हैं, कार्य करने के तरीके भी जान लेते हैं, फिर सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। एक दूसरे से खुलकर बातें करने लग जाते हैं। साथियों, ऐसा ही दिवस आज है जिसे संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस कहा जाता है। अभी हमने बताया था ना कि हम आपको एक और दिवस के बारे में बताएंगे और वो यही दिवस है, ताकि आप श्रमिक भाई बहन ही नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति जब दूसरे देश जाए तो आपस में बात कर सके, क्योंकि जब बात कर पाएंगे तभी दोनों देश मिलकर कुछ विकास के बारे में सोचेंगे। दुनिया के अनेक देश आपस में मिलकर ऐसा ही करते हैं, ताकि एक दूसरे की विभिन्न कलाओं जैसे गायन, वादन, नृत्य कला, वास्तुकला, मूर्ति कला को जानने का मौका मिल सके। और इसके लिए विविधता दिवस आधिकारिक तौर पर संवाद और विकास के लिए पूरे विश्व में सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि अनेक समुदायों को एक दूसरे की संस्कृति की विविधता के मूल्यों को साथ रहकर सीखने में मदद मिल सके। इसके लिए 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को मनाने की घोषणा की और 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को विश्व दिवस घोषित किया और पहली बार आज ही के दिन 2003 में इसे पहली बार मनाया गया। साथियों, सभी देशों के लोग इसके अंतर्गत ये अधिकार पाते हैं कि दूसरे देश की संस्कृति को समझें, आपस में मिलें और एक दूसरे को जानें। साथियों, ये तो सदा से ही चला आ रहा है कि एक दूसरे को मिलकर हम बहुत कुछ सीखते हैं और इसका अधिकार देता है ये दिवस, ताकि दुनिया में शांति और प्रेम बढ़े और हम सभी कुछ आपस में बांट कर तोड़ने की नहीं, जोड़ने के बारे में सोचे। वैसे भी प्रेम जब गहरा हो जाता है तो हर स्थिति में इंसान एक दूसरे के साथ रहना चाहता है और साथ रहना अच्छा भी लगता है।

अभी हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को ही आइए अब सुनते हैं दिल्ली से समाचार।

0: और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5

0: 9 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुआन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्यसमूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG, with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and steps are being taken to ensure availability across all petroleum.

जिंदा रखने में बातों की अहम भूमिका होती है। जब बातें मर जाती हैं तो रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे उसी ऑक्सीजन की जो हर रिश्ते को जिंदा रखती है, यानी स्वस्थ संवाद। मानवीय संबंध जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इन संबंधों में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बनाए रखने के लिए स्वस्थ संवाद आधारशिला का काम करते हैं। जिस प्रकार पौधों को जीवित रखने के लिए पानी और धूप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रिश्तों को जीवित रखने के लिए खुले, ईमानदार और आदरपूर्ण संवाद की आवश्यकता होती है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। तो कहना चाहूंगी, बोलो क्योंकि मौन मरण है और बोलना ही जीवन है। मौन तोड़ता सारे रिश्ते, शब्दों की हुंकार है रिश्ते। गरजो बरसो पर कुछ बोलो, जीवन का श्रृंगार है रिश्ते। यदि चाहते चहके रिश्ते, शब्दों की हुंकार लगाओ। देखो इनको मरने मत दो, शब्दों का मरहम अपनाओ। स्वस्थ संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि भावनाओं के साथ अपनी बात कहना और सामने वाले की बात को उसी संवेदनशीलता के साथ सुनना है। इसमें सच्चाई, पारदर्शिता और दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान शामिल है। आज हम 5G की दुनिया में जी रहे हैं। मैसेज एक सेकंड में पहुंचता है, पर मन की बात पहुंचते पहुंचते सालों लग जाते हैं। संचार क्रांति के इस युग में हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड भी हैं और सबसे ज्यादा अकेले भी। हमारे बीच आ चुकी है डिजिटल दीवार। एक सर्वे कहता है कि एक औसत भारतीय दिन में 4 घंटे फोन पर बिताता है, पर आमने सामने बात सिर्फ 12 मिनट होती है। 4 लोग एक कमरे में बैठकर भी डिजिटल दुनिया में जी रहे होते हैं। आज के दौर में मानवीय संबंधों का मर्म पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और साथ ही कहीं ज्यादा संकट में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 में अकेलेपन को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ घोषित किया। भारत के शहरी मध्यम वर्ग के बीच इमोशनल आइसोलेशन तेजी से बढ़ रहा है। जब इंसान इतना अकेला हो जाए तो रिश्तों का मर्म ही उसकी आखिरी दवा बचता है। हम 24 घंटे जुड़े हैं पर अवेलेबल नहीं है। सीन हो जाता है, फील नहीं होता। लोग एक दूसरे के जीवन को देखते हैं, जीते नहीं। परिणाम स्वरूप रिश्ते लाइक, शेयर, फॉरवर्ड मैसेजेस तक सिमट गए हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर आज का नारा बन चुका है। ये सब जरूरी है, पर जब स्वभाव की प्रधानता ज्यादा हो जाए तो रिश्तों का आधार खत्म हो जाता है। लोग रिश्तों को फास्ट फैशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। नया आया, पहना, बोरिंग लगा, फेंक दिया। पहले लोग रिश्तों में टिकते थे क्योंकि उनके लिए परिवार, समाज, देश अधिक महत्वपूर्ण था। आज सिर्फ खुद को खुश रखना ही मुख्य वजह बची है, पर खुशी तो आती जाती है। रिश्ते एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें याद दिलाती है कि हम उपभोक्ता नहीं, इंसान हैं। रिश्ते हमें मृत्यु के बाद भी जीवित रखते हैं। रिश्ते हमें वो अर्थ देते हैं जो न करियर दे सकता है, न पैसा और न प्रसिद्धि। ये हमें वो गहरा सुख देते हैं जो सतही खुशी से बहुत अलग होता है। रिश्ते हमें वो अर्थ देते हैं जो न करियर दे सकता है, न पैसा और न प्रसिद्धि। ये हमें वो गहरा सुख देते हैं जो सतही खुशी से बहुत अलग होता है। और रिश्तों को टिकाने के लिए मजबूत एंकर का काम करते हैं संवाद। सॉरी कह दो, थैंक यू बोल दो, हाल पूछ लो, पास बैठ लो, इतने से ही घर बसते हैं, इतने से ही दिल हंसते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में जीते हुए हम संवाद शून्य होते जा रहे हैं। स्वस्थ संवाद के लिए अपनी भावनाओं को शालीनता से व्यक्त करना आवश्यक है। संवादहीनता या गलत संवाद रिश्तों में दरार पैदा करता है। खुलकर बात करने से शंकाएं और भ्रांतियां दूर होती हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, बात करना जिंदा होने की पहचान है। जो चुप है वो कहीं ना कहीं मर रहे हैं। रिश्तों में सांस भरते हैं लफ्ज ही, वरना रिश्ते भी बस लाश बन रहे हैं। संबंधों की मधुरता के लिए आवश्यक है कि संवाद में संवेदनशीलता और धैर्य अपनाया जाए। अनायास उत्पन्न होने वाली शंकाओं को संवाद के जरिए निष्क्रिय करना ही संबंधों को अंत काल तक निभाने का रहस्य है। किसी भी रिश्ते का आधार सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, आपसी सहयोग और विश्वास होता है। किसी एक की भी कमी से रिश्ते में दरार आकर भविष्य में रिश्ते समाप्त या विवशता से निभाए जाने की संभावना रहती है। मनुष्य की कई महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है दूसरों के साथ संबंध और जुड़ाव की आवश्यकता। लोगों के साथ हमारी सामान्य बातचीत और हमारे द्वारा बनाए गए संबंध आमतौर पर हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरणीय प्रभाव, संतुष्टि और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। शब्द वो शमशीर है दिल जो जीत लेते हैं, खामोशी वो जहर है जो रिश्ते पी लेते हैं। मानवीय संबंधों में माधुर्य का आधार संवाद होता है और इसी के अभाव में रिश्ते टूट

0: कूदते हैं। ईगो का जहर भी रिश्तों को तोड़ने का काम करता है। वो सॉरी पहले बोले मैं क्यों, भूल जाते हैं कि रिश्तों में झुकना हार नहीं रिश्ता बचाना है। सुना भी होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कहना चाहूंगी, वाणी के बल पर ही टूटे दिल जुड़ते हैं, वाणी के बल पर ही सूने घर बसते हैं। संवाद में सकारात्मकता और प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग बहुत आवश्यक है। किसी की बात काटना, उसका मजाक उड़ाना, ये संवाद नहीं, संवाद का कत्ल है। संवाद में कभी जजमेंटल न हो। तुम तो हमेशा ऐसा ही कहती हो, ये जजमेंट है। मुझे बुरा लगा जब तुमने ऐसा कहा, संवाद है। दूसरे को क्रिटिसाइज किए बिना अपनी बात रखना ही एक अच्छा संवाद है। गुस्से में बोला शब्द तीर है, खुशी में न बोला शब्द फूल है जो बिना खिले मुरझा जाता है। सही बात सही समय पर कहना बहुत आवश्यक है। जब परिवार रात के खाने के समय इकट्ठा हो, तब उस स्थान को नो फोन जोन बना दें। संवाद को महत्व दें। दिन में किसी एक अपने से हाथ पकड़कर पूछें, आज तुम कैसे हो। माफी और धन्यवाद, ये दो शब्द ब्रह्मास्त्र हैं। सॉरी कहने से आप छोटे नहीं होते, रिश्ता बड़ा हो जाता है। थैंक यू कहने से सामने वाले को लगता है वो जरूरी है। रिश्ते ऑटोमेटिक नहीं चलते, इन्हें रोज बातों का पेट्रोल चाहिए, वरना ये गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है। बशीर बद्र साहब कहते हैं, अदावतें तो बढ़ती हैं बस न बोलने से, मोहब्बतें तो पलती हैं दो मीठे बोल बोलने से। जहां संवाद जिंदा है, रिश्ता कभी नहीं मरता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, 90% तलाक, 80% दोस्ती टूटना और 70% पारिवारिक झगड़ों की एक ही वजह है गलतफहमी। और गलतफहमी की एक ही दवा है स्वस्थ संवाद। सुदामा कृष्ण बरसों नहीं मिले, मिलते ही दिल की बात कह दी, दोस्ती अमर हो गई। रिश्ते महंगे तोहफों से नहीं, संवाद से मजबूत होते हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद नहीं होता तो अर्जुन युद्ध ही नहीं लड़ता। पूरी गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। कृष्ण ने सुना, समझाया और डांटा भी, पर संवाद नहीं तोड़ा। नतीजा, अर्जुन का भ्रम टूटा और धर्म की जीत हुई। हमारे रिश्तों में भी छोटी छोटी गीता रोज होनी चाहिए। मन में कुछ है तो शांति व इज्जत से कह जरूर दो, क्योंकि बातों से बनती है हर बात, खामोशी से बढ़ते हैं घाव। मीठे बोल हैं संबंधों की जान, संवाद बिना रिश्ते हैं बेजान। तो ध्यान रखिए, गलतफहमी की उम्र तब तक होती है जब तक बात नहीं होती। बंद जुबा से कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता, रूठे मन से कोई रिश्ता खड़ा नहीं होता। रिश्तों को बड़ा और खड़ा रखता है स्वस्थ संवाद। शक्कर मीठी होती है, पर दो लोगों के बीच मिठास खोलते हैं शब्द, और शब्दों का सबसे सुंदर रूप है स्वस्थ संवाद। मानवीय संबंधों का सबसे गहरा मर्म केवल एक वाक्य में समा जाता है, दूसरों के भीतर खुद को देखना और खुद के भीतर दूसरों को जगह देना।
1: अभी आपने सुनी कार्यक्रम विभिन्न में वार्ता, विषय था मानवीय जीवन में माधुर्य का आधार स्वस्थ संवाद, और वार्ताकार थी डॉक्टर अनुपम सारस्वत। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। यह प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

0: जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है।
3: मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के हैं, भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
4: ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते 4 दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि हीटवेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकल लगवाए हैं।
1: हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरी क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थायी हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है।
0: प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8,000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृथुल कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव

0: अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:31 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं 1983

आजाद हिंद फौज जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नए जोश, नई दिशा और नए विश्वास के साथ खड़ा किया। 1940 का दशक जब भारत अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। परंतु कुछ क्रांतिकारी देशभक्तों का मानना था कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। उनकी सोच थी स्वतंत्रता कोई भीख नहीं बल्कि युद्ध से प्राप्त होने वाला अधिकार है, और यही सोच लेकर सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने का बीड़ा उठाया।

दोस्तों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जुनून भी था जो लाखों भारतीयों के दिलों में आग की तरह फैल गया। आजाद हिंद फौज की नींव सबसे पहले भारत के एक अन्य वीर सपूत कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में जापान के सहयोग से रखी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सिंगापुर में हजारों भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया, तब इन बंदियों में से ही आजाद हिंद फौज बनाई गई। लेकिन इसका असली पुनर्गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया, जब वो जर्मनी से जापान के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। भारत की एक अस्थायी सरकार और खुद इसके प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। ये सरकार भारत से बाहर लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए बनी पहली निर्वाचित सरकार थी, जिसे जर्मनी, जापान, इटली समेत कई देशों ने मान्यता दी। आजाद हिंद फौज की एक विशेष बात थी रानी झांसी रेजिमेंट। जी हां, ये महिलाओं की सैन्य टुकड़ी थी जिसकी कमान संभाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। यह पहली बार था जब महिलाओं ने सेना में हथियार उठाकर युद्धभूमि में उतरने का साहसिक निर्णय लिया।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी

दोस्तों, फौज में कुल तीन ब्रिगेड थी, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। इन ब्रिगेडों के सैनिक भारत की आजादी के लिए लड़ने को हर वक्त तैयार रहते। इस फौज के सैनिकों का प्रशिक्षण कठोर था, लेकिन उनके दिलों में भारत माता के लिए अटूट प्रेम था। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। नेताजी की अगुवाई में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर भाग मणिपुर और नागालैंड में घुसपैठ की। उन्होंने 1944 में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई ऐतिहासिक थी क्योंकि पहली बार विदेशी भूमि से कोई भारतीय सेना भारत की आजादी के लिए लड़ने आई थी। हालांकि ये लड़ाई हार में बदली, परंतु आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि अब भारतीय सैनिक भी उनके खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ और जापान ने आत्मसमर्पण किया और नेताजी के लापता होने की दुखद खबर आई। कई सैनिक बंदी बनाए गए। अंग्रेजों ने इन पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। दिल्ली के लाल किले में सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज जैसे तीन अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन पूरे भारत में इस फैसले के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। हिंदू, मुस्लिम, सिख एकजुट होकर आजाद हिंद फौज के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। इस एकता ने अंग्रेजों को डरा दिया। नेताजी अमर रहे, हम आजाद हिंद फौज के साथ हैं, ये नारे जन जन की जुबान पर चढ़ गए। यह आंदोलन इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को मुकदमा वापस लेना पड़ा। इसने यह साफ कर दिया कि भारत अब एकजुट हो चुका है और आजादी बहुत दूर नहीं। आजाद हिंद फौज भले ही सैन्य रूप से जीत ना सकी, लेकिन इसने भारतीय जनमानस, ब्रिटिश हुकूमत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर जो प्रभाव डाला वो अमूल्य था। नेताजी का सपना था पूर्ण स्वराज्य, और उनकी रणनीति ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारतीय अब किसी भी हद तक जा सकते हैं।

दोस्तों, आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन इसमें आजाद हिंद फौज के बलिदानों की तपिश भी शामिल थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके रणबांकुरों को हमें आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। आइए हम आजाद हिंद फौज के वीर सैनिकों को नमन करें और उनके बलिदान को कभी ना भूलें।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। एक 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत, जहां हम चुनते हैं एक ऐसा शब्द जो आपके दिल को छू जाए, आपके जहन में कुछ यादें ताजा कर दे और फिर उसी शब्द से जुड़ी एक फिल्मी धुन भी आपको सुनवाते हैं जो उस एहसास को और भी गहरा बना देती है। आज का हमारा शब्द है चूड़ी। आइए सुनते हैं चूड़ी पर ये प्यारा सा गीत।

बात कर रहे हैं चूड़ी की, वही चूड़ी जो कभी किसी दुल्हन की हथेली पर सजी होती है तो कभी किसी बिटिया की खनकती हंसी के साथ झनकती है। चूड़ी सिर्फ एक गहना नहीं, एक एहसास है। भारतीय संस्कृति में चूड़ियां सौंदर्य, स्नेह, सुहाग और स्त्रीत्व की निशानी है। क्या कभी आपने गौर किया है, जब कोई नवविवाहिता पहली बार ससुराल जाती है तो उसकी चूड़ियों की खनक पूरे घर को जीवंत बना देती है। चूड़ी का यह संगीत प्रेम और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में चूड़ियों का अपना महत्व है। पंजाब में कांच की चूड़ियां, राजस्थान में हाथी दांत की चूड़ियां, महाराष्ट्र में हरी चूड़ियां सौभाग्य की निशानी है, तो बंगाल में शंख पोला की चूड़ियां पवित्रता की। लेकिन चूड़ियों की खनक केवल शादी ब्याह तक सीमित नहीं है। कभी किसी बिछो की पीड़ा में ये खनक मौन हो जाती है। कितनी ही फिल्मों में चूड़ियों की चौचाहट ने प्रेम, विरह और बलिदान की कहानियां बयान की हैं। और इसी भाव के साथ आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा गीत जो चूड़ी शब्द को बहुत ही खूबसूरती से एक प्रेमिका की मासूम ख्वाहिश में ढाल देता है।

दोस्तों चूड़ी प्रेम का प्रतीक है, वो बंधन जिसमें सजन अपनी सखी को सजाता है, उसे अपनाता है। दोस्तों चूड़ी शब्द में वो मिठास है जो किसी पायल की झंकार में नहीं, किसी हार की चमक में नहीं। चूड़ी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हुए भी हर स्त्री के भावनात्मक संसार की सबसे आत्मीय चीज है। बचपन में हर लड़की ने मां की चूड़ियां पहनी होंगी चुपचाप, और फिर पकड़े जाने पर हंसते हंसते भागी भी होंगी, याद है आपको। और कितनी ही बार फिल्मों में चूड़ियों को लेकर रोमांटिक छेड़छाड़ भी होती रही है।

वैसे दोस्तों कभी कभी चूड़ी सिर्फ सौंदर्य नहीं, उत्सव का हिस्सा भी बन जाती है। लेकिन दोस्तों हर खाना खुशी की नहीं होती, कभी कभी जब हाथों से चूड़ियां टूटती हैं तो मन भी अक्सर टूट जाता है। लेकिन हम इस गीत में एक ऐसी प्रेमिका की बात कर रहे हैं जो चूड़ियों के माध्यम से अपने प्रेम का कितनी खूबसूरती से इजहार कर रही है।

तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक शब्द चूड़ी को लिया और उससे जुड़े इतने सारे रंग देखे, जीवन, प्रेम, उल्लास, विरह और रिश्तों की कहानी। यही तो खूबसूरती है हमारे शब्दों की और हमारी हिंदी फिल्मों की, जो हर भावना को सुरों में ढाल देती है। आपको आज का कार्यक्रम शब्द गीत कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द और उससे जुड़ी नई फिल्मी धुनों के साथ। तब तक के लिए खनकती रहे आपकी चूड़ियां, महकती रहें आपकी यादें। एक शब्द एक गीत, क्योंकि हर शब्द के पास होती है एक अपनी धुन।

अभी आपने सुना एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:30 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का और सुनते हैं ये मधुर गीत।

ये गीत हमने लिया था फिल्म गैंगस्टर से, जिसे लिखा था नीलेश मिश्रा ने, संगीत दिया था प्रीतम ने और आवाज थी अभिजीत की। अगली प्रस्तुति फिल्म हेट स्टोरी 2 से है, जिसके संगीतकार और रचनाकार अर्को हैं और आवाज दी है अरिजीत सिंह और समीरा कोपिकर ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत हमने फिल्म मर्डर 2 से लिया है, जिसके संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना। गीत सैयद कादरी का है और आवाज है हर्षित की।

अभी आपने सुना कार्यक्रम चित्रपट संगीत मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू

0: का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

0: मंत्रालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हुजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket,

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीराजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासरा मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों

0: की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासिर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निज़ाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। LPG की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हज़ार टन LPG तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए LPG की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासरा मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज़्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफ़र किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रबते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अक्वामी जाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशबीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की

0: 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे, मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासिर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़िरात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तकम करने और लाखों की किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट, जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक़द होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक़द करने पर गौर खोज किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकतदारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के आवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरत हाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB George ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अलाक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्लह महाज़राई में आम शहरियों के तहफ़ के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा हरीश प्रवर्तन ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने, जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारें। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपने

0: जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजलजल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म लहर की सूरत हाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरत हाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से अख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि सब हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, साहिली कर्नाटक, कोंकण, गोवा और शिमाल मशरकी खत्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसी तर मशरकी बहरे अरब और मशरक वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग, इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इकतसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखा सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Countrywide. नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
3: हीट वेव जो हमारे समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज के टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
2: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?

0: जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था बांडा में ईस्ट प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया, कर्नाटक कोस्ट एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग वो जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का, अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
0: हीट वेव भी आजकल स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव पे चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग दे के उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
0: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम देखे लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है, उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
0: देश के बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये 3 राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा, धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: ठीक, हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे, दिल्ली में क्या है आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हेवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का

0: टेक्न टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: अर्बन हीट आइलैंड ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा की सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से। तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा, आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा। और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका एसी है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो आईएमडी की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है, तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का, इतना वो करना चाहिए जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है, या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो, उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली, दिल्ली का तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है बहुत सारे फैक्टर के कारण, काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसा कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का आईएमडी फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा जो कि

0: अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है। एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मानसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मानसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सेप्टेम्बर में मॉडरेट टू स्ट्रांग एलिनो होगा। ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है। तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को हम 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तक ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुट पार्क और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा, वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैल है उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सर अपडेट करते रहते हैं, हम जो जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज की विशेष प्रस्तुति परिचर्चा, जिसका विषय है परिवार का बदलता स्वरूप, चुनौतियां और हमारी जिम्मेदारी। और इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं डॉक्टर महिमा, शिव प्रसाद शर्मा, जीआर प्रजापति, और इस परिचर्चा का संचालन कर रही हैं अनिंद्र सिंह।
1: नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं परिवार, हम कहें तो परिवार समाज की धुरी है।

हमारी पारिवारिक व्यवस्था, उसका जो स्वरूप है, उसको विदेशों में भी बहुत अहमियत आजकल दी जा रही है। लेकिन वर्तमान संदर्भों में अगर हम देखें तो परिवार के स्वरूप हमारे यहाँ बदल रहे हैं, चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी एक समाज के नाते क्या जिम्मेदारी बनती है। परिवार के बदलते स्वरूप, आ रही चुनौतियों और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन सब पहलुओं पे आज हम इस परिचर्चा के माध्यम से बात करने के लिए स्टूडियो में जुड़े हैं। और इस परिचर्चा में हमारे साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी जी आर प्रजापति साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से यहाँ हमारे आगरा जिले में तैनात डॉक्टर महिमा, वो हमारे साथ

0: तैनात डॉक्टर महिमा वो हमारे साथ हैं, और शहर के प्रतिष्ठित रामलाल वृद्धाश्रम और गौशाला के संचालक शिव प्रसाद शर्मा साहब वो भी हमारे साथ इस परिचर्चा में मौजूद है। आप सब अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर महिमा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप परिवार को किस रूप में देखती हैं, और जैसे अभी हम वर्ल्ड फैमिली डे जैसा आयोजन करते हैं ताकि हम लोगों में वो जागरूकता शायद दे पाएं कि परिवार की आखिर वैल्यूज क्या हैं और वो किस तरह हमारे लिए मायने रखती हैं।
2: जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है 15 मई को हर साल मनाया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशंस की एक पहल है जिसमें कोशिश की जाती है कि जो सरकारें हैं सारे देशों की और ऑर्गेनाइजेशंस जो उनसे जुड़ी हैं वो परिवार डेवलपमेंट, परिवार नियोजन, परिवार की सफलता, उनकी प्रगति के लिए अच्छा सोचें, और हम जो सामाजिक डेवलपमेंट है उस पे बात करते हैं, उसके लिए विभिन्न नीतियां बनती हैं। और परिवार के बारे में मैं ये बोलूंगी, अगर परिवार संयुक्त है एकल से ज्यादा तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी ग्रोथ, उनके मानसिक, शारीरिक और इवन देश के लिए वो ज्यादा समृद्ध है अगर हम उनको ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार में बड़ा करते हैं।
0: ये बात बिल्कुल सही कही आपने महिमा जी, कि जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था है वो इस तरह की रही जहाँ पर हम संयुक्त परिवार प्रथा अपनाते चले आए थे अभी तक, लेकिन अभी आजकल हम देखें तो उसके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है।
2: जी
0: हमारे
2: सर,
0: साथ एक वृद्धाश्रम के संचालक भी हैं और वो इस चीज़ को काफ़ी करीब से महसूस कर पा रहे होंगे, जहाँ पर एकल परिवार व्यवस्था के चलते जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर कर दिया गया है, और बुजुर्गों या उनकी समस्याओं के प्रति उस तरह से हम संजीदा नहीं हैं आजकल जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं। सुप्रसाद जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि परिवार के जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो एक परिवार व्यवस्था में किस तरह एक रोल प्ले करते हैं, किस तरह उनकी अहमियत होनी चाहिए परिवार में, जैसी कि हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था में हुआ करती थी।
1: मैं रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला का अध्यक्ष हूँ।
0: जी
1: आश्रम में इस समय 360 वृद्ध माता पिता निवासरत हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे आश्रम में एक भी वृद्ध रहे, परंतु दिनों दिन वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दो वृद्ध प्रतिदिन आश्रम में आता है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति जैसे देश में वृद्ध आश्रमों के लिए कोई जगह नहीं है,
0: जी
1: परंतु इस वृद्धाश्रम की जो शुरुआत हुई वो मेरे पिताजी बीरीला जी ने की। अचनेरा स्टेशन पर एक वृद्ध बैठे रो रहे थे। मेरे पिताजी ने उनसे पूछा क्यों रो रहे, तो उन्होंने कहा 3 बच्चे हैं, मुझे कोई रखता नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ। इसी घटना से प्रभावित होकर के मेरे पिताजी ने इस आश्रम की शुरुआत की। आपने जो पूछा है,
0: जी
1: एकल जो परिवार बनते जा रहे हैं और वृद्धों की अहमियत कम होती जा रही है, दरअसल जो वृद्धों का अनुभव हमें मिलना चाहिए वो हमारे जो जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं और उनको जो अनुभव वृद्धों के नहीं मिल पाते हैं, तो वो जीवन में कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाते और पूरा जीवन दुखी रहते हैं।
0: बिल्कुल
1: मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग अपने अपने घरों में अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें और उनके जो संस्कार हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको ग्रहण करें और अपना जीवन शांति से जिए।
0: ये बात बिल्कुल सही है कि जो युवा पीढ़ी है उसको समझने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं हमारे बुजुर्ग। लेकिन युवाओं में आजकल अगर हम देखें तो इस तरह का जुड़ाव शायद है नहीं। उसकी क्या वजह हो सकती है?
1: इसकी जो विभिन्न वजह हैं, वैसे दोष जो है वो दूसरे घर से बहू आती है तो बहू के ऊपर रख देते, बेटे की बहू के ऊपर।
0: जी
1: ज्यादातर वृद्ध माता पिताओं का कहना है कि बहू के कारण आना पड़ा, परंतु मैं समझता हूँ कि वो बहू का दोष इसलिए लगा देते हैं कि वो दूसरे के घर से आई है। असलियत में उनके बेटे की कमी है, बेटे में कहीं भी संस्कार की कमी रही, जिस कारण से उनके वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम जैसी जगह पर आना पड़ा।
0: बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हम महसूस करते हैं, देखते हैं, बहुत सारे केसेस, पुलिस केसेस बनते हैं, लेकिन हमें सोचना है कि कैसे हम अब जो हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था थी उसकी तरफ लौट पाएं। प्रजापति साहब,
1: जी
0: जो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही उसमें जो हमारे बच्चे हुआ करते थे उनको गाइडेंस मिलती थी एक बुजुर्ग की, जब
1: बिल्कुल
0: हमारे साथ में उनके दादा दादी या नाना नानी रहते

0: थे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो उसमें हम देखते थे कि हम बचपन में सारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने नानी के यहाँ जाया करते थे। तो वो जो संस्कारों का आदान प्रदान या मूल्यों का जो एक फ्लो था वो शायद इंटैक्ट था, उसमें आप कहीं कमी महसूस करते हैं?
1: देखिए, जो आपने अभी पूछा कि जो नानी के यहाँ या ननिहाल में बच्चे जाते थे
0: जी
1: तो उसमें कुछ कमी आई है या उसमें जो कनेक्टिविटी थी उसका कोई अंतर है? देखिए, ये निश्चित रूप से हुआ है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि अभी मैम ने बताया कि एकल परिवार हो रहे हैं, संयुक्त परिवार की प्रथाएं टूट रही हैं, उसके पीछे देखिए एक तो हमारा जो सामाजिक परिवेश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है,
0: जी जी
1: आर्थिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ सामाजिक मूल्यों का और नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। बच्चों को जो नैतिक शिक्षा हमारे परिवार से और वृद्धों से नाना नानी के यहाँ जो मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है।
0: बिल्कुल
1: इस वजह से क्या हो रहा है कि एकल परिवार बढ़ रहे हैं, कुछ तो विखंडित परिवार हो रहे हैं, पति पत्नी में भी तलाक हो जा रहे हैं तो कुछ सारे के सारे परिवार बिखर रहे हैं।
0: और आजकल का जो, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि
1: जी
0: जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो
1: बिल्कुल,
0: परिवेश है
1: जी जी
0: उसमें सभी लोग आजकल वर्किंग हो गए,
1: बिल्कुल,
0: तो उस वजह से शायद वो समय जो देना चाहिए
1: हाँ,
0: बच्चों को जिस तरह से देना चाहिए उसमें भी
1: मैं
0: शायद।
1: उसी बात पे आ
0: जी
1: रहा था
0: जी
1: कि कई चीजें, जैसे मैंने कहा कि आर्थिक विकास की वजह से पहले तो क्या होता था कि माताएं केवल गृहिणी के रूप में काम करती थी, आजकल वो वर्किंग वूमेन के रूप में भी कार्य कर रही हैं,
0: एग्जैक्टली
1: तो माताएं अपने बच्चों पर भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो निश्चित रूप से इसमें क्षरण हो रहा है और गवर्नमेंट भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है कि इन चीजों को रोका जाए। जैसे अभी पाठ्यक्रमों में चेंज हो रहा है, नैतिक शिक्षा पे बल दिया जा रहा है, इसके साथ साथ जो हमारे माता पिता हैं जिनको हम परिवार का आधार स्तंभ कहते थे और हैं
0: जी
1: भी, उनके संरक्षण के लिए उनकी उनकी समस्याएं हैं, उनके साथ जो भी चुनौतियां आती हैं उनके निवारण के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है।
0: ये जो बात प्रजापति साहब कह रहे हैं डॉक्टर
1: जी
0: महिमा, उसमें जो हमारा कहें कि जेनरेशन गैप जो आ रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, जहां पर हम शायद बुजुर्गों के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी और किस तरह से उनके पर्सपेक्टिव को रखना चाहेंगी कि जहां पर ये जो एकल परिवार व्यवस्था चलन में आ गई है और हमने अपने बुजुर्गों को हाशिए पे डाल दिया है?
2: डॉक्टर महिमा
3: सर एकदम सही बात सर बोल रहे हैं प्रजापति सर, क्योंकि सर पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं जिले का और काफी उनको जानकारी है। मेरा जो मानना है वो ये है कि जनरेशनल गैप तो आना ही है, 20 साल का डिफरेंस पेरेंट उनके बच्चों में रहता है, पर अगर हमने वो जनरेशनल गैप के साथ वो एडजस्टेबिलिटी या एम्पैथी अपने बच्चों में नहीं दी या नहीं सीखी अपने पेरेंट्स से,
0: जी
3: तो ये टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से ही बच्चों को और जो पोते पोतियां हैं उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझना आना चाहिए और वो हम सोत्र बनते हैं बीच में माँ बाप। अगर वो वर्किंग है तब एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की तारीख में सब ग्रैंड पेरेंट्स लेते हैं। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं 8 भी बज जाते हैं कई बार, 7 भी बज रहे हैं मीटिंग्स की वजह से। तो मेरे इन लॉज हैं प्लस मेरी मदर, दोनों ही मेरे बच्चे को देखते हैं, सारे मिलके कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी उसकी परवरिश ऐसी हो जिससे कि वो एम्पैथी रखे बूढ़ों के लिए, जानवरों के लिए, बीमारों के लिए, ताकि हम उसको एक अच्छा उनका सोचने की क्षमता दे पाए कि सिर्फ वो अपने बारे में ना सोचे। हो
0: बिल्कुल
3: सकता है जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपनी परवरिश में ये कहीं मिस कर गए हैं, या हो सकता है उन्होंने सोच लिया कि हमारे बच्चे हैं तो खराब नहीं हो सकते। तो हम लोगों को वो एम्पैथी और वो होशियारी भी रखनी है अपनी परवरिश में, ताकि वो बच्चा बिगड़े तो वो बिगड़ के वापस हमारे पास आए अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, स्कूल की प्रॉब्लम्स के लिए, उनके दोस्त भी बने और कहीं उनके गार्डियन भी बने कि कहीं पे उनको रोकना भी है। तो सर वो बहुत ज़रूरी है। अभी दुनिया भर में इवन हर तरफ ये रिसर्च भी हो रही है कि जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं उनको ADHD जैसी बीमारी, जहाँ पे वो बच्चे का कंसंट्रेशन ना पढ़ाई में लगेगा ना खेल में लगेगा,
0: जी,
3: और बहुत तरह से वो फोन एडिक्शन ये सब भी बढ़ा देता है सर।
0: परिवार की जो व्यवस्था है उसमें एक दूसरे के साथ शेयर करना
3: यस
0: वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वही चीज़ शायद आज की पीढ़ी मिस कर रही है। और वो जो शेयरिंग है, चाहे वो बच्चों की अपने बुजुर्गों के साथ हो या बुजुर्गों की अपनी नई जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ हो, वो शायद उसमें कहीं ना कहीं एक गैप बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। प्रजापति साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के संदर्भों में सरकार

0: चूंकि जैसा आपने बताया कि प्रयास बहुत सारे ऐसे कर रही है जहां पर बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं उनसे उनको निजात मिले और जो सामाजिक हमारा ताना बाना है, पारिवारिक जो हमारे मूल्य हैं वो बरकरार रहें, तो क्या वो ऐसी व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से जो क्रियान्वित की जा रही हैं?
1: देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा था कि सरकार का ये दायित्व है, और चूंकि अपने भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य
0: बिल्कुल
1: की अवधारणा ली गई, वेलफेयर स्टेट कहा गया है, तो उसमें, और मैं समाज कल्याण अधिकारी भी हूँ, तो हमारे यहाँ से बेसिकली जो स्कीम चलती हैं वो समाज के ऐसे लोगों के लिए चलती हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनका कोई नहीं है। उसी कड़ी में हमारे यहाँ वृद्धों के कल्याण के लिए भी तमाम स्कीम चलाई जाती हैं, जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है वो आप सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत हमारे यहाँ प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं,
0: जी
1: और वो वृद्धाश्रम पीपीपी मॉडल पर हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाए जा रहे हैं। क्षमता उनकी 150 है। इन वृद्धाश्रमों में वृद्धों को रहने, खाने, मनोरंजन, उनके स्वास्थ्य,
0: जो भी उनकी
1: हाँ,
0: जरूरतें
1: जो भी
0: हैं
1: उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट इसमें पूरा सहयोग करती है।
0: जी
1: इसके अतिरिक्त आजकल जैसा कि अभी आपने बताया कि माता पिता की सेवा नहीं करते बच्चे, या उनको प्रताड़ित करते हैं, या उनको किसी तरह की क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इस संबंध में भी जो वृद्धजन नीति 2014 बनी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें समस्त तहसीलों में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है।
0: जी
1: अगर कोई भी बच्चे अपने माता पिता के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की उनको शारीरिक मानसिक चोट पहुंचाते हैं, तो वो संबंधित तहसील में जाके एक एप्लीकेशन देकर
0: शिकायत दर्ज करा
1: शिकायत
0: सकते
1: दर्ज करा सकते हैं, वो उसका प्रॉपर निस्तारण होता है। इसके अतिरिक्त कुछ समस्याएं वृद्धों की होती हैं, खास तौर से 60 साल से जब अधिक हो जाती है उम्र, तो उनके जो आय के स्रोत हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो सरकार इसको ध्यान में रख के एक वृद्धावस्था पेंशन चलाती है, जिसमें हम लोग 1,000 रुपये,
0: आर्थिक सहयोग के रूप में
1: हाँ,
0: देना।
1: प्रति माह के हिसाब से तिमाही किस्त के रूप में उनके खाते में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और वृद्धों की समस्याओं के लिए, जैसे अगर उनको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है या उनको कोई कानूनी सलाह चाहिए, तो संबंधित तहसीलों में हमारे यहाँ सुलह अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनसे वो कानूनी सहायता या कानूनी सलाह ले सकते हैं।
0: जी
1: इस तरीके की मेजर स्कीम इस तरीके चलाई जा रही हैं।
0: डॉक्टर महिमा,
1: जी सर,
0: ये जो सर बता रहे हैं कि काउंसलिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका
1: बिल्कुल,
0: है जहां पर ये पारिवारिक संवाद को
1: यस सर,
0: कायम रखा जाए, उस दिशा में पहल की जा सकती है। आजकल की युवा पीढ़ी आप देखेंगे तो मानसिक अवसाद से बहुत जूझ रही है, और ये
1: बिल्कुल,
0: मानसिक अवसाद शायद वो अकेलेपन की वजह से ज़्यादा घर करता है। तो ऐसे जो काउंसलिंग हैं या मेंटल हेल्थ काउंसलिंग कहें, तो उनका क्या रोल आप किस तरह से देखती हैं और ये किस तरह से इसमें अपना सहयोग दे सकता है?
1: सर ये बात एकदम सही है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ब्रोकन फैमिलीज और मैरिजेस से बहुत पहले से जूझ रहा है। वहाँ पे जो ये केसेस होते हैं ब्रोकन मैरिजेस के वो ज़्यादा हैं। अब वो शिफ्ट हो रहा है हमारे भारत की तरफ, क्योंकि हम लोगों की जो परवरिश रही, जो हमारी जनरेशन थी, वो जॉइंट फैमिली के तर्ज पे हुई और उन्हीं की सुननी है। मार्क्स जब आते हैं तो सबसे पहले वो ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाए जाएंगे, तभी हम उनको अप्रूव करेंगे। और हमको वो अंदर रहता था कि हमें पढ़ना है क्योंकि हमें इनके जैसा बनना है। और हमारे पास एक सेट एग्जाम्पल था कि हमारे फादर और पेरेंट्स अगर इनको फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी था। अब जो सिचुएशन है कि इंसान आसान तरीका ले लेता है कि तोड़नी है शादी या फैमिली टूटती है, पर काउंसलर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि तहसील में भी काउंसलर्स बैठते हैं, इवन मेडिकल कॉलेजेस में काउंसलर्स हैं। इट इज़ नॉट कि वो सिर्फ साइकेट्री में बैठे हैं। आप नॉर्मली भी जाएंगे पर्ची बनवा के, साइकेट्री डिपार्टमेंट के बाहर एक डिपार्टमेंट होता है, वो काउंसलिंग सेक्शन होता है। बच्चे को कोई मानसिक परेशानी हो रही है या हम जो प्रिपरेशंस करते हैं बच्चे, उनको कभी स्ट्रेस होता है, वो डायरेक्ट ही एक अंत ढूंढ लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग एक ऐसा चीज है जो आपको कोई भी दे सकता है। इट इज नॉट अ प्रोफेशनल काउंसलिंग। हाँ, उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, बट अगर आप अपने घर के बुजुर्गों से, पेरेंट्स से बात करें, अपने भाई बहन से या कजिन से या ननिहाल के लोगों से भी बात कर सकते हैं, तो
0: जी
1: वो माध्यम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके विश्वसनीय हो जाते हैं कि हाँ, ये बाहर हमारी मन की बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल फैमिलीज़ को।

0: ये बताने का बच्चों को कि हाँ आपको अगर परेशानी है तो हम आपको डांटेंगे मारेंगे, वो नहीं होना चाहिए, पहले आपसे बात करेंगे,
1: बात
0: तो
1: करना
0: बहुत
1: बहुत
0: ज़रूरी
1: इम्पोर्टेंट है,
0: है।
1: संवाद बहुत जरूरी है। ये जितनी भी बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो शायद वजह उसके पीछे की संवादहीनता ही है,
0: यस सर,
1: उसमें जो कमी आई है उसकी वजह से ही परिवार में समस्याएं आजकल आ रही हैं।
0: जब वो संवाद नहीं होता सर तो हम मोबाइल पे रहते हैं और
1: हाँ
0: हमको
1: बिल्कुल, ये तकनीकी ने भी इसमें शायद एड ऑन किया है, जहाँ पर हम अपने आप में सीमित होते जा रहे हैं एक मोबाइल के माध्यम से, जहाँ पर हम सारी जो चीज़ें शेयर करते थे अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने निजार दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, वो शायद अब हम शेयर नहीं कर पाते उतने खुले तौर पे, और उस संवादहीनता की वजह से परिवार में समस्याएं और ज़्यादा मुखर रूप से हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो संवादहीनता की स्थिति आ रही है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, अगर शिवप्रसाद
0: जी
1: जी आपका नजरिया मैं जानना चाहूँ तो।
2: सर, ये जो हमारे यहाँ संस्कारों की कमी हो रही है, सरकार द्वारा जैसे विभिन्न योजनाएं लागू हैं, कई ऐसे कानून है, वृद्धजन एक्ट 2007 लागू है, तो हमारे जो वृद्ध हैं वो कभी नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई
1: बिल्कुल
2: कानूनी कार्रवाई हो।
1: जी,
2: इसका जो बच्चे हैं वो लाभ उठाते हैं, और जैसे आपने मैडम ने भाई बताया कि जो मोबाइल है या टीवी है, ज़्यादातर जो आज की पीढ़ी है वो मोबाइल पे बिजी रहती है, वृद्धों के लिए समय ही नहीं है। वृद्ध क्या चाहता है कि बच्चा जब घर में आए दो शब्द मुझसे बात करे, मेरे बाद मन की बात सुने, पूरे दिन वो इसी इंतजार में रहता है, और जब उनकी बात नहीं सुनी जाती
1: वो
2: तो
1: अपने आप
2: फिर
1: को उपेक्षित
2: उनको
1: महसूस करता
2: अपेक्षित
1: है।
2: महसूस करता है और वो परेशान हो जाता है और अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है। तो गवर्नमेंट द्वारा, जैसे हमारे आश्रम में भी गवर्नमेंट की विभिन्न संस्थाओं के लोग आते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज साहब भी आते हैं, 5 जजों की टीम आती है, और उनके द्वारा भी वहाँ काउंसलिंग की जाती है, पर कोई भी वृद्ध ऐसा नहीं आज तक मिला कि जो अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कराए,
1: जी
2: क्योंकि बच्चों के प्रति मोह जो कारण है, वृद्धों का जो मोह है उसी का फायदा बच्चे उठा रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये टीवी और मोबाइल की वजह से बच्चे जो है वृद्ध माता पिता को समय नहीं दे पा रहे हैं। हमारे जो संस्कारों की कमी हुई है, वृद्ध माता पिता की अगर किसी ने मन से सेवा की, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद सरकारी नौकरी छोड़ करके ये सेवा कर रहा हूँ, मन में जो भी विचार आता है वृद्धों से शेयर करता हूँ, या कभी जैसे आश्रम में कोई समस्या आ रही है तो वृद्धों को बिठाल करके उस समस्या को रखते ही उसके मुझे बहुत सारे जो है वो मिल जाते हैं कि ये जो है परेशानी कैसे हल होगी।
1: बिल्कुल, अनुभव,
2: तो
1: जो अनुभव का कोई तोड़ नहीं
2: वृद्धों
1: हो
2: के जो
1: सकता,
2: अनुभव हैं
1: और वो अनुभवों की खान होते हैं
2: वो
1: बुजुर्ग
2: वृद्ध
1: हमारे।
2: जो है अनुभवों की खान है, उनके अनुभवों से जो बच्चे वंचित रह जाते हैं वो फिर जीवन भर पछताते हैं।
1: जी प्रजापति साहब,
2: जी
1: मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैडम ने बात की थी कि स्कूलों में बच्चों को काउंसलिंग या बच्चों के पाठ्यक्रम में मैं भी आजकल कुछ ऐसी चीज़ें इनकलकेट कर सकें जो ऐसे वैल्यूज़ को वो शामिल की जा रही हैं, तो आप इसको किस तौर पे देखते हैं और क्या-क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर पारिवारिक मूल्यों के प्रति बच्चों को संवेदनशील किया जा सके?
3: तो देखिए, पहली सीढ़ी तो परिवार ही होता है, उसी पे हम लोग बात भी कर रहे हैं।
1: जी
3: तो नैतिक शिक्षा की जो बात होती है, संस्कारों की बात होती है, मूल्यों की जो हम लोग बात करते हैं, तो उनकी शुरुआत परिवार से ही होती है। तो मेरा एक सुझाव है कि परिवार से ये शुरुआत, जैसे हमारे हम लोगों को दी गई है शिक्षा अपने परिवारों में, वो कंटिन्यूसली जारी रहे। और जहाँ तक पाठ्यक्रमों में है, तो जब हम लोग पढ़ते थे उस समय नैतिक शिक्षा करके एक पुस्तक होती थी, उसमें
1: बिल्कुल,
3: केवल
1: जहां पर
3: नैतिक शिक्षा
1: हम
3: ही दी जाती थी।
1: भी जी,
3: वो नैतिक शिक्षा मुझे लगता है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में कहीं उसको सीमित कर दिया गया है, तो
1: उसकी
3: उसको,
1: शायद हमने
3: हाँ
1: वैल्यू उतनी नहीं
3: हाँ
1: समझी
3: बिल्कुल,
1: और
3: तो
1: उसको किनारे कर दिया।
3: बिल्कुल, तो मैं एक साथ चाहता हूँ कि जैसी नैतिक शिक्षा हमारे समय में हमारे पाठ्यक्रमों में थी, उसकी एक अलग से पुस्तक जो थी वो उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, कम ना किया जाए,
1: दरअसल
3: और उनको
1: ऐसे जो
3: हर स्टेज
1: चरित्र
3: पर।
1: हुआ करते थे
3: बिल्कुल
1: जिनके बारे में हमें उस नैतिक
3: यस
1: शिक्षा में बताया जाता था, तो वो चरित्र कहानियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते थे
3: बिल्कुल
1: और वो कहानियां कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग पे वो असर छोड़ के जाती थीं जो परमानेंट आज तक हमारे साथ
3: जी
1: विद्यमान है,
3: हाँ, जैसे
1: और वो उस असर को शायद वर्तमान पीढ़ी, आज की पीढ़ी, वो
3: बिल्कुल
1: मिस कर रही है।
3: जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से, जैसे पंचतत्व

0: की जो कहानियां हैं
1: जी
0: उन कहानियों में मुझे लगता है हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। वो उसमें कोई ना कोई कहानी के माध्यम से कोई शिक्षा दी गई है, और
1: हर
0: वो
1: कहानी कुछ ना कुछ
0: हाँ
1: कहती
0: कोई
1: है,
0: ना कोई
1: आपको
0: शिक्षा देती
1: शिक्षा
0: है वो।
1: जरूर देती है।
0: तो मुझे लगता है कि पंचतत्व की जो कहानियां हैं उनको पाठ्यक्रम में विधिवत शामिल किया जाना चाहिए। और जैसे कि देखिए अभी सिविल सेवा में जब 2011 से ये पाठ्यक्रम चेंज हुआ है सिविल सेवा का, तो उसमें एक एथिक्स का टॉपिक जोड़ा गया है। ये एक अच्छी पहल है, स्पेशली अधिकारियों में जो एथिक्स और एथिकल वैल्यू और नैतिक मूल्यों की जो बात हम लोग करते हैं वो आना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अधिकारियों को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वो समाज के एक कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग होता है, और उनका एक निर्णय बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित
1: प्रभावित
0: करता है।
1: करता।
0: तो ये अच्छी पहल थी, अच्छी पहल है कि इसमें एथिक्स को सिलेबस में जोड़ा गया है। और बिल्कुल मेरा तो मैं मानना है कि नैतिक शिक्षा और जो पारिवारिक मूल हमारे संस्कार, इनको परिवार के साथ साथ अपने पाठ्यक्रमों में भी इसको शामिल किया जाए।
1: तकनीकी की रोल अगर हम देखें, चूंकि डिजिटल युग में आज हम जी रहे हैं, तकनीकी क्रांति हमारे इर्द गिर्द हम महसूस करते हैं, ऐसा कोई एरिया नहीं है हमारे जीवन का जहां पर तकनीकी का दखल ना हो, और
0: बिल्कुल
1: उस तकनीकी के जाल में कहें हम ऐसे उलझ गए हैं, हम का मतलब यहाँ हमारा वर्तमान पीढ़ी से है, उस वर्तमान पीढ़ी को परिवार के जो जिम्मेदारी है एक होती है परिवार के प्रति, उसको कैसे जो है युवाओं तक पहुंचाया जा सकता है डॉक्टर गरिमा?
2: इसके लिए जैसे हम जब एक तो हमारी जो जनरेशन है उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को एक्सपीरियंस किया है, इवन मैं भी फ्रीडम फाइटर की ही पोती हूँ, तो अब जो हमारे जो बच्चे आएंगे उनको नहीं पता रहेगा फ्रीडम फाइटर अनलेस वो हिस्ट्री या सिविक्स में पढ़ाया जाएगा उनको, तो वो एक चीज़ है। दूसरा, हम जब रिक्रिएशनल चीज़ें करते थे अपनी उम्र में जब हम थे, तो हम घर घर खेलते थे, दूसरों के घर में जाके भी खेलते थे। अब सेफ्टी की वजह से हमने बच्चों को एक ही घर में रख दिया है, पिकनिक्स होती थी और मॉन्यूमेंट्स विजिट होता था, वो सब कम हो के जैसे आपने बताया तकनीकी जो चीज़ें हैं,
1: हमने आपके आपको सीमित कर दायरे में
2: हाँ
1: कैद कर लिया है।
2: हमने हम प्लेडियम चले जाएंगे, हम मॉल चले जाएंगे, हम ऐसी चीज़ें चले जाएंगे, पर जैसे अब सर बता रहे हैं इनके आश्रम में गाय भी हैं, बच्चे हैं, अगर वो सेंसिटिविटी हम अगर अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, या आसपास बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जानवरों के, उनको भी हम एक्सपीरियंस करा लें अपने बच्चों को, प्लस घर में ही हम उनको जो उनका स्क्रीन टाइम है उसको छोड़ के उनको कहानी लिखना या कहानी पढ़ना जैसे सर बता रहे हैं। और हमारे टाइम पे मॉरल साइंस में अगर हम पास नहीं होते थे तो हम फेल हो जाते थे उस क्लास में, तो वो चीज़ें फिर से रीइंस्टेट करनी स्कूल्स को बहुत ज़रूरी है। और उसमें एक ग्रुप डिस्कशन आफ्टर 5th स्टैंडर्ड आपको शुरू करवा देना चाहिए कि बच्चे अपनी बात कह सकें, अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकें और वो प्रोसेस करें। हमारा जो लिखना और उसको याद करके बोलना वो चीज़ भी सर कम हो गई, क्योंकि फ़ोन हमें आसानी से मिल जा रहा है इस वक्त।
1: बिल्कुल सही बात है, ये जो शेयरिंग है, शेयरिंग इज़ केयरिंग,
2: केयरिंग, यस
1: तो ये जो युवा पीढ़ी में जो परिवार के प्रति दायित्व की भावना है, उसको प्रजापति साहब आप किस रूप में सुझाव हैं वो देना चाहेंगे, किस तरह से युवा पीढ़ी को, वो बात ठीक है कि हम आजकल तकनीकी के युग में हैं, हम आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है हमारी, हम आजकल एवरीवेयर वी आर वर्किंग ऑल्सो, लेकिन परिवार के प्रति हमारे दायित्व जो बनते हैं उन दायित्वों का बोध होना भी बहुत ज़रूरी है आज अगर हम देखें, क्योंकि हम अगर अपने संस्कारों में देखते हैं या अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, तो हमारे लिए हमारा परिवार ही परिवार नहीं हुआ करता था, ये समाज जो है व्यवस्था वो भी एक परिवार का बृहत रूप है, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम का एक सपना देखते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया ही हमारे लिए परिवार है, तो ऐसे में वो दायित्व का बोध जो है वो युवाओं को कैसे कराया जाए, उस विषय में आपके विचार में जानना चाहूँगा।
0: देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि शिक्षा, नैतिक शिक्षा, संस्कार, ये सब पढ़ाए जाने चाहिए, इनका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अब जैसे तकनीक की बात है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको मोबाइल फ़ोन का देता हूँ। देखिए, इसमें गूगल है, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। मोबाइल फ़ोन ज्ञान का भंडार है, अब वो आपको उसमें किस टाइप का ज्ञान चाहिए वो आपके ऊपर निर्भर है। अभी आप मोबाइल में फोन पर सर्च करिए कि नैतिक शिक्षा क्या है, पारिवारिक मूल्य क्या है, संस्कार क्या है, वो सब बता देगा आपको कि क्या हमें बुजुर्गों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए।

0: बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने साथियों से कैसे बात करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, सब कुछ बताता है। और अगर वही आप पूछेंगे कि हमें टेररिस्ट कैसे बनना है, हमको बॉम्ब कैसे फोड़ना है, किसी को कुछ भी करना है,
1: सारी चीजें
0: तो वो भी
1: आपको
0: बताता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि तकनीक का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर वही बात फिर लागू होती है कि ये माँ बाप का विशेष दायित्व, खासतौर से युवाओं का, कि वो अपने छोटों को भी सिखाएं, और बड़े बुजुर्ग जिनको इस चीज़ का नहीं पता है या वो लोग इस ज्ञान से अधूरे हैं, उनको भी इस चीज़ की अच्छाइयाँ उनको वो बता सकते हैं बड़े प्यार से। ये मेरा मानना है इस क्षेत्र में।
1: बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि आज जो हमने चर्चा की उसमें हम अगर समराइज करना चाहें तो ये बात निकल के आती है कि परिवार जो है केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारे खून के रिश्ते ही होते हैं। परिवार जो है एक ऐसी जगह है जहां संस्कार होते हैं, जहां जिम्मेदारियां होती हैं, जहां संवेदनाएं होती हैं। इन सब का मिला जुला स्वरूप ही एक परिवार को बनाता है। तो ऐसे में हमारी जो पीढ़ी है इन चीज़ों को समझे, इन मूल्यों को समझे और शायद विश्व परिवार दिवस जैसे मौक़ों पर यही जागरूकता हमें देने की आवश्यकता है कि हमको जो हमारा परिवार है उसको किस तरह से कद्र करनी है। हमारे परिवार के जो लोग हैं, खासकर जो वो लोग जो अनुभव रखते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको किस तरह से अपने साथ साथ लेके चलना है और उनके अनुभवों से अपने आप को लाभान्वित करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज सोचने और समझने की ज़रूरत है। आज की परिचर्चा में आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
2: थैंक यू।
3: अभी आपने सुनी परिचर्चा जिसका विषय था परिवार का बदलता स्वरूप, चुनौतियां और हमारी जिम्मेदारी। प्रतिभागी थे डॉक्टर महिमा, शिव प्रसाद शर्मा, जीआर प्रजापति और कार्यक्रम का सफल संचालन किया नेन्द्र सिंह ने। 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। समय हुआ है 10:30। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में पंडित राम कृष्ण से क्लैरिनेट वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मारू बिहाग।

अभी आपने सुना पंडित रामकृष्ण से क्लैरिनेट वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मारु बिहाग। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में अगली प्रस्तुति है पंडित कार्तिक कुमार की, जो प्रस्तुत करेंगे राग श्याम कल्याण पर सितार वादन।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में पंडित रामकृष्ण से क्लेरिनेट वादन और पंडित कार्तिक कुमार से सितार वादन। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक

तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श

वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।